मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन ए

पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56:54 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने

0: इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन बीएल संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हो रहे हैं और ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। जिस प्रकार माता पार्वती को हर परिस्थिति में महादेव पर पूर्ण भरोसा था, वैसे ही हमें भी ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। तो आइए करते हैं आराधना कार्यक्रम की शुरुआत भोलेनाथ की आरती से। और इस आरती को अपने स्वर से सजाया है बेला सुलाखा ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। विश्वास रखिए, सब सुंदर होगा। जिस तरह शिव और शक्ति का मिलन संपूर्ण सृष्टि का आधार है, वैसे ही आपके जीवन में भी शांति, प्रेम और संतुलन बना रहे और मंगलहारी आप सबकी कामनाओं को पूरा करें। आइए सुनते हैं रविंद्र जैन के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: श्रोताओं, अभी जो भक्ति रचना आप सुन रहे थे उसे अपने स्वर से सजाया था रविंद्र जैन, रचना और दीपमाला ने। और इसी के साथ ये भक्ति रचना अब समाप्त होती है और अब आराधना कार्यक्रम में वक्त होता है एक छोटे से अंतराल का। तो आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब, हम बस अभी हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रभु का नाम व्यक्ति को उसके सभी जन्मों के किए गए पापों से मुक्त करता है। तो लेते रहिए हरि का नाम और आइए सुनते हैं शर्मा बंधु के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं गुरु महिमा। बड़भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई। जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, वो वस्तु घट भीतर पाई। और इस रचना को अपने स्वर से सजाया है देवाशीष दास गुप्ता ने।

0: श्रोताओं, इसी भक्ति रचना के साथ आराधना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आप धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
1: जो आचरण लोक तथा परलोक दोनों में सुख देता है, शास्त्रों में उसे धर्म कहा गया है। ये धर्म ही समस्त प्राणियों की रक्षा करता है। धर्म का ज्ञान होने से मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ कहा गया है। धर्म ग्रंथों में धर्म को बैल बताया गया है। इस वृषभ रूपी धर्म के चार पैर हैं, सत्य, दया, शांति और अहिंसा। सत्य के 12 भेद गिनाए गए हैं। झूठ न बोलना, कही हुई बात का पालन करना, प्रिय वचन, गुरु सेवा, व्रत में दृढ़ भावना, ईश्वर को मानना, सज्जन की संगति, माता पिता से स्नेह, शरीर और अंतःकरण की पवित्रता, लज्जा और अधिक संग्रह का अभाव। दया के 6 प्रकार हैं: परोपकार, दान, सदा हंसकर बोलना, विनम्रता, अपने को छोटा समझना और समत्व बुद्धि। शांति के 30 लक्षण हैं: किसी में दोष न देखना, जो मिले उसी में संतोष, इंद्रिय संयम, भोगों में अनासक्ति, मौन, देव पूजा में चित्त लगाना, निर्भयता, गंभीरता, चित्त की स्थिरता, रुखाई का त्याग, निष्प्रियता, स्थिर बुद्धि, न करने योग्य कर्मों का त्याग, मानव अपमान में एक रूपता, दूसरों के गुणों का वर्णन करना,

0: चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, धैर्य, क्षमा, अतिथि सत्कार, जप, होम, तीर्थाटन, सज्जनों की सेवा, घमंड का अभाव, मोक्ष के प्रति प्रयत्न, संन्यास की भावना, अति दुख में भी सहिष्णुता, कृपणता एवं मूर्खता का अभाव आदि। अहिंसा के सात भाव हैं: स्थिरता, मन, वाणी एवं शरीर से दूसरे को दुख न पहुंचाना, श्रद्धा, अतिथि सत्कार, शांत भाव का प्रदर्शन, सब में आत्मीयता एवं दूसरों में अपने समान बुद्धि का मानना। इन सभी गुणों व आचरणों का सामूहिक नाम ही धर्म है।
1: श्रोताओं, विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धर्म के बारे में विचार। इसी के साथ विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

प्रकृति का संरक्षण करिए, दोहन नहीं। प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप बहुत कुछ दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि प्रकृति को उनके उपहारों के लिए धन्यवाद करें। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे पशुओं के लिए आवश्यक खनिज तत्व और इस विषय पर डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप से बातचीत किया है सुरेश कुमार ने।
1: किसान भैया बहनी हरन अपन पशुपालन करत हैं तो पशुपालन करत समय भी तरह तरह के उनके जो है खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आज अपने कार्यक्रम में भैया डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप भैया आए हैं जो वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से। भैया आप जो हैं अपने कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और हम आपसे ये जानना चाहते थे कि पशुमन के लिए जौन बा खनिज तत्व तो, ये खनिज तत्व तो का बा एक बारे में बताएं।
2: सभी किसान भाइयों को राम राम। कभी कभी हम अपने पशुओं के लिए बहुत छोटी मात्रा में जो चीज़ ज़रूरी होती है उसको हम लोग समझ नहीं पाते या किसी कारणवश भूल जाते हैं
1: जी।
2: तो किसान भाइयों सामान्य भाषा में खनिज तत्व तो सरल अकार्बनिक पदार्थ हैं जो पशु के शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये हर पशु के शरीर में लगभग 3-5% पाया जाता है
1: जी।
2: सामान्यतः पशुओं के शरीर सभी खनिज तत्व होते हैं। अभी तक पशु आहार में लगभग 22 प्रकार के खनिज तत्वों की जानकारी है और साथियों पशुओं में उनका स्वास्थ्य तथा उत्पादकता के लिए ये तत्व बहुत ही ज़रूरी समझ लीजिए हैं। जिस प्रकार से अगर हम अपने इंजन में ऑयल नहीं डालेंगे तो इंजन की कार्यक्षमता घट जाएगी, उसी प्रकार अगर हमारे पशुओं में खनिज तत्व हम नहीं देंगे तो उनकी शरीर की क्रियाओं जैसे विकास उत्पादन प्रजनन पाचन में हानि होगी।
1: यानी मतलब कि खनिज तत्व के कमी से पशुओं में तरह तरह की समस्या आ जाएगी।
2: आ सकती है बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो डॉक्टर साहब आप ये बतावें कि कौन कौन से खनिज तत्व बा और खनिज तत्वों से

0: कौन कौन तरह के लाभ मिलत है इस बारे में फरिया ही बताना।
1: अच्छा अच्छा बिल्कुल। देखिए, हमारे पशुओं में खनिज तत्व की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है।
0: जी
1: दुग्ध उत्पादन हो गया, शरीर के अतिरिक्त क्रियाकलापों को ठीक से काम करने के लिए
0: हाँ
1: बहुत ज़रूरी है, साथ ही शरीर के विकास के लिए। और खनिज तत्व अगर जैसे कैल्शियम और फास्फोरस, जो कि बहुत सामान्य है खनिज तत्व हमारे जो ये प्रमुख हैं, ये हड्डी और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। खनिज तत्व पाचन क्रिया में जरूरी भूमिका निभाते हैं। और ये खनिज तत्व जैसे आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, ये पशुओं के प्रजनन क्षमता के लिए भी ज़रूरी हैं।
0: अच्छा,
1: और इनकी कमी से पशुओं में प्रजनन संबंधी बहुत समस्याएं हो जाती हैं।
0: जी
1: इसके बाद और हम देखते हैं कि खनिज तत्व जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस पशुओं के लिए उत्पादन के लिए
0: हाँ
1: तथा हड्डी को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं।
0: जी
1: कुछ खनिज तत्व जैसे आयोडीन थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। वहीं पर सेलेनियम और जिंक पशुओं की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगर
0: अच्छा
1: इनकी कमी रहेगी तो बार बार पशु हमारा बीमार होगा।
0: जी, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहे थे कि जैसे कि ये जौन आप खनिज तत्व के बारे में बता रहे हैं,
1: हाँ
0: तो ये
1: भैया,
0: खनिज तत्व अपन किसान भैया बहनी हरिन कहाँ कहाँ से प्राप्त करें, यह बारे में बताओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हमारे पशुपालक भाई या किसान भाई अपने पशु को हरा चारा दे रहे हैं, संतुलित आहार दे रहे हैं,
0: जी
1: तो खनिज तत्व की कमी कम होती है।
0: हाँ
1: फिर भी अगर किसी कारणवश हम हरा चारा या दाना नहीं दे पाते हैं, तो जो मुख्य स्रोत हैं जैसे कैल्शियम, ये हमारा फलीदार चारे से मिल सकता है, जैसे
0: हाँ
1: बरसीम है, लूसन है, रिजका है, लोबिया है। फास्फोरस चोकर और चावल की भूसी खली में पाया जाता है, वहाँ से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी
1: इसके साथ ही साथ अगर हम चाहें तो, अगर जैसे हमारा एक तत्व हमने बताया जिंक,
0: हाँ
1: ये भी बरसीम लूसन हरे चारे से मिल सकता है, चोकर है, खली है, दाल है, ग्वार की चूरी है, इनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक और तत्व होता है तांबा, जिसको हम कहते हैं, या कॉपर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है,
0: जी जी
1: ये भी चोकर, खली, हरे चारे से प्राप्त हो जाता है।
0: हाँ
1: एक और तत्व होता है लौह तत्व, जिसको हम कहते हैं लोहा, ये
0: हाँ
1: भी हरे चारे से और पेड़ की पत्तियां जैसे पाकड़ है, बबूल है, नीम की पत्ती हम अगर पशुओं को अपने खिलाते हैं तो उनसे भी प्राप्त हो सकता है।
0: जी
1: इसी प्रकार एक और तत्व होता है भैया मैग्नीज, जिसको हम कहते हैं,
0: हाँ
1: ये भी चावल की पालिश, चोकर, जौ, जई, मक्का आदि के दाने में तथा दलहनी हरे चारे में।
0: हाँ हाँ
1: देखिए, अभी किसान भाई हमारे चूँकि बरसात में हरा चारा हो जाता है,
0: जी
1: जब रबी का सीज़न या जायद में, तो हरा चारा का अभाव हो जाता है।
0: हाँ हाँ
1: तो ऐसे समय में अगर किसान भाई किसी उर्वरा वाले खेत में, जिस खेत की मिट्टी अच्छी हो, वहाँ पे हरा चारा लगाएंगे, तो
0: हाँ
1: स्वतः सारे पोषक तत्व पशुओं को प्राप्त होते रहेंगे।
0: जी, और साथ ही साथ हम आपसे यह जानना चाहते कि भैया जैसे कि खनिज जौन तत्व बा ये खिलाए से अपने पशुपन का लाभ कौन कौन तरीके से और बढ़िया हो सके, वह बारे में बताओ।
1: सुरेमन भैया, आपने बहुत सही बात पूछी है।
0: हाँ
1: जैसे हम लोग देखते हैं कि जो लोग पान खाते हैं वो चूना ज़रूर चाटते हैं,
0: हाँ हाँ
1: या कुछ लोग खाने के साथ चटनी ज़रूर खाते हैं।
0: हाँ
1: इसी प्रकार अगर हम अपने पशुओं को, विशेषकर दूध देने वाले पशुओं को,
0: जी
1: उच्च गुणवत्ता युक्त तथा सही मात्रा में खनिज तत्व खिलाते हैं या उसका मिश्रण खिलाते हैं,
0: हाँ
1: तो पशुओं को बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। उनमें से कुछ जैसे पशु का दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सकती है,
0: हाँ
1: दूध घटने नहीं पाएगा, नर
0: जी
1: तथा मादा पशुओं के प्रजनन क्षमता में सुधार होगा। हम लोग देखते हैं कुछ पशुएं ब्याने के बाद गर्मी में नहीं आती हैं,
0: हाँ हाँ
1: या बच्चा गर्भपात हो जाता है, तो अगर हम प्रचुर मात्रा में या उचित मात्रा में हम सूक्ष्म पोषक तत्व देते हैं और खनिज तत्व खिलाते हैं,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: हमारे पशुओं में इनसे भी समस्या से निजात मिलती है। और जो
0: अच्छा
1: हमारे वृद्धि वाले बच्चे हैं, बछड़ा है, बछड़िया हैं, इनका शारीरिक विकास दर में सुधार होता है।
0: जी
1: एक सबसे बड़ा जो हमारे पशुपालक भाई समस्या ग्रसित होते हैं, वो होता है दो, एक पशु के दो ब्याद के बीच में अंतर।
0: हाँ
1: अगर हम पोषक तत्व या खनिज तत्व सही मात्रा में खिलाएं, तो दो ब्याद के बीच के अंतर में भी कमी हो सकती है।
0: जी, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब हमारे किसान भैया बहनी हरिन पशुपालन भी करते हैं, जैसे कि जौन अपन तरह तरह के जौन पशुपालन कर रहे हैं, इन
1: जी भैया,
0: पशुपालन के भी खान पान में खनिज तत्व का कैसे और बातन का ध्यान रखें।
1: बिल्कुल सही बात। देखिए, पशु चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो,
0: जी
1: काम करने वाले पशु की आवश्यकता अलग होती है, दूध देने वाले पशु की आवश्यकता अलग होती है,
0: हाँ
1: जो प्रजनन योग्य हैं उनकी आवश्यकता अलग होती है। तो
0: अच्छा
1: हम अपने इन सभी पशुओं को, अगर हमारा बड़ा पशु है दूध देने वाला, तो उसको 40-50 ग्राम खनिज

0: तत्व प्रतिदिन, आजकल बहुत से प्रकार के तत्व बाजार में उपलब्ध हैं, कई नामों से आते हैं, आप वो ले सकते हैं। या दूध देने वाली बकरियां, तो उनको 15-20 ग्राम प्रतिदिन हम दे सकते हैं।
1: जी
0: और अगर कोई छोटा बच्चा है गाय भैंस का, तो उसको भी हम 15 से 20 ग्राम प्रतिदिन दे सकते हैं।
1: अच्छा
0: सबसे बढ़िया तरीका है, जब हम उसको अपना दाना देते हैं, दाना बनाते हैं, तो उसी दाने में हम 100 किलो में अगर हम 2 किलो दाना खनिज तत्व मिला दें, तो पशु को आराम से वो मिलता रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम रोज़ देंगे तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि
1: जी
0: हम अपने पशु को रोज़ एक मुट्ठी या 40 ग्राम 50 ग्राम हम खनिज तत्व दे रहे हैं।
1: हाँ। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे किसान भैया बहनी हैं कि
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: कि बहुत से ऐसे पशु हैं
0: जी
1: कि
0: भैया
1: अपन जौन है वो तरह तरह के जैसे जीभ निकाल के भी जौन है मड़ोरत रहते हैं, तो ऐसे दशा में अपने पशुअन का उका खनिज तत्व की कमी की वजह से
0: ये
1: होगा।
0: बहुत सामान्य बात, अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा,
1: जी
0: जैसे कह रहे हैं जीभ निकालते हैं, आप अगर पशु के पास खड़े हो जाएं तो
1: हाँ
0: आपकी खाल भी चाटते हैं वो, या
1: जी
0: मिट्टी चाटते हैं, दीवाल चाटते हैं, गंदा कपड़ा चाटते हैं
1: हाँ
0: ये, या एक दूसरे पशु का मूत्र पीने का प्रयास करते हैं, ये
1: जी
0: सभी खनिज तत्व की कमी के लक्षण हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप कम से कम अपने पशुओं को खाने वाला नमक
1: जी
0: जरूर दें। अगर हम खाने वाला नमक देते हैं, तो उसको कम से कम सोडियम और क्लोराइड दो तत्वों की पूर्ति हो जाती। खाने वाला नमक अगर हम खली के साथ मिला सकते हैं तो उचित है, अगर हम खली में नहीं मिला पाते किसी कारणवश,
1: हाँ
0: तो वही
1: हाँ
0: जब हम दाना बनाते हैं तो उसमें अगर हम 100 किलो में 1 किलो भी डाल देंगे, 1.5 किलो भी हम मिला देंगे, तो
1: जी
0: पशु को सॉल्ट के रूप में या नमक के रूप में उसको सोडियम और क्लोरीन मिलता रहेगा।
1: अच्छा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप खूब फरियाए की जानकारी दें और किसान भैया बहनी हरे ना आपके जौन ही जानकारी से बढ़िया लाभ उठे हैं, और साथ ही साथ जैसे कि जौन आप बताएं कि खनिज तत्व तो तरह तरह के जौन खनिज तत्व तो बा, और जैसे कि जिंक है, आयरन
0: आयरन
1: है,
0: है, सेलेनियम
1: मैग्नीज
0: है,
1: है, कापर
0: कैल्शियम
1: है,
0: है।
1: जिंक
0: जी
1: है, तो इस तरह के जो उन 22 तत्व के बारे में आप बताएं,
0: जी जी
1: अगर हमारे किसान भैया बहनी हरेन अपन पशुओं का स्वस्थ रखी हैं और रखे के साथे साथ अपन पशुओं का लगातार निगरानी करी
0: इन
1: हैं,
0: तत्वों की पूर्ति करें।
1: हाँ,
0: जी
1: तो इसे हमारे जो उन पशु हैं पशुओं का बढ़िया लाभ मिली, उनके स्वास्थ्य में कोनो तरह की कमी ना आई, स्वस्थ रही हैं, और दुग्ध दे वाली जौन दूध दे वाली अपन जौन पशु हैं उनके स्वास्थ्य में कोनो तरह की
0: और
1: कमी ना
0: उत्पादन
1: आई।
0: उनका बना रहेगा,
1: हाँ
0: उत्पादन बना रहेगा।
1: हाँ तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमने किसान भैया बहनिन का पशुओं के लिए आवश्यक खनिज तत्व के बारे में जो ना फरियाए की जानकारी दीन, ये जानकारी दे खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओ, कृषि जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पशुओं के लिए खनिज तत्वों की आवश्यकता और इस विषय पर डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप से बातचीत की सुरेश कुमार ने। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम

एनीमिया का मतलब है कि शरीर में खून की कमी। नॉर्मली अगर हिंदी भाषा में हम बोले तो खून की कमी हो जाती है। इसमें भी यही होता है कि जो सर्टेन लेवल का बेसिकली एनीमिया बोला जाता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। नॉर्मली लेस देन 7 ग्राम को हम लोग सीवियर एनीमिया बोलते हैं। और इसमें यह है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट, हम लोग मरीज को एडवाइज करते हैं कि नहीं, आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कराइए। मॉडरेट में क्या होता है कि कभी कभी सिंपल आप आजकल आयरन के इंजेक्शन आ गए हैं, बहुत सारे इंजेक्शन हैं, इंजेक्शन से भी आप कवर कर सकते हैं अपने आप को। जो बिलो 7 to 10 का रेंज होता है वो कवर कर जाता है आयरन के इंजेक्शन से भी। आजकल बहुत, एक तो ओरफर का इंजेक्शन है, दूसरा एक आजकल फ्रक्टोज का भी आ गया, उससे काफ़ी कुछ अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। बेसिकली हिंदुस्तान में जो एनीमिया को एक HB का लेवल जो बताया गया है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में, जो मेंस में आदमी लोगों में होता है HB का लेवल, और 13 to 16 ग्राम एडिक्वेट बताया जाता है, और फीमेल में 11 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन एक्चुअली में हिंदुस्तान में ऐसा है नहीं, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी फीमेल 9-10 ग्राम से ज़्यादा नहीं रहती, या कोई भी मेल एबव 12 नहीं जाता है। नॉर्मली इसी के रेंज में रहते हैं लोग।

0: क्योंकि बुक में इंटरनेशनल गाइडलाइन है, उसका एक लेवल बना हुआ है। लेकिन एनीमिया को बेसिकली हमारे कंट्री में, चूंकि अब हम लोग ऐसे तो डेवलपिंग कंट्री में हैं, लेकिन हमारा न्यूट्रिशन बड़ा पुअर रहता है। बेसिकली गांव में जो किसान लोग हैं उनका न्यूट्रिशन बड़ा ही पुअर रहता है, इसकी वजह से एनीमिया डेवलप करता है लोगों में। बेसिकली एनीमिया के कुछ जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एनीमिया का देखा जाए तो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, जो इंडिया में, हिंदुस्तान में बोला है, तो उसमें भी कॉमन है आयरन डिफिशेंसी एनीमिया। आयरन डिफिशेंसी एनीमिया में सर्टेन अमाउंट का जो आयरन का लेवल है वो कम हो जाता है बॉडी। बेसिकली चूंकि आयरन जो होता है वो मेनली हमारे खाने में मिलता है आयरन, जैसे हमारे जैसे रेड मीट हो गया है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, सी फूड्स हो गए, बीन्स हो गए हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ये थोड़े से जो अपने पुअर पॉपुलेशन है उसमें ये सब चूंकि एक्सपेंसिव रहता है, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए ही आयरन डिफिशेंसी एनीमिया बहुत कॉमन मिलती है। वैसे तो एक एनीमिया और बोलते हैं जिसको मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया नॉर्मली विटामिन B12 डिफिशेंसी को बोला जाता है, लेकिन हमारे वहाँ आयरन डिफिशेंसी एनीमिया बहुत कॉमन है। एक और एनीमिया का वेराइटी है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इनहेरिटेड एनीमिया, जिसको सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। नॉर्मल सिकल सेल एनीमिया भी बहुत कम लोगों में मिलता है। और एक होता है ए प्लास्टिक एनीमिया, जिसमें जो हमारे बोन मैरो है, जहाँ पे हमारा बेसिकली RBC प्रोड्यूस होता है, उसी में डिफॉर्मिटी रहती है, जिसकी वजह से वो एनीमिया हो जाता है लोगों में। लेकिन मैक्सिमम है हमारे वहाँ जो आयरन डिफिशेंसी एनीमिया कॉमन होता है, और सर्टन आजकल आयरन के टैबलेट्स हैं, आयरन के इंजेक्शन हैं, उससे ये कवर हो जाता है। दूसरा हम ये है कि अब इसको दूर कैसे करें, मतलब सर्टन एनीमिया ना होने पाए हमको, तो बेसिकली एक तो है कि हमारा अपना खाने पीने का रहे जो सर्टेन अमाउंट आयरन का रहता है वो। दूसरा महिलाओं में बेसिकली रहता है कि महिलाओं में थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहती है, कि कभी कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है उनको, उस वजह से उनको एनीमिया हो जाता है, या कभी कभी मतलब जो नॉर्मली मंथली आता है उसमें बीच में भी कभी मेंसेस स्टार्ट हो गए, उसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीड कर गए। मेंस में होता है, आदमी लोगों में हो क्या होता है कि जैसे पाइल्स की शिकायत हो गई, किसी किसी को GI ब्लीड होता है, किसी किसी को पॉलिप होता है, उसकी वजह से एनीमिया ये मिलता है। लेकिन नॉर्मली ये एनीमिया जो होते हैं वो सिंपल आयरन के टैबलेट से या आयरन के इंजेक्शन से ये कवर हो जाते हैं। नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेस देन 7 का जो रेंज है, लेस देन 7 पे आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, वो बड़ा रेयर केस में होता है, अनलेस अनटिल कि आपको कोई ना कोई एक ऑटोइम्यून डिजीज हो, और कोई आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से कि ब्लड आपका कम बन रहा हो, या तो ब्लड का डिस्ट्रक्शन, ब्लड टूटता ज़्यादा हो। इस केस में आपको, जैसे आप कोई लीवर के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, या आप आपको आंत की एक बीमारी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, उसमें ऐसा हो जाता है कि हाँ आपको ब्लीडिंग हो रही है, इस केस में ऐसा होता है कि वो नॉर्मली एनीमिया को माना जाता है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव की वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था एनीमिया, कारण, लक्षण और उपचार। और इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7 बजे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुनिएगा और 7:10 पर फिल्मों से भजन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। सुबह 7:30 और दोपहर 12:15 और रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन सुनेंगे। सुबह 8:45 पर सुनिएगा आपका अपना कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप मीनाक्षी दास के स्वर में गाए गीत और भजन सुनिएगा सुबह 9:50 पर। सुबह 10:30 लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं मुशर्रफ अली और साथी, इनके स्वर में गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे।

पर 12:30 बजे आपके गीतों की फरमाइश हम पूरी करेंगे। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में प्रस्तुति मधु कुमार जी की है। दोपहर 1:15 बजे पनघट कार्यक्रम में रक्षाबंधन पर होगी बात, लोकगीत अनुराधा श्रीवास्तव के स्वर में, साथ ही ममता सिंह की वार्ता रक्षाबंधन का सामाजिक महत्व सुनिएगा और रसोई घर में पकेगी ब्रेड के गुलाब जामुन। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5:00 बजे तेरस लाल और साथियों के स्वर में गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। शाम 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में चर्चा राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा पर और प्रेरणा पुंज में प्रीतिलता बाइंडे दार पर होगी बात। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में चर्चा जैविक और प्राकृतिक खेती पर और राहुल त्रिपाठी की वार्ता पर्यावरण संरक्षण एवं जन सहभागिता आप सुनेंगे। रामायण पाठ आप सुनेंगे सियाराम मिश्रा के स्वर में। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर आज आप काव्य पाठ सुनेंगे। प्रतिभागी हैं पूजा द्विवेदी। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: श्रूयंताम प्रभाचिका रजा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युवकूटनीतिज्ञान स्वनियुक्ति देशेषु जनस्तरे दृढ़ संपर्कं स्थापयितुं तथा स्थानीय समुदायैः सह भारतस्य संबंधान् अधिकं सुदृढ़ीकर्तुं च प्रेरितवान्। सेवातीर्थे भारतीय विदेश सेवायाः गतवर्षीय समूहस्य प्रशिक्षु अधिकारिभिः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी तान् पारंपरिक कूटनीतिक वृत्तेः परे स्वसंपर्क जालस्य विस्तारं कर्तुं अथ जनैः सह संपर्कं च सुदृढ़ीकर्तुं प्रोत्साहितवान्। असौ भारतस्य रिक्त सम्बद्ध शक्तीनां प्रौद्योगिक्या नवोन्मेषेण प्रभावी संप्रेषणेन च सह संयोजनं कृत्वा भारतस्य वैश्विक सम्पर्कम् अधिकं सुदृढीकर्तुं प्रेरितवान्। असौ भारतीयोपक्रमाणाम् अंकीयोपस्थितिं सुदृढीकर्तुं महत्त्वमपि प्रतिपादितवान्। विश्वस्य युवकेषु भारतं प्रति अधिक रुचिं जनयितुं भारत को जानिए इत्येतस्य प्रश्नोत्तर कार्यक्रमस्य उपयोगस्य असौ परामर्शं प्रदत्तवान्। प्रशिक्षु अधिकारिभिः स्वप्रशिक्षणस्य भारत दर्शनस्य च अनुभवाः अभिव्यक्ताः। अस्मिन् समूहे देशस्य विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्र शासित प्रदेशेभ्यश्च आगताः 50 भारतीय विदेश सेवा प्रशिक्षु अधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह सर्वेभ्यः संस्थानेभ्यः अन्तः प्रवेशस्य विरुद्धं कठोर पदक्षेपानि स्वीकर्तुं निर्देशं दत्तवान्। नवदिल्ल्यां ऐषमः नवम राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्री शाहः निर्देशितवान् यत् बहुसंस्थान केन्द्रस्य मञ्चे उपलब्धानां सूचनानां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः आधारेण विश्लेषणं करणीयम्, येन विविध राष्ट्रीय सुरक्षा आह्वानानां प्रतिकाराय मानक संचालन प्रक्रिया

0: याः निर्मातुं शक्यन्ते। सम्मेलनस्य प्रथमदिने राष्ट्रिय सुरक्षायाः महत्वपूर्णेषु पक्षेषु चर्चा अभवत्। तेषु आतंकवाद विरोधी आह्वानानां प्रतिकारः, बहुसंस्थान केन्द्र माध्यमेन गुप्त सूचनानां एकीकरणं, विश्लेषणं, कार्यान्वयनं च, मादक द्रव्याणां नियंत्रण संबद्ध दृष्टिपत्रम्, अवैध प्रवासिनां परिचयः, निर्वासनं च, तथा तेषां प्रतिकाराय नीति निर्माणम् इत्यादयः विषयाः सम्मिलिताः आसन्। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः क्रेमलिन इत्यत्र रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। उपवेशने द्विपक्षीय व्यापारः, आर्थिक सहयोगः अथ आगामी उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनानि चेत्यादिषु विषयेषु चर्चा अभवत्। रूस स्थितः 25वें चरणे भागं ग्रहीष्यति। ह्यः वार्ताहर सम्मेलने विशेष प्रतिनिधीनां वार्ताम् उद्घोषयन् चीन देशस्य विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता लिन जियान उक्तवान् यत् डोभालः, वांगयी च सीमा विवादस्य अतिरिक्तम् अन्येषु विषयेषु अपि घन चर्चां करिष्यतः। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य एम्स्टेलविन नगरे आयोजिते FIH इत्यस्य विश्वचषकस्य पूल क्रीडायां भारतीय पुरुष दलं अर्जेंटीना दलेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR पर, AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

भगवान शिव के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया, उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया?

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं अखियों के झरोखे फिल्म से, और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है हेमलता जी ने। समीर जी की रचना है, डेविड धवन ने संगीत दिया है। तो ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

कार्यक्रम में अगला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से, और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है लता मंगेशकर जी ने। पंडित नरेंद्र शर्मा जी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन तैयार की है, और ये भजन चला आपकी रेडियो सेट पर।

0: सत्यम शिवम सुंदरम। श्रोताओं, इसी भजन के साथ फिल्मों से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से 27 अगस्त को वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेल, फिटनेस और अनुशासन का देंगे मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को दी 346 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर जिले ने देश में बनाई अपनी पहचान। प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल। आज करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को प्रदेश के करीब 150 संस्थानों सहित देश भर में 1500 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम के तहत युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं को खेल, फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। श्री पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में यह आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा।
2: ध्यानचंद की जयंती होती है 29 तारीख को, उसको इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को सेलिब्रेट करते हुए वर्चुअली इंटरेक्शन करेंगे। हमारे देश के सारे युवाओं से जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके साथ संवाद किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे हम फिट होकर एक विकसित भारत में एक युवा अपना योगदान दे सकता है, कैसे नशे से हम युवा को दूर रख सकते हैं अगर उसको हम खेलों की तरफ मोड़ते हैं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रायबरेली में 879 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 346 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टे के आवंटन पत्र भी सौंपे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन के निर्माण की वजह से आज रायबरेली का नाम पूरे देश में गौरव के साथ लिया जा रहा है।
3: इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 2156 कोचेज का निर्माण किया और ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। और पहली बार मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप वंदे भारत ट्रेन बनी है। वंदे भारत का पूरा ट्रेन सेट का रोल आउट इसी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी है। रायबरेली का नाम न केवल

0: उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर गौरव के साथ लिया जा रहा है।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने रायबरेली में ही 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमरनायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से बने अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मृति सभागार का लोकार्पण किया, साथ ही डाक विभाग की ओर से तैयार किए गए विशेष आवरण का विमोचन भी किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
2: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचा। दौरे के पहले दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और मीडिया से बातचीत भी की।
3: उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए, खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं उनको कुछ बात समझा दें, और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज और जितने स्कूल्स हैं वहां पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम होंगे।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कल लखनऊ में मतदाता साक्षरता क्लब और ECI नेट ऐप को लेकर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में शाहजहांपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखनऊ और अमेठी सहित 20 जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मीडिया नोडल अधिकारी और लगभग 1,500 विद्यार्थी, शिक्षक और संस्थानों के प्रमुख शामिल हुए। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लखनऊ के कॉलविन तालुकेदार कॉलेज में देश की लोकतांत्रिक प्रणाली, चुनावी प्रक्रिया, EVM की विश्वसनीयता और युवा मतदाताओं के महत्व पर छात्रों के साथ बातचीत की। वो आज लखनऊ और आसपास के जिलों के लगभग 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में कल 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।
4: ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स एक विचार से आगे बढ़कर उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के प्रमुख मंचों में शामिल हो गया है। जलवायु परिवर्तन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सतत विकास को लोगों और समुदायों की जरूरतों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक और सामुदायिक ज्ञान जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच का आयोजन लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक किया जा रहा है। इस दौरान ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वाइन फ्लू को लेकर प्रदेश में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महानिदेशक स्वास्थ्य को पत्र जारी करके स्वाइन फ्लू के मामलों की लगातार समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा है। श्री पाठक ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वाइन फ्लू से संबंधित मामलों पर नजर रखी जाए, साथ ही अस्पतालों में आने वाले संभावित और संक्रमित मरीजों की स्थिति की नियमित निगरानी और आवश्यकता के अनुसार तत्काल उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर पिंकी जोबेल की

0: अध्यक्षता में कल गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में स्टेट रिव्यू मिशन SRM के दूसरे चरण के तहत गोरखपुर और वाराणसी मंडल की समीक्षा की गई। इस अवसर पर मिशन निदेशक ने दोनों मंडलों की स्वास्थ्य इकाइयों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसव के बाद की अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से 27 अगस्त को वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेल, फिटनेस और अनुशासन का देंगे मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को दी 346 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर जिले ने देश में बनाई अपनी पहचान। प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल। आज करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30:44 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन सुनाएंगे। राग है ललित और आपके साथ तबले पर संगत किया है अनिंदो चटर्जी ने। बांसुरी पर आपके साथ संगत किया है रूप कुलकर्णी ने। तो लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन सुन रहे थे। राग था ललित, आपके साथ तबले पर संगत किया था अनिंदो चटर्जी ने, और आपके साथ बांसुरी पर संगत किया था रूपक कुलकर्णी ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत UPI के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेन देन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे, और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे, जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर

0: से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
2: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का ये सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने

0: सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगी। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
1: उत्थरादम सिर्फ तिरुओणम से पहले का दिन ही नहीं है, बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच अखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
3: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी

आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेनदेन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की

0: ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार, मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेन देन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कोलंबो में ध्रुव जुरैल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स अपॉन यंग डिप्लोमैट्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट्स लेवल एंगेजमेंट इन द कंट्रीज ऑफ पोस्टिंग एंड डीपन इंडियाज कनेक्शन विद लोकल कम्युनिटीज। Union Home Minister Amit Shah asks all security agencies to take strict measures against infiltration. UPI completes 10 years of digital payments revolution, clocks nearly 13,000-fold rise in transaction volume. Government lifts export restrictions on wheat, flour and related products. BJP to contest all 117 seats in upcoming Punjab Assembly elections. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. And in men's cricket, centuries by Dhruv Jurail and Devdutt Padikkal give India command over Sri Lanka in the second and final test in Colombo. Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots-level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service IFS at Seva Tirth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. We have more from a correspondent.
3: Mr. Modi encouraged the officer trainees to combine India's civilizational strength with technology, innovation and effective communication to further strengthen India's global engagement. The Prime Minister also called upon the officer trainees to serve as catalytic agent for countries' economic engagement with the world. He also emphasized the importance of strengthening the digital presence of Indian missions. Mr. Modi urged the officer trainees to work towards making India a more attractive global tourism destination by showcasing its civilizational, cultural and geographical strength. He suggested leveraging the Bharat Kujani No India Quiz to generate greater interest in India among young people across the world and encouraged the use of AI and gaming to make such initiatives more engaging. The group comprised 50 IFS officer trainees who come from different states and union territories across the country. With Anupam Mishra, Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center MAC platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. To effectively tackle terrorism and radicalization, Mr. Shah emphasized training for implementation of the Home Ministry's Prahar scheme, expediting trials by bringing back fugitives and utilizing trial in absentia provisions and undertaking a comprehensive and integrated approach while investigating UAPA cases. We have more from a correspondent.
4: On the first day of the conference, discussions focused on critical aspects of national security and document on narcotics control, detection and deportation of illegal migrants, a policy framework to combat cybercrime and proxy warfare by Pakistan. The

0: and the United States beginning today. The finance ministry said the focus of the visit will be on strengthening bilateral economic and financial partnerships, deepening investment linkages, and advancing cooperation on shared global economic priorities. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon young diplomats to build strong grassroots-level engagement in the country, supporting and deepen India's connection with local communities. Union Home Minister Amit Shah asks all secret agencies to take strict measures against infiltration. UPI completes 10 years of digital payments revolution, clocks nearly 13,000-fold rise in transaction volume. Government lifts export restrictions on wheat flour and related products. BJP to contest all 117 seats in upcoming Punjab Assembly elections. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. And in men's cricket, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal give India command over Sri Lanka in the second and final test in Colombo. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों पर जोर दिया है कि वो जिन मुल्कों में मुतय्यन हैं वहां सबसे निचली सतह पर मजबूत रابطے कायम करें और मकामी लोगों के साथ भारत के रिश्ते को फरोग दें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो दरंदाजी के खिलाफ सख्त इकदाम करें। डिजिटल अदायगी के इनकलाब के तौर पर UPI को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और लेन देन के एतबार से तकरीबन 13,000 गुना का इजाफा हुआ है। सरकार ने गेहूं के आटे और इससे तैयार होने वाली अशिया पर बरामदी बंदिशें हटा ली हैं। बीजेपी आने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खसूसी नुमाइंदों की बातचीत में शिरकत करेंगे। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मजबूत पोजीशन हासिल कर ली है। ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल ने सेंचुरियां बनाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों पर जोर दिया है कि वो जिन मुल्कों में मुतय्यन हैं वहां सबसे निचली सतह पर मजबूत रابطے कायम करें और मकामी लोगों के साथ भारत के रिश्ते को फरोग दें। सेवा तीर्थ में इंडियन फॉरेन सर्विस के 2025 के बैच के ज़ेर तरबियत अफसरों के साथ गुफ्तगू करते हुए जनाब मोदी ने रिवायती सिफारती हलकों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क को वसअत देने और लोगों के साथ रابطوں को बढ़ाने के लिए इन ज़ेर तरबियत अफसरों की हौसला अफजाई की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जनाब मोदी ने ज़ेर तरबियत अफसरों की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो आलमी सतह पर भारत के रابطوں को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की खातिर तकनीक इख्तरा और मौसर मवासलात के जरिए भारत की तहजीबी क़ुव्वत को मरबूत करें। वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे जोर देकर यह भी कहा कि वो दुनिया के साथ भारत के माशी रابطوں के लिए एक सरगर्म वसीले के तौर पर काम करें। जनाब मोदी ने भारतीय मिशनों की डिजिटल मौजूदगी को मुस्तहकम बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ेर तरबियत अफसरों से कहा कि वो भारत की तहजीबी सकाफती और जोग्राफियाई क़ुव्वत की अक्कासी करते हुए आलमी सतह पर सियाहत के लिए भारत को और ज़्यादा पुरकशिश मकाम बनाने की समत काम करें। जनाब मोदी ने दुनिया के नौजवान लोगों में भारत के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करने की खातिर भारत को जानिए नो इंडिया क्विज का अहतमाम करने की तजवीज़ भी पेश की। इन ज़ेर तरबियत अफसरों में इंडियन फॉरेन सर्विस के 50 अफसर शामिल थे जो मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से आए हुए थे। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो दरंदाजी के खिलाफ सख्त इकदाम करें। नई दिल्ली में कौमी सलामती से मुतालिक हिकमत अमली के बारे में नवी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब अमित शाह ने हिदायत दी कि मुख्तलिफ एजेंसियों पर मुश्तमिल सेंटर के प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब जानकारी का AI पर

0: बिहार में पटना और कई दीगर जिलों में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। दरियाए गंगा और दीगर बड़े दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। तुगयानी पर आए हुए गंगा दरिया से भागलपुर और बेगूसराय जिले में पुश्तों में शिगाफ पड़ने की वजह से सैकड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: रियासत के बेगूसराय ज़िले में झमतिया गांव के नज़दीक पुश्ते में तकरीबन 30 फुट का शिगाव पड़ने की वजह से कई पंचायतों के दायरे में आने वाले इलाके मुतासिर हुए हैं। आबी वसाइल के महकमे की टीमें पुश्तों की मरम्मत के काम में लगी हुई हैं। उधर रियासत के वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए सैलाब से मुतासर ज़िलों का फ़जाई सर्वे किया। उन्होंने इंतजामिया को यह हिदायत दी है कि वो तेजी के साथ राहत और बचाव कार्रवाई अंजाम दें। गंगा में पानी चढ़ने के तनाजुर में मगरबी बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी फाटक खोल दिए हैं। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी की दरखास्त पर ऐसा किया गया है। इससे बिहार में सैलाब की सूरत हाल को कंट्रोल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: ओडिशा में आज बारिश की सूरतेहाल कुछ बेहतर होने का इम्कान है। अगरचे खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव के हलके का असर रियासत के कई हिस्सों में महसूस किया जा सकता है। रियासत के शिमाली साहिली ज़िलों में औसत बारिश का इम्कान है। इस दौरान हालिया मुसलसल बारिश के सबब दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा होने के पेश नज़र सैलाब से मुतासर इलाकों में निगरानी की जा रही है। महकमे मौसमियात IMD ने 16 ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रियासत में इस माह की 30 तारीख तक बारिश जारी रहने का इम्कान है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव के ज़ेरे असर ओडिशा में मौसम में मुसलसल तब्दीली आ रही है। कई इलाकों में औसत बारिश और शुमाली ओडिशा के साहली ज़िलों में बारिश का इम्कान है। 16 ज़िलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। लगातार बारिश और पानी जमा होने के मद्देनज़र एहतियात के तौर पर आज सैलाब से मुतासर भद्रक और जाजपुर में बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल बंद हैं जो सैलाब से बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। इस दौरान अखुपाड़ा में बैतरनी दरिया अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अगरचे इसके पानी की सतह में कुछ कमी आ रही है, सैलाब के खतरे वाले इलाकों में हुक्काम मुसलसल करीबी नज़र रखे हुए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते, शिमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, साहिली कर्नाटक, केरला और माहे में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। केरलम में 10 रोज़ा ओनम त्यौहार से कबल आज उत्तरादम मनाया जा रहा है। रियासत में कल तिरुओनम के इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आज के दिन लोग इस बड़े त्यौहार के लिए आखिरी तैयारियां मुकम्मल करते हैं और ख़रीदारी भी करते हैं। रिवायती उत्तराड़ा पाचिल की वजह से बाजारों और ख़रीदारी के मराकज़ पर लोग जश्न की आखिरी ख़रीदारियों में मसरूफ हैं। ओना पुकलम से घरों को सजाया जा रहा है और रिवायती ओना सदिया के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अमेरिका के वजीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान पर नई बंदिशों का मकसद उसके मुमकिन माली ज़राए पर रोक लगाना है। उन्होंने मुल्कों को मुतनब्बे किया कि वो ईरान के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात को ख़त्म करें वरना उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मर्दों के क्रिकेट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पटिगल की सेंचुरियों की बदौलत भारत ने कल कोलंबो में दूसरे और आखिरी टेस्ट के बारिश से मुतासिर दूसरे दिन मेज़बान श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 503 रन बनाकर ख़त्म कर दी। ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 115 रन बनाए। देवदत्त पटिगल ने कल शानदार 117 रन बनाकर इनिंग्स की मजबूत शुरुआत की थी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
2: शुक्रिया कौनैन। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से डॉक्टर SJ शंकर की मुलाकात से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। इस मुलाकात के दौरान भारत रूस ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खसूसी पैगाम भी उन तक पहुँचाया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल वजीर खारजा वांग यी की दावत पर चीन पहुंचे, जहां वो 25वीं भारत चीन सरहदी मुजाकरात में शिरकत करेंगे। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, मुसाफिरों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने

0: के लिए रेलवे ने शुरू की सफाई मुहिम। इस हिकमत अमली के तहत पीने के पानी के पूरे निजाम की बार बार जांच और सही तरीके से देखभाल पर जोर दिया गया है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों पर जोर दिया है कि वो जिन मुल्कों में मुतय्यन हैं वहां सबसे निचली सतह पर मजबूत राबते कायम करें और मकामी लोगों के साथ भारत के रिश्ते को फ़रोग दें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो दरअंदाजी के खिलाफ सख्त इकदाम करें। डिजिटल अदायगी के इनकलाब के तौर पर UPI को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और लेन देन के एतबार से तकरीबन 13,000 गुना का इजाफा हुआ है। सरकार ने गेहूं के आटे और इससे तैयार होने वाली अशिया पर बरामदी बंदिशें हटा ली हैं। BJP आने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खसूसी नुमाइंदों की बातचीत में शिरकत करेंगे। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मजबूत पोजीशन हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। और श्रोताओं, इस वक्त सुबह के 8:45 हो गए हैं और ये वक्त है आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज का।

जी सुनिए कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हाँ जी प्रयागराज वासियों और मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं, मैं आप सभी की रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे और बारिश का आनंद ले रहे होंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचारों से, और सुविचार हमें प्राप्त हुआ है नीरा त्रिपाठी जी का। इनका सुविचार बहुत मोटिवेशनल होता है, तो इनका सुविचार इन्होंने लिखा है, यदि इरादे मजबूत हैं तो कोई भी कठिनाई मंजिल मिलने से नहीं रोक सकती है। ईश्वर पर विश्वास कीजिए, सफलता निश्चित है। क्या बात है, नई सुबह का हर पल ईश्वर का अनमोल उपहार है। इसे मुस्कान, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों के साथ बिताइए। और एक सुविचार इन्होंने और भेजा है, वो लिखती हैं, विश्वास का पौधा लगाने से पहले जमीन ज़रूर परखना चाहिए, क्योंकि हर जमीन उपजाऊ नहीं होती है। क्या बात है नीरा जी, आपके सुविचार बहुत ही अच्छे होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, और आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम में अपने सुविचार भेजे। और अब हम बात करते हैं आज के विषय की। तो भाई एक बात बताइए, हर सफल व्यक्ति को देखकर आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि नहीं, कि वो सफल कैसे हो गया? मेहनत तो हम भी जी तोड़ कर रहे हैं, पर हम वहीं के वहीं और वो सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। कैसे? और ये कैसे एक दिन हमें मानसिक तनाव में ला देता है और हम जो कर रहे होते हैं उसमें भी असफल होने लगते हैं। हाँ जी, तो बस बस आप सभी के इसी प्रश्न का हल यानी उत्तर लेकर आई हूँ मैं, और अब देखना ये है कि आप मेरे मत से कितने सहमत होते हैं। तो बता दूँ, अगर आपको सफल होना है किसी भी क्षेत्र में तो जीवन में लक्ष्य का निर्धारण होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने यदि अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो ज़रूर बनाइए, ठीक है? तो बस आज और अभी से अपना एक लक्ष्य बनाइए। और एक बात बताऊं, जीवन में यदि लक्ष्य नहीं है तो ये तो

0: वही बात हो गई कि बिना पतवार मांझी लहरों से रेस लगाने की सोच रहा है। तो ऐसा मत करिए भाई, जीवन बहुमूल्य है, इसके कीमत को पहचानिए। और सबसे पहले आपको बता दूं कि लक्ष्य निर्धारण है क्या, लेकिन इसको मैं आपको बताऊंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो आप अपने रेडियो सेट के बिल्कुल करीब रहिएगा, इस अंतराल के बाद हम बातें करेंगे लक्ष्य निर्धारण पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: कहाँ चल दिए, आ जाइए अपने रेडियो सेट के और करीब, और हम आपको बता रहे हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण जरूर करिए। अच्छा, लक्ष्य निर्धारण है क्या? सरल शब्दों में कहूँ तो लक्ष्य भविष्य का एक ऐसा वांछित परिणाम है जिसकी हम कल्पना करते हैं और उसे पाने के लिए योजना बनाते हैं, और सही लक्ष्य हमारी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करता है। आपको बताऊं, सफल होने के लिए लक्ष्यों का स्मार्ट होना जरूरी है, तो भाई स्मार्ट बनिए। और अब हम आपको ले चलते हैं संगीत यात्रा पर। बातें बहुत हो गई और आप कहेंगे कि नीलम बातें बहुत करती है, भाई आपसे मिलती हूँ तो बातें करने का तो मन करता है, लेकिन चलते हैं एक संगीत यात्रा पर, यानी म्यूजिकल ब्रेक।

जी श्रोताओं, म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं आपकी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव। तो भाई स्मार्ट होना चाहिए, लक्ष्य एकदम साफ और सटीक होना चाहिए। मतलब आप जो अपने लिए लक्ष्य बना रहे हैं, आप उसमें कोई डाउट फील ना करें, और अपनी प्रगति की जांच के लिए आपके पास खुद का एक पैमाना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके काम की तारीफ किसी ने कर दी तो आप खुश हो गए और आपको लगने लगा कि आप सफल हो गए। अब बस नहीं भाई, ऐसा नहीं चाहिए। इससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। और आप अपने काम की जांच खुद करिए कि आपने क्या सही किया है और क्या गलत। इसे आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, क्योंकि हर इंसान जानता है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत। एक और बात आपको बताऊं कि लक्ष्य यथार्थवादी और आपकी क्षमताओं के भीतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कोई लक्ष्य बना लें जिसे आपकी क्षमता जवाब दे जाए, मतलब आप उसे कर ही ना पाए। ऐसा कोई लक्ष्य मत बनाइए। आपकी क्षमता के भीतर जो भी हो आप उसे करिए, और यह आपके दीर्घकालिक मूल्यों और जीवन के उद्देश्यों से मेल खाना चाहिए, और इसे पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करनी चाहिए, यानी टाइम बाउंड। आप ये टाइम बाउंड तब सीखेंगे जब आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे। तो और इस विषय पर, यानी टाइम मैनेजमेंट पर, मैंने आपसे पहले भी बात किया है। सारा खेल श्रोताओं टाइम मैनेजमेंट का ही है। आप टाइम मैनेजमेंट कर गए तो कोई भी बड़ा लक्ष्य हो उसे आप पार कर सकते हैं, पा सकते हैं। यानी टाइम टाइम टाइम टाइम लक्ष्य निर्धारण से लाभ भी बहुत होता है। यह हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और छोटे छोटे लक्ष्य जब हम सफलता से पूरा करते हैं ना, तो हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और कार्यों की प्राथमिकता तय करना आसान हो जाता है। तो भाई अपने जीवन को छोटा छोटा लक्ष्य दीजिए, बनाइए और उसे पूरा करिए, और फिर देखिए कमाल, आप भी सफलता की सीढ़ी वन बाय वन पार करते जाएंगे, और सभी आपको देखकर यही कहेंगे क्या बात है।

और अब ये बात मैं आप सब पर छोड़ती हूँ कि आप मेरे मत से कितने सहमत हैं, और ये बताने के लिए हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजिएगा।

दिल की सुनिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी जी की थी। तो भाई श्रोताओं, अब नमस्कार प्रयागराज।

0: हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
4: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
5: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जाँच लें।
6: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
7: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
8: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
7: RBI कहता है जानकार बनिए,
8: सतर्क रहिए।
9: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
4: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
0: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में, और श्रोताओं इस वक्त लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं।

कल आपको ले आया आकाशवाणी प्रयागराज केंद्र में, और ये गीत है उमराव जान फिल्म का। इस गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है अलका याग्निक ने, और जावेद अख्तर जी की रचना है, अनु मलिक का संगीत है। आपको मेरा भी सलाम कबूल हो।

महफिल में आ गए हैं और ऐसा हो सकता है कि हम आपको गीत न सुनवाएं। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं बधाई हो बधाई फिल्म से, और इस गीत को अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से सजाया है के ने। जावेद अख्तर जी की रचना है, अनु मलिक का संगीत है। और एक बात बताऊं श्रोताओं, जावेद अख्तर जी क्या लिखते हैं, देखिए जिंदगी में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके ज़िंदगी में मोहब्बत है कि नहीं।

कि यकीनन सशरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी कानों में यूं ही गूंजती है और फिजाएं उनकी यादों में गूंजती रहती हैं।

प्यार बांटते चलिए। और आपको बताऊं, केके की आवाज़ जितनी खूबसूरत थी वो इंसान भी उतने ही खूबसूरत थे। और अब हम आपको सुनवाते हैं लव यू टोक्यो फिल्म, लव यू सोनियो फिल्म का गीत, और ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत। आवाज़ है केके की। डॉक्टर सागर ने इस गीत की रचना की है और बिपिन पाटवा ने संगीत दिया है, और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

संगीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से

0: संगीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर देहात और हरदोई जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख है देवेश सिंह का।
2: कानपुर देहात में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय सहित सरकारी कार्यालयों, स्कूल कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान हुआ। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारी, प्रतिनिधि, कर्मचारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कानपुर देहात में आजादी के जश्न को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कैबिनेट मंत्री राकेश सचन, राज्य मंत्री अजीत पाल और अन्य जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों और भारत माता के जय घोष से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। जनप्रतिनिधियों ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए मिलकर काम करने का संदेश दिया। वहीं प्रशासन की ओर से भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। कानपुर देहात के मूसा नगर में संत शिरोमणि की कलश वंदन यात्रा में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गो संरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया। मंत्री ने कहा कि अब गो संरक्षण अभियान में नई पीढ़ी को जोड़ा जाएगा और गांव-गांव 10,000 गो मित्र तैयार किए जाएंगे। सरकार का मकसद बच्चों और युवाओं में गो संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके लिए करीब 10,000 गो मित्र तैयार किए जाएंगे। गो संरक्षण में रुचि रखने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभियान के तहत मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जाएंगे, जो आगे अन्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। सरकार का प्रयास है कि बच्चों के मन में गो माता के प्रति प्रेम और गो संरक्षण की भावना विकसित हो। मंत्री ने कहा कि गो संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। नई पीढ़ी को इस अभियान से जोड़कर गांव-गांव तक गो संरक्षण का संदेश पहुंचाया जाएगा। मूसा नगर से गो संरक्षण को लेकर सरकार की नई पहल का संदेश साफ है, अब नई पीढ़ी भी बनेगी गो संरक्षण अभियान की सहभागी। कानपुर देहात में सावन माह के चलते पूरा जनपद शिवमय नजर आ रहा है। सुबह से ही प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। कांवड़िये भी गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कानपुर देहात में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 के तहत 11 से 18 अगस्त तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों की फिटनेस परमिट और चालकों के सत्यापन की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने पर 46 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 8 वाहनों को निरुद्ध किया गया। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालकों को बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता न करने की हिदायत दी है। प्रशासन का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। वहीं गाँव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राखियां तैयार करने में जुटी हैं। महिलाएं अलग अलग डिजाइन और रंगों की राखियां तैयार कर रही हैं। इन राखियों की बिक्री से समूह की महिलाओं को आमदनी हो रही है और उनकी मेहनत को बाजार भी मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि पहले वे सिर्फ घर के काम तक सीमित थी, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें हुनर दिखाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिला है। इस बार वे अपने हाथों से तैयार राखियों के जरिए रक्षाबंधन के त्योहार को खास बनाने में जुटी हैं। कानपुर देहात में फर्जी फर्मों के नाम पर काम कराने और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतों के

0: मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने संबंधित विभागों को फर्म के दस्तावेज, पंजीकरण, जीएसटी, बैंक खातों और किए गए कार्यों की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की जांच में यदि किसी फर्म के दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं या सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित फर्म और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए ताकि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त न किया जाए।
1: कानपुर देहात जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख है आकाश शुक्ला का।
2: हरदोई में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक सचिवालय वार एक औषधि वाटिका विकसित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में 14 अगस्त को जिले के 19 विकास खंडों में कुल 233 औषधि वाटिकाओं में पौधारोपण किए गए। इनमें सहजन, आंवला, नींबू सहित विभिन्न पारंपरिक उपयोग वाले पौधे शामिल हैं। इन वाटिकाओं से पर्यावरण को बेहतर बनाने के साथ नई पीढ़ी को औषधि पौधों और उनके उपयोग की जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। हरदोई में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने गांधी भवन परिसर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने हालिया परीक्षा पेपर लीक विवादों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीट और झारखंड जेपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था अत्यधिक मजबूत और सुरक्षित होनी चाहिए ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, हिंसक नहीं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरदोई में राष्ट्रभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। अधिकारियों ने देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने वाले और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का संकल्प लिया। हरदोई में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी अनुनय झा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने जनपद वासियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सभी को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम करना है। छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करके हम देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति कुंतल करने की घोषणा की। इस घोषणा के उपलक्ष्य में हरदोई की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। शाहबाद विकास खंड परिसर में राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी की उपस्थिति में उचित दर विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री की घोषणा को देखा और सुना तथा लाभांश वृद्धि पर खुशी जताई। इस वृद्धि से हरदोई के 1612 उचित दर विक्रेताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने हरदोई में शहीद मेजर पंकज पांडे की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने हरदोई मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद मेजर पंकज पांडे के नाम पर रखने का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि मेजर पंकज पांडे ने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया जिस पर पूरा प्रदेश गर्व करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शहीदों का सम्मान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर सभी वर्गों को साथ लेकर विकास कार्य कर रही है। हरदोई में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के विराट व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने विचारों, सिद्धांतों, संवेदनशीलता और राष्ट्र सेवा से देश के राजनीतिक जीवन को नई दिशा दी। वे दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सभी वर्गों में सम्मानित जननेता के रूप में स्थापित हुए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी कानपुर देहात और हरदोई जिलों की हलचल।
4: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्लास्टिक के बैगों का उपयोग

उपयोग कम करें, जूट के बैगों का प्रयोग ज्यादा करें। यह प्रकृति के संरक्षण में एक कदम। श्रोताओं लीजिए सुनिए देशगान।

0: सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: हाजिर है लेके अपना सलामे खुलूस हम, हाजिर है लेके अपना सलामे खुलूस हम, फिर से सजाई महफिल फिर आ गए हैं हम। इस पैगाम के साथ आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम को लेकर हाजिर है आपका मेजबान फरीदुल्ला खान। सलामे मोहब्बत के साथ आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। ये प्रोग्राम आकाशवाणी रामपुर के मरकज पर तैयार किया गया। इस्लामी साल यानी कमरी महीनों में रबीउल अव्वल, इस माह में इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई मक्का शहर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त बेहद जहालत का दौर था। आप बचपन से ही ईमानदार, फरमाबरदार और अमानतदार थे। दरअसल दुनिया और आखिरत के लिए रहमतुलिल आलमीन बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हिदायत की जो रोशनी फैली, वो इंसानियत के हर तबके के लिए मुकम्मल रहनुमाई है। ख्वा वो फलसफी हो, मुफस्सिर हो या दानिश्वर हो, एक आम इंसान से लेकर मेहनतकश मजदूर तक पूरी आलम के लिए, बल्कि कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम पहलुओं को नुमाया किया है। आपका अखलाक, आपकी ईमानदारी, आप एक सच्चे मोहसिन इंसानियत की मिसाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलकर हम एक बेहतर मुआशरे की तामीर कर सकते हैं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अखलाक अच्छा नहीं वो हम में से नहीं। तो सामीन, आज हम इस प्रोग्राम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे, मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस अहम मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं डॉक्टर शायरुल्लाह खान। समाप्त कीजिए ये तकरीर।
2: छठी सदी ईस्वी का आखिरी जमाना था। अरब के कबीले कुरैश की हाशमी शाख के एक मारूफ फर्जंद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के घराने में 20 अप्रैल 571 ईस्वी मुताबिक 9 रबीउल अव्वल को एक ऐसा आफ्ताब रिसालत तुलू हुआ, जिसने फरसूदा ख्यालात और गुमराह कुन एतकादात की दुनिया में इनकलाब बरपा कर दिया। यही वो दिन था जब मारिफत हक की साफ व शफाफ और रोशन राहें खुली। दुनिया भर के बेचैन व बेताब जर्रों ने वहदानियत के गीत गाए और खुदाशनासी और नेक अमली के उजड़े हुए चमन में बहार आ गई। ये आफ्ताब रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुआ। अगर आप माजी की तरफ लौटें तो छठी सदी ईस्वी का जमाना घटाटोप अंधेरों में घिरा हुआ था। आदमी का दुश्मन खुद आदमी बना हुआ था। बंदे और खुदा का रिश्ता मादूम था। अल्लाह ला शरीक के बजाय मिट्टी के वजूद से मामूर बेशुमार खुदा हरम मोहतरम में दाखिल काबिज थे। ऐसे माहौल में सरताज रिसालत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का इनकलाबी आगाज किया। बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। आपकी जिंदगी का एक एक गोशा रहम व इंकिसार से लबरेज था। उहद के मैदान में जब आपका मुबारक सर और दांत शहीद हुए तो आप यही फरमाते रहे, ऐ अल्लाह इन्हें

0: वाणी के लखनऊ मरकज से नश्र किया जा रहा था।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र को, और श्रोताओं लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप मीनाक्षी मिश्रा के स्वर में गाए भजनों का आनंद लेंगे। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं मीनाक्षी मिश्रा के स्वर में गाया ये भक्ति रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप मीनाक्षी मिश्रा के स्वर में गाए भजनों का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिकों को दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय दूतावासों की डिजिटल उपस्थिति को मजबूत करने के महत्व पर भी बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का आधार बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा लिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय संबंध को मजबूत करना है। भाजपा के महासचिव BL संतोष ने पटियाला में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं।

0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हो गए हैं और लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। तो भाई, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने से पहले ये पूछते हैं कि बारिश की बूंदें जब आकाश से छम-छम धरती पर गिरती हैं तो आपका दिल भी मानता है कि नहीं? कहता है ना कि चलो भींग लेते हैं, फिर एक दिल कहता है अरे भाई रुक जाओ, भींग जाओगे तो बहुत तेज़ बुखार हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। तो भाई, कार्यक्रम का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म से। अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की खूबसूरत सी आवाज़ है, आनंद बख्शी जी की रचना है, शिव हरि ने संगीत तैयार किया है। तो ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर, आपका भी दिल क्या कहता है।

भाई हमारा तो दिल बिल्कुल नहीं मानता है, आपका मानता है कि नहीं ये आप बताएंगे। और आपसे दिल का रिश्ता ऐसा बन गया है कि वन बाय वन एक गीत हम आपको दिल पर सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं एक रिश्ता फिल्म का गीत, अलका याग्निक और कुमार शानू जी की आवाज़ है, समीर की रचना है, नदीम श्रवण ने धुन तैयार की है और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

कोई दिल एक दूसरे को जब समझने लगे तो क्या बात है, लेकिन ये दिल भी ना बहुत बेईमान है। रहता हमारे दिल में है और समझता है किसी और दिल की बात। तो भाई ये दिल ही तो है, किसी पर आ जाए तो क्या कीजिए। अब हम आपको सुनवाते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत, और इस गीत को अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर जी ने। अनजान की रचना है, कल्याण जी आनंद जी ने संगीत तैयार किया है और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर। दिल ही तो है, क्या कीजिए।

एतबार क्या कीजिए, आ गया किसी पे प्यार तो क्या कीजिए। भाई प्यार है, हो जाता है, और ये तो दिल की बातें हैं, तो वो बन जाते हैं दिल के चैन, वो बन जाते हैं दिल के चैन जो कभी रहते थे नजरों से दूर। तो अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हम लेकर आए हैं मेरे जीवन साथी फिल्म से, और इस गीत को अपनी स्वर से सजाया है किशोर दा ने। मजरू सुल्तानपुरी जी की रचना है, आर डी बर्मन जी का संगीत है, और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

ये भी दुआ कीजिए कि हमारे दिल को भी चैन आए। और अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा, जिसे हम लेकर आए हैं रफू चक्कर फिल्म से, और इस गीत को अपनी आवाज़ों से सजाया है शैलेंद्र सिंह कंचन ने, और गुलशन बावरा की रचना है, धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने, और एक गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

वक्त हो गया है और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीत का कार्यक्रम। लोकगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं मुशर्रफ अली और साथी। तो मुशर्रफ अली और साथियों के स्वर में लीजिए सुनिए देवी गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। आज के कलाकार हैं मुशर्रफ अली और साथी, और अब हम आपको सुनवाते हैं मुशर्रफ अली और साथियों के स्वर में गाया खेमटा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम मुशर्रफ अली और साथियों के स्वर में, और अब इन्हीं के स्वर में लीजिए सुनिए रसिया गीत।

जैसी फिल्मों में काम किया। पहला गाना उन्होंने बतौर मुख्य पार्श्व गायक शुरुआत की 1973 में फिल्म दरवाज़ा के गाने होश में हम कहाँ हैं इससे। ये संगीतकार सपन जगमोहन ने संगीतबद्ध किया था। बड़ी पहचान उनको मिली 1976 की फिल्म बालिका वधू के सुपर हिट गाने बड़े अच्छे लगते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत भी हम आपको इसी फिल्म से यानी यही गीत सुनवा रहे हैं।

ये गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन था आरडी बर्मन का। ये फिल्म शक्ति फिल्म्स के बैनर तले आई थी। जैसा कि मैंने पहले बताया 1976 में। राहुल देव बर्मन यानी आरडी बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने कई सदाबहार गीत दिए। फिल्म लव स्टोरी का गीत आपको याद होगा, याद आ रही है, कैसा तेरा प्यार, इस तरह से। तो अगला गीत हमने लव स्टोरी से ही लिया है।

देश के सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं अमित कुमार। 7 जुलाई 1989 को एक फिल्म रिलीज हुई थी त्रिदेव। ये त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले, और इसके एक गीत ने तहलका मचा दिया था, और वो गीत था तिरछी टोपी वाले, जिसे अमित कुमार ने सपना मुखर्जी के साथ गाया था। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको यही सुनवा रहे हैं।

रमेश फिल्म्स के बैनर तले 1991 1 फरवरी को रिलीज हुई थी हम, और इसके गीत ने तहलका मचाया था। उसका एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, सनम मेरे सनम, जिसे अमित कुमार जी ने अलका याग्निक के साथ गाया है। गीत के बोल तो आनंद बख्शी ने ही लिखे हैं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आधे घंटे के कार्यक्रम में किसी भी कलाकार को समेटना बड़ा मुश्किल काम होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको उनकी ज़िंदगी, किसी भी कलाकार की बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी और उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको अवगत कराएं। एक फिल्म आई थी 30 अगस्त 1985 को रिलीज़ हुई थी, लेकिन इसके गीत ने सोचने के लिए मजबूर किया। फिल्म का नाम था आखिर क्यों, और फिल्म युग के बैनर तले ये फिल्म आई थी। जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये कार्यक्रम का अंतिम गीत है और ये संदेश भी है। लता मंगेशकर के साथ इसको आवाज़ दी थी, गीत के बोल इंदिवर ने लिखे थे और संगीत निर्देशन राजेश रोशन का था।

आप देख रहे हैं कि इस तरीके से इन्होंने सभी गीतकारों और संगीतकारों के साथ तालमेल बनाकर रखा। ये किसी कलाकार की सबसे बड़ी खासियत होती है। तो इस संदेश के साथ अब हम आपसे इस कार्यक्रम का अंतिम गीत सुना करके विदा लेंगे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। दुश्मन

इस कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने उनके नाम हैं बालिका वधु, लव स्टोरी, तृतीय, हम और आखिर क्यों। श्रोताओं, हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें अवश्य बताएं। हमारे आकाशवाणी का व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। एक बार फिर से 8004926250। अब इस कार्यक्रम को ख़त्म करने की अपने रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान को दीजिए इजाज़त। फिल्मी गीतों का सफ़र आगे भी जारी रहेगा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, पहला गीत कर्ज फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में, रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

देश की सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। कार्यक्रम का अगला गीत गाइड फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मिलीजुली आवाजों में, रचना शैलेंद्र की है और संगीत निर्देशन है SD बर्मन का।

दिल दिया दर्द लिया, यह है उस फिल्म का नाम जिसका गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल शकील बदायूनी ने लिखे हैं और संगीत निर्देशन है नौशाद का।

इस समय देश के सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। कार्यक्रम का अगला गीत आशिकी फिल्म से कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की मिली जुली आवाजों में, रचना समीर की है और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: I love you.
2: Yeah!

0: देश के सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज से आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। मध्याह्न के 12 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि UPI प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले UPI की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों

0: वासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुई यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने संसद में बार बार हंगामा करने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान विपक्ष को सवाल पूछने, विरोध करने और मतदान करने का अधिकार देता है, लेकिन संसद की कार्यवाही बाधित करने का नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापान की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के वित्त मंत्री नतालियो डी वीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। बिल ऑफ एंट्री वह घोषणा पत्र है जो आयातक विदेश से माल मंगाते समय सीमा शुल्क विभाग को देता है। इसमें माल की मात्रा, कीमत और उस पर लगने वाले कर की जानकारी होती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अगस्त की शुरुआत में जारी नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों के तहत टैरिफ रेट कोटा योजना के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 77,238 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi hailed the decade-long success of service of unified payment interface. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling the countrymen to share their UPI experience, he stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. The United Payments Interface UPI

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को दी जा सकती है। एक और सूचना सुनिए, थाना अंतु जनपद प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार ब्रिजेश पांडे पुत्र नित्यानंद पांडे हमें सूचित करते हैं कि साक्षी, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, ये 1 मई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में विवरण इस प्रकार है। रंग सांवला, ऊंचाई 5 फुट के लगभग। इन्होंने सलवार कुर्ता और दुपट्टा पहना हुआ है। इनके पांव में चप्पल है। इनके बारे में कोई भी सूचना थाना अंतु जनपद प्रतापगढ़ को दी जा सकती है। कोई भी व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। श्रोताओ, आपको इस केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दें। खेल दर्पण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात 10:30 पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से राग भोपाली में बांसुरी वादन हम आपको सुनवाएंगे। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां सुनिएगा 9:30 पर। सबरस का प्रसारण समय है रात 8:30। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर आज आप सुनेंगे पूजा देवी से काव्य पाठ। मीरा तिवारी के भजन और गीत सुनिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी शाम 6:50 पर। पंचायत घर कार्यक्रम में मुशर्रफ अली और साथियों के विकास गीत के अलावा पर्यावरण संरक्षण एवं जन सहभागिता पर राहुल त्रिपाठी की वार्ता हम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा सियाराम मिश्र से रामायण पाठ भी हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। आज के प्रेरणा पुंज प्रीतिलता वाइडेदर। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम से। आज के कलाकार हैं तेरस लाल और साथी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2:30 पर। महिलाएं अपना कार्यक्रम पनघट सुन सकती हैं 1:15 पर। इस कार्यक्रम में आज आप अनुराधा श्रीवास्तव के लोकगीत सुनेंगे। रक्षाबंधन का सामाजिक महत्व ममता सिंह की ये वार्ता सुनिएगा इसी कार्यक्रम में। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम हैलो फरमाइश 12:30 पर। प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। अब से थोड़ी देर बाद शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से राग वृंदावनी सारंग में बांसुरी वादन हम आपको सुनवाएंगे। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से राग वृंदावनी सारंग में बांसुरी वादन।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से राग वृंदावनी सारंग में बांसुरी वादन सुन रहे थे। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दोपहर के 12:30 हुए और ये समय है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम, प्रस्तुति मधु कुमार की है।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं चिरमिरी के आसरा कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंद्रभान जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है त्रिशूल और गीत के बोल है जाने मन तुम कमाल करती हो। गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो,
1: हम गुलाब चंद मिश्रा ग्राम पटोकर पोस्ट रामजालगंज जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। दीदी
0: जी नमस्कार। गुलाब जी बताइए कौन सा गाना सुनना
1: नमस्कार।
0: चाहते हैं?
1: हम फिल्म नसीब का सुनना चाहते हैं, इम्तिहान लेती।
0: जिंदगी इम्तिहान लेती है, ये नसीब फिल्म का जो गीत है ये शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया था।
1: जी।
0: तो चलिए गुलाब जी, आपकी इस पसंद को पूरा करने से पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आपको अपने मित्रों के नाम तो नहीं लेने हैं?
1: लेने हैं जी।
0: जी बोलिए।
1: अजीत कुमार मिश्रा, सुशील कुमार मिश्रा, कुमार मिश्रा, टिंकू, छोटू, छेदी प्रधान और बलिस्टर अरुणा मिश्रा।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का नसीब फिल्म का ये गाना।

0: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश। ये कार्यक्रम आप मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर सुन सकते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: हेलो, मैं काजल सरोज बोल रही हूँ।
0: जी जी काजल जी, नमस्कार। बताइए कौन सा गाना सुनेंगी? तलाश का कौन सा गाना है? जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम तो जीत। अच्छा काजल जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का तलाश फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैडम, मैं संगम नगरी प्रयागराज हरोलिया झूसी से महेंद्र नाथ कुशवाहा बोल रहा
0: जी।
1: हूँ।
0: महेंद्र जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है जानी दुश्मन और गाने का बोल नाम है तेरे हाथों में पहना के चूड़िया मौज बंजारा ले गया।
0: ये जानी दुश्मन फिल्म के सारे गाने हिट थे।
1: हाँ हाँ सर
0: तो
1: एकदम
0: ठीक है,
1: मैडम
0: महेंद्र जी
1: जो
0: ने फरमाइश की है तो महेंद्र
1: है।
0: जी
1: हाँ जी,
0: सुनवाएं।
1: थोड़ा सा नाम ले
0: हाँ
1: लें
0: हाँ
1: मैडम
0: ले
1: जो है।
0: लीजिए नाम।
1: शुभम कुशवाहा, शिवम कुशवाहा, सत्यम कुशवाहा, दीपा कुशवाहा, सुनीता कुशवाहा।
0: तो लीजिए सुनिए जानी दुश्मन फिल्म का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: ठंडिया तहसील हंडिया थाना हंडिया गांव मुगराव जिला प्रयागराज से मैं आपका जाना पहचाना नियमित श्रोता प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं। मधु मैम को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैम फिल्म का नाम है ऐ दिल है मुश्किल
0: जी,
1: और गाने के बोल किस प्रकार हैं? अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का दुआ पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। और कुछ श्रोता है मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, गुस्सी कुंडा प्रतापगढ़ से है राजेंद्र कुमार, और दादनपुर प्रयागराज से विकास जी जो कि ट्रक ड्राइवर है, नीतीश आर्या है, और गांव भोपिया जिला प्रतापगढ़ से रोशनी जी है।
0: तो आपको सुनवाना
1: है
0: जी, चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

अभी श्रोता सुन रहे थे देश के सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज से अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की थी। अब ये कार्यक्रम खत्म होता है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। जिंदगी का फलसफा बहुत सीधा सा है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप दूसरों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं तो आप गलत फहमी के शिकार हैं। आपने अगर कांटे बिखेरे हैं तो वो कांटे देर सवेर आपके पांव में चुभेंगे। फूलों की खुशबू बिखेरिए, वातावरण भी सुगंधित होगा, आपका मन भी खुश होगा और खुदा भी खुश होगा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, उसके बाद इलाकाई खबरें नशर की जाएंगी लखनऊ केंद्र से। बने रहे हमारे साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि UPI प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने देशवासियों से UPI के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने UPI के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
2: UPI भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में

0: यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न जैसे संवेदनशील आंकड़ों तक निजी कंपनियों की पहुंच चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का दुरुपयोग न हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हांग चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 110 अंक गिरकर 77,259 पर और निफ्टी 68 अंक गिरकर 24,151 पर आ गया। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण रुका हुआ है। श्रीलंका ने भोजन अवकाश तक पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। लखनऊ में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने 3,446 तकनीकी मुआवनीन और 126 मंडी सेक्रेटरियों को तकर्री के खतूत की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि आज के दौर में तकर्री के अमल को शफाफ तरीके से मुकम्मल करना अपने आप में एक चैलेंज है। उन्होंने कहा कि मिशन फर्स्ट के तहत हमें अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना है और किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। चीनी के बहरान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि फसल की कुल खपत 4,00,000 टन है।
1: तकनीकी सहायक के रूप में आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन को कैसे महत्व दे सकते हैं, स्प्रिंकलर प्रणाली को कैसे हम प्रभावी आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, कैसे हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करवा सकते हैं, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए

0: को वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ा जा सकता है। ये सभी कार्य अगर आप समयबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे, इसका लाभ हो, आपके प्रति अन्नदाता किसान के मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा हो। आप में से ज्यादातर लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी, हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को खेलो इंडिया संवाद प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर रियासत के तकरीबन 150 इदारों और मुल्क भर में 150 मकामात पर नौजवानों से अमली तौर पर खिताब करेंगे। मेरा युवा भारत के रियासती डायरेक्टर गोपेश पांडे ने कहा कि नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत कौमी खेल दिन के मौके पर नौजवानों को खेलो, फिटनेस, नज्म जब्त और कौम की तामीर से जुड़ने के लिए इस प्रोग्राम का अहतमाम कर रही है। जनाब पांडे ने बताया कि यह तकरीब दारुलहुकूमत लखनऊ में 7 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद की जाएगी। मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश 29 तारीख को है और इस साल वजीर आजम इसे 27 तारीख को मनाएंगे और अमली तौर पर बातचीत करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रायबरेली में 897 करोड़ रुपए से ज्यादा के 346 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। उन्होंने बेघर खानदानों को रिहायशी लीज अलॉटमेंट लेटर भी दिए। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि रायबरेली की जदीद कोच फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन की तामीर की वजह से रायबरेली का नाम अब पूरे मुल्क में फख्र से लिया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ और रियासत के दीगर अजला के बूथ लेवल अफसरान से बातचीत की। गुज़िश्ता रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वफ़ 2 रोज़ा दौरे पर कल लखनऊ पहुंचा। दौरे के पहले रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की और मीडिया से बातचीत की। इलेक्शन कमिश्नर ने कल लखनऊ में वोटर लिटरेसी क्लब और ECI नेट ऐप पर एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस में शाहजहांपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखनऊ और अमेठी समेत 20 अजला के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अफसरान, डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर्स, मीडिया नोडल अफसरान और तकरीबन 1500 तलबा असातिज़ा और अदारों के सरबराहान ने शिरकत की। वज़ारत ख़ारिजा और ब्रिक्स शर्पा में इक्तिसादी उमूर की सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने कहा कि हिंदुस्तान के ब्रिक्स चेयरमैनशिप इंसानियत पहले के उसूल पर मबनी अवाम पर मबनी नुक्ते नज़र से चलती है। कल लखनऊ में 18वीं ब्रिक्स अकादमिक फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब दलेला ने कहा कि हिंदुस्तान ने अपनी ब्रिक्स चेयरमैनशिप के दौरान मुआफ़िकत, इख्तिरा, ताउन और पायदार तरक्की पर तवज्जो मरकूज की है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स एक विचार से आगे बढ़कर उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के प्रमुख मंचों में शामिल हो गया है। जलवायु परिवर्तन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सतत विकास को लोगों और समुदायों की जरूरतों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक और सामुदायिक ज्ञान जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच का आयोजन लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक किया जा रहा है। इस दौरान ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: रियासत की राजधानी लखनऊ समेत पूरे मुल्क में कल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मजहबी अकीदत के साथ मनाया जाएगा। महाफिल का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। लखनऊ में वाक़ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने ईद मिलाद उन्नबी के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मरकज के सरबराह खालिद रशीद फिरंगी मैली ने तमाम लोगों से एडवाइजरी पर अमल करने की दरख्वास्त की है। कल लखनऊ समेत पूरी रियासत में जुलूस निकाले जाएंगे। इसके लिए दारुलहुकूमत में अमीनाबाद के झंडा वाले पार्क से ऐशबाग ईदगाह तक ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया जो सुबह 7 बजे से प्रोग्राम के अख्ताम तक नाफिज रहेगा। रियासत में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बदायूं और बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि घाघरा नदी अयोध्या और बलिया की तिरती पार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों में रियासत के मगरबी और मशरकी अजला में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र आपकी सेवा में है। ग्रामीण बहनें सुने अपना कार्यक्रम पनघट।

0: सरस्वती बहनी, हम कहा तुमसे राम राम।
1: चंपा बहनी, अपन घट सुने बैठी सब बहनी हरन के भी सरस्वती और चंपा के राम राम, राम।
0: और बताओ सरस्वती बहनी, घरे दुआरे के अब मौसम का हाल चाल?
1: देखा तो मौसम तो काली काली घटा, सावन के दिन कितना अच्छा लगा।
0: सावन चल था, बारिश हो था, बारिश का फुहार जब ऊपर पड़ा था तो कितना निक लागत है।
1: बिल्कुल सही कहा था। तो बस यह बा इतनी गर्मी पड़त रहे उकरे बाद ही सावन के फुहार, तो हम एक आनंद ले थे बहुत। तू बतावा का हाल चाल है?
0: देखा हम तो घर से निकलत रहे, मौसम तो एकदम बनल रहा कि अब बारिश हो जाये। हम कहे अपने पनघट्टे पे जाए और सरस्वती बहनी से मिले।

0: सरस्वती बहनी, हम कहा तुमसे राम राम।
1: चंपा बहनी, अपन घर सुने बैठी सब बहनी हरन के भी सरस्वती और चंपा के राम
0: राम
1: राम।
0: राम। और बताओ सरस्वती बहनी, घरे दुआरे के अब मौसम का हाल चाल?
1: देखा तो मौसम तो काली काली घटा, सावन के दिन कितना
0: सावन
1: अच्छा
0: सावन
1: लगा
0: चल
1: था।
0: था, बारिश हो था, बारिश का फुहार जो ऊपर पड़ा है तो कितना नीक लागत है।
1: बिल्कुल सही कहा था। तो बस यही बा, इतनी गर्मी पड़त रहे उकरे बाद ही सावन के फुहार, तो हम एकर आनंद ले थे ही बहुत। अ तू बतावा का हाल चाल है।
0: देख हम तो घर से निकलत रहे, मौसम तो एकदम बनल रहा कि अब बारिश हो जाए। हम कहे अपने पनघट्टे पे जाए के और सरस्वती बहनी से मिले के और अपने बहनी से भी बातचीत करे के, तो हम कहा किए कि हम जल्दी निकल गए। और
1: अच्छा।
0: ऐसा है कि हम निकल के जब आए यहाँ पहुंचे पनघट्टे पे अपने, ओकरे 10 मिनट बाद ऐसी बारिश भई कि का होता। हम तो ये भगवान से मनाते हम पहले आए गए, घर से निकल गए पहुंच गए समय से, नहीं तो हम तो भीगी जाए।
1: देखा भगवान के तो हर समय पुकारे के पड़े था ना चंपा बहिनी, काहे कि अगर बहुत घाम लगा था तब हम सबे कहती है भगवान थोड़ी सी छाया कह देता,
0: बिल्कुल
1: अब बारिश होता जब बढ़ जाते तब सबे कहती है
0: थोड़ा घाम
1: भगवान
0: कह
1: थोड़ा
0: दे,
1: सा कम कह
0: थोड़ा
1: देता,
0: सा
1: है
0: घाम
1: ना।
0: भी हो जाए।
1: ता
0: और देखा
1: देखा
0: सरस्वती बहनी,
1: हाँ, आजकल त्योहार की खूब तैयारी होता
0: बिल्कुल
1: चंपा बहनी, है ना।
0: बिल्कुल
1: धीरे धीरे रक्षाबंधन का पर्व नजदीकात बा, है ना।
0: एकदम करीब आई
1: हाँ,
0: बात।
1: तो का तैयारी करे हो।
0: हम तो तैयारी कर लिए, नहीं करे जाएगा तो तैयारी नहीं करा।
1: अच्छा, तो हम सोचे थी काहे ना बहनी हरन से भी यही विषय पे खूब बढ़िया से बात कर लीन जाए।
0: बिल्कुल देखा सस्ती बहनी, जोन रिश्ता होते है, कौन रिश्ता तो बहुत होते है, मुना जोन भाई बहन के रिश्ता होते है वो अलगे होते है। काहे कि भाई बहन के जोन रिश्ता होते है वो कुछ ऐसा होता है कि उनसे अगर हम रूठ जाई तो एक पल में देखो, एक पल में रूठा आए एक दूसरे से लड़ झगड़ के, और एक पल में दूसरे उधर देखो कि वो यार खुशी से कुछ खाते हैं, कुछ उनसे छीनत हैं, झपटत हैं, खाते हैं, पता नहीं चलत कि वो कब रूठा रहे। ऐसा वो होता है संबंध होते भाई बहन में।
1: और देखा जानत हो ना चंपा कि अपन देश भारत जोन है त्योहारन के देश बा,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो एक से एक त्योहार हम सबे मनावत ही, वही में से एक जोन है रक्षाबंधन, भाई बहन के
0: हम सबके
1: प्रेम,
0: दिल के कितना करीब होता है।
1: हाँ प्रेम स्नेह के एक पर्व बाटे, है ना।
0: बिल्कुल और
1: तो
0: ई एक रेशम का धागा नहीं होता जो रक्षाबंधन होता है, मुनाई ऐसा अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम होते ना जोन पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ देवे, वादा निभावे के कसम खाते कह सके हम सब। क्या कि जब बहन भाई के हाथ पे राखी बांधत है तो दोनों वचन भी देता ना एक दूसरे के कि हम तार रक्षा करम।
1: बिल्कुल। और देखा ये खाली धागा मात्र नहीं होत, ये पूरे जीवन के जैसे कहा जाता है ना रक्षा बंधन, तो बंधन कौन चीज के
0: बांध
1: भाई,
0: देते बहन बांध।
1: विश्वास के बंधन, है ना। और आजीवन बधे ये रिश्ता के एकदम बांध के रख देते है ना।
0: बिल्कुल
1: तो भाई बहन कितनों बड़ा हो जाएं, है ना, कितनों समझदार हो जाएं, लेकिन उन्हन के नोक झोंक जोन है
0: वो
1: वह,
0: चला
1: हाँ, उनका
0: करता
1: जो तकरार है वह बचपन वाली हमेशा रह जाते है,
0: बिल्कुल
1: भले ही वो उम्र में कितनों बड़ा हो जाए। मानत हो कि नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा तू सरस्वती बहनी। और देखा कहा जाता है ना कि बहन के जोन प्यार होता है वो कौनो दुआ से भी कम नहीं होता है, वो चाहे दूर भी हो, जैसे हम सब भी अपने भाई लोग से दूर हो गए है, तो दूर भी हो तो का कोनो गम भी नहीं होता है। और देखा आज के जोन अपनी कार्यक्रम है प्यारा सा खट्टा मीठा सा, तो चला एक ठो विषय है रक्षाबंधन, तो पे हम सब बात कर लिए। तो बहन चला देखा सरस्वती बहनी, जब बहन बहन अपने भाई की कलाई पे रक्षाबंधन बांधत है ना, तू खाली एक धागा ना हो जैसे कहूँ ना एक धागा ना होता, बल्कि अपन दुआ अपन प्यार और जो एक उम्मीद होता है वो सब के वो अपने भाई की कलाई पे बांध देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा
0: और
1: तू।
0: देखा बहनी वो राखी के साथ एक वादा भी करत है कि जिंदगी चाहे कितनी भी बदल जाए, समय कितना भी बदल जाए, मुना एक बहन के बरे ओकर भाई के प्यार कभी नहीं बदलत।
1: बिल्कुल। तो देखा ये रक्षाबंधन हर वर्ष हम लोग सावन के पूर्णिमा में मनावत ही,
0: बिल्कुल
1: तो सावन के पूर्णिमा जब आवत है तो रक्षाबंधन के त्योहार मनाए के हम सभी सावन से विदाई ले थी, है ना, और
0: बिल्कुल
1: अगले महीना की ओर चलत ही। लेकिन इतना सुंदर पर्व ये मनावत ही हम सभी, है ना, कि जीवन भर हम सभी के याद रहा था कि हम अपने बहन के सुरक्षा बदे तत्पर है
0: बिल्कुल
1: ना। अब बहन भी एक अपने आखन में भावना लिए रहा थी, एक ने मन

0: मैं अपने उम्मीद लिए रहा थी कि हमार भाई हमरे साथे है। देखा ये जरूरी ना बातें, इतिहास ये बात का गवाह है ना चंपा बहनी, कि खाली रक्त संबंध से भाई बहन ना ही होते।
1: बिल्कुल,
0: हम सब इतिहास में देख चुका है कि चाहे रक्त संबंध हो चाहे ना हो, जब मन में भावना इसे आ जाते कि हमका अपने बहनी की सुरक्षा देवे के है, वह भावना सबसे बड़ी होत है।
1: बिल्कुल, और देखा जो कहूँ ना कि अपने उत्थम देख चुकी हम लोग, संस्कृति में देख चुकी है, तो देखा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के लैला,
0: बिल्कुल
1: रक्षाबंधन के भाव से अगर जोड़ा जाता है तो देखा मान्यता भी है कि एक अवसर पर श्री कृष्ण जो है उनके उंगली में चोट लग गई, तो द्रौपदी जी का कि अपन वस्त्र के एक कोना फाड़ के उनके उंगली पे बांध दी। तो श्री कृष्ण जी ओका रक्षाबंधन समझ के तो उनके देखा उनके भी मदद कीन वे, उनके लाज बचाए, उनके मदद कीन, तो ये पर्व ऐसा चला आवत है।
0: तो देखा यह हमू कहे चाहती कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखा सावन में बहुत सारी हमार बहनियर, पहले तो परंपरा रही ना चंपा बहनी की सावन का महीना में सब बहनियरन जो है अपने ससुरारे से मायके की तरफ आ जात रही और बढ़िया कजरी उजरी अपन झूला लगावत रही, कजरी उजरी सुनत रही और फिर कुछ समय बितावे के बाद में फिर अपने घरे लौट जात रही।
1: बिल्कुल,
0: राखी उखी मनाए के है ना। तो देखा आज कहीं ना कहीं ये परंपरा तो विलुप्त हो गई है, लेकिन बहनी अरे थोड़ा सा समय निकाल के, चाहे भैया अरे थोड़ा सा समय निकाल के राखी बंधवावे जरूर पहुंच जाते हैं, जेके जहां जाए बदे आसानी पड़त है। भैया अरे बहनी अरे के घरे पहुंच जाते हैं, अब बहनी लोगन
1: भैया के घरे पहुंच जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब अपने लइकन के ये पर्व के महत्व सिखावत जाती कि देखा ये रिश्ता कितना अनमोल बाटे।
1: बिल्कुल सही कहा थू। और सरस्वती बहनी देखा इतनी अच्छी अच्छी हम सब बात कही की है, तो चला तू हम नीक के सोहर सुनवाई दी अनुराधा श्रीवास्तव से, जिसे चला तू हूँ सुना और बहनी हरे भी सुने।

0: चंपा
1: सरस्वती बहनी
0: कैसन लगा सोहर तो के?
1: बहुत निक लगा।
0: देखा तू तो जानत हो ना कि हम सभी रक्षाबंधन के बारे में बात करत रही,
1: बिल्कुल
0: है ना। और जानत हो
1: रक्षाबंधन इतना नजदीक है,
0: हाँ।
1: एकदम जानला कि पास आ चुका बा, हाँ। तो हम सब बात कर जरूरी है,
0: बिल्कुल। और जानत हो ना कि एकर कितना सामाजिक महत्व है,
1: बिल्कुल।
0: तो का याद है गुंजा चंपा कि जौन हा माता लक्ष्मी जौन है वो अपने पति श्री विष्णु के,
1: हाँ।
0: पाताल लोक से जब बलि पाताल लोक में विष्णु जी के लेके चला गए, तो उनका वापिस लेवे बदे का तरकीब अपनाए रही, वो राजा बलि के रक्षा बंधन के पर्व पे राखी बांधे रही।
1: अच्छा।
0: हाँ, ताकि उनकर पति

0: के पजरे वैकुंठ लोक में वापिस आई जाए।
1: अच्छा,
0: है ना। तो देखा इकरे महत्व के बारे में चला हम सब भी बात कर ली जाए, रक्षाबंधन का सामाजिक महत्व। अब बतावत ही बहनी ममता सिंह,
1: चला सुन लिया जाए।
2: हमारे जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है। प्रेम है तो यह संसार है, बिना इसके हमारा जीवन निरस है। रिश्तों के धागों से बंधे हम जीवन को जीते हैं। रिश्ते जीवन जीने का जरिया है, जिसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं। उन्हीं रिश्तों में एक भाई बहन का भी रिश्ता होता है। भारत को पर्वों और उत्सवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ मनाए जाने वाला प्रत्येक त्यौहार अपने साथ कोई न कोई सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक संदेश लेकर आता है। ऐसा ही एक पावन और भावनात्मक पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। दीर्घायु उम्र के साथ साथ उनके जीवन के संकट और परेशानियां खत्म हों, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। और भाई भी अपनी बहन की रक्षा और सम्मान करे, विपरीत परिस्थितियों में साथ निभाए, ऐसा भाई भी अपनी बहन के लिए संकल्प लेते हैं। रक्षाबंधन का इतिहास बहुत पुराना है और गौरवशाली भी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा था। इसके बदले में कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वह हर संकट में उनकी सहायता करेंगे। चीरहरण के समय कृष्ण ने अपना वादा निभाया था। इतिहास में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। मेवाड़ की रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के आक्रमण से बचने के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने इसे भाई बहन का रिश्ता जानकर रानी की रक्षा की। स्वतंत्रता संग्राम के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लोगों को एक दूसरे को राखी बंधवाने का आह्वान किया था। एक माँ की कोख से बेटा और बेटी दोनों जन्म लेते हैं। एक ही आंगन की ये फूल होते हैं। इनकी परवरिश बिना भेदभाव के साथ साथ होती है। माँ दोनों को समान रूप से लाड़ प्यार देती है। बचपन में भाई बहन लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, माँ से एक दूसरे को दोषारोपण करने में पीछे नहीं हटते, ताकि माँ के हाथों से अच्छी खासी पिटाई हो सके। अगर वहीं पर कहीं बाहर वाला कुछ कह दे या फिर मार दे, भाई या बहन अपना आपा खो देते हैं। बचपन के वो मीठे पल, कुछ खट्टे पल बड़े ही सुहानी होती है। बचपन की यादें, एक थाली में खाना, साथ साथ हर पल रहना, सब कुछ याद बन के रह जाता है। रीति रिवाजों के अनुसार एक दिन अपना घर, अपना परिवार, अपनों को छोड़कर बहन को ससुराल जाना होता है। उस घर की यादें, अपनों के साथ बिताए हुए पल समेटकर चली जाती है। उस समय अपनों को छोड़ के जाने का बहुत गम सताता है। पर रिवाजों के आगे विवश है ये हमारा समाज। ससुराल अच्छा मिल गया, वहाँ के लोग अच्छे मिल गए, जीवन साथी अच्छा मिल गया, तो बहन का जीवन बड़े ही सुखमय से बीतता है। वहीं पर अगर कहीं अच्छा परिवार, जीवन साथी नहीं मिला, तो पूरा जीवन दुखों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहा भी गया है कि बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ शिक्षा के साथ साथ। तो ऐसी स्थिति में बहन को मायके का सहारा चाहिए होता है। ऐसी स्थिति में भाई अपने बहन के विपरीत परिस्थितियों का सारथी बनता है और दायित्वों को निभाता है। या फिर भाई गरीब निर्धन है, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, असहाय है। अगर बहन ससुराल से संपन्न है तो भाई की मदद करनी चाहिए। धन से भी, मन तन दोनों से भाई के दायित्वों को निभाना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है, बिन बोले एक दूसरे भाव को समझ जाते हैं। यह ऐसा रिश्ता है, आँखें इनकी बोलती हैं। अगर वे अपनी तकलीफों की छिपाने की कोशिश करें भी तो नहीं छिपा सकते। उनकी आंखें बताती हैं कुछ तो है, फिर मुख को बोलना ही पड़ता है। फिर बहन ही है तो भाई की परेशानियों को दूर करने की पूर्णतः कोशिश की जाती है। सच्चा प्रेम माध्यम का मोहताज नहीं होता है, अंधेरे में भी उसके होने का आभास हो जाता है। हमारे समाज में सकारात्मक सोच के साथ साथ कुछ नकारात्मक लोग भी रहते हैं। बुद्धिजीवी इंसान हर रिश्ते को बड़े ही प्यार से सींच कर रखता है, ताकि यह सूखे ना, हमेशा हरा भरा रहे। किंतु कुछ रिश्तों को समझ नहीं पाते, उन्हें भी स्वार्थ की तुला से तौलते हैं। बहन अपने मायके आती है तो उसे यह

0: नहीं देखना चाहिए कि उपहार में ज्यादा मिला या कम। हर भाई रक्षा सूत्र बंधवाने के बदले में कुछ उपहार भी देते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। भाई को भी चाहिए कि बहन के लिए बोले गए दो मीठे बोल उसे जन्नत में रहने का आभास कराता है। अगर उनकी बहन थोड़ी तीखी है तो उसे प्रेम की मीठी चाशनी में डुबो दो। कितनी भी तीखी क्यों न हो, मीठी हो ही जाएगी। जिस घर की बहन बेटी खुश रहती है वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। बहन सब कुछ त्याग देती है, माँ बाप परिवार घर जमीन सब अपने भाई के लिए। भाभी नंद का रिश्ता भी भाई बहन के रिश्ते की तरह मीठा होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा घर संभालने का किरदार इन्हें ही निभाना होता है। आपसी समझ बूझ रिश्ते को डगमगाने नहीं देता। भाभी भाई की अर्धांगिनी होती हैं और नंद पति की बचपन की सखा होती हैं। भाई अपनी बहन से कभी भी कुछ नहीं छिपाता। सम्मान और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। व्यवहार ही कुशलता का पैमाना है। यह जीवन का सार भी है जो दोनों के समन्वय को रखते हुए परिवार भरे गागर को छलकने न दे। भाई बहन का रिश्ता त्याग और समर्पण को दर्शाता है। यह आंखों से उतरकर हृदय में बसता है। इसे किसी शब्दों की भाषा में नहीं पिरोया जा सकता। जिस किसी भी बहन को अगर भाई न हो या फिर भाई को बहन न हो, खून का रिश्ता मायने नहीं रखता। किसी भी बहन से रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं या फिर किसी भी भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम बंधन में नहीं होता, ना ही इसका कोई दायरा होता है। निस्वार्थ भाव से इस रिश्ते को जीवन भर निभाया जा सकता है। हमारे देश में बहन बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मी भाइयों को भी रक्षा सूत्र भेजती हैं और उनकी जीवन की लंबी उम्र की दीर्घायु कामना करती हैं। और हमारे लिए और हमारे देश के लिए जो जीते हैं भाई, यह पर्व हमें सिखाता है अनेक होते हुए भी हम एक हैं। रक्त बंधन से नहीं बल्कि प्रेम विश्वास अपनत्व से भी बनते हैं। अनेक जगहों पर लोग पुलिसकर्मियों शिक्षकों समाज सेविकों को भी राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। इससे समाज में भाईचारे सहयोग और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होती है। यह त्यौहार महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के प्रति समाज की जिम्मेदारी का भी संदेश देता है। डिजिटल भरे युग में रक्षाबंधन का स्वरूप व्यापक हो गया है। हम वृक्षों को भी रक्षा सूत्र बांधने के लिए साथ साथ उन्हें प्रणाम भी करते हैं। वृक्ष है तो हमारा जीवन है। पृथ्वी की सामंजस्यता वृक्षों पर ही निर्भर है। ईश्वर को भी रक्षा सूत्र भेंट करते हैं ताकि वे हमारी रक्षा करें। यह देश हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं। यहाँ जाति धर्म मजहब के नाम पर कहीं विरोधाभास न हो। हम प्रेम के ऐसे धागे में बन जाए जहाँ प्रेम ही प्रेम हो। ऐसा एक रक्षा सूत्र में बंधे जहाँ पर फूल ही फूल खिले, कांटे न बिछे। ऐसे समाज और ऐसे देश का निर्माण करें जहाँ त्याग हो, समर्पण हो, प्रेम हो, पूजा हो, श्रद्धा हो। रक्षाबंधन का त्यौहार हमें याद दिलाता है कि भाई बहन के रिश्ते में प्रेम सौहार्द सौभाग्य अर्चना समृद्धि का समन्वय हो। भोर की किरण से उजाले को लेते हुए प्रकाश से भर जाएं। एक ऐसे ही जहां का हमें निर्माण करना है जो पूरे विश्व को एक रक्षा सूत्र में बांध दे ताकि हम अनेक होते हुए भी एक रहें। आज के युवा इसे संभव कर सकते हैं। इन्हीं के कंधों पर देश का भार है। इस देश की सुरक्षा की भावना को रखते हुए इन्हें हर कदम बढ़ाना होगा। आइए इस धागे को हम इतना मजबूत करें कि टूटे ना। यह समर्पण विश्वास का धागा जीवन के धागे को बांध के रखना है। यह रेशम की डोर जो बांधा, बांध लिया संसार सारा।
1: सरस्वती बहनी,
2: हाँ चंपा,
1: ममता सिंह जी कितनी अच्छी वार्ता रही। देखो ये रक्षाबंधन का सामाजिक महत्व कितना अच्छे से ममता सिंह जी मैंने फरियाए फरियाए बताई।
2: बिल्कुल, और बहुत सारी गुड़ गुड़ बातें भी बाहर निकाल के लाई।
1: बिल्कुल ना,
2: ता चला अब हम सब एक ठे बनारसी कजरी सुन लीन जाए
1: अनुराधा श्रीवास्तव जी से। चला तू सुना, बहनी अरे भी सुने, चला सुन लिया जाए।

0: सरस्वती बहनी,
1: हाँ चंपा,
0: बहुत अच्छी कजरी गीत सुनवा हमें, ऐसा लगा कि हमारे ऊपर बारिश का फुहार पड़त बाटे।
1: हाँ देखा, बढ़िया बढ़िया गीत तो सुनाए दिए ही तो का। अब तो तू जानत हो कि कितना नजदीक आ गया है रक्षाबंधन का पर्व, तो बढ़िया बढ़िया पकवान भी घर में बनी
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: मिठाई उठाई तो बने
1: तो
0: एक पड़ी।
1: हाँ, हम भी सोचे थे कि अब हमका और तोहका भी रसोई में चले के चली पड़ी और कुछ न कुछ पकवान बनावे के चाहिए। काहे कि देखा आजकल तो बाजार में पकवान मिठाई तो बहुत उपलब्ध हैं, लेकिन मिलावट बहुत ज़्यादा है। तो अपने घरे अगर हम सब बनाए तो शुद्धता का गारंटी रहे, है
0: बिल्कुल,
1: ना।
0: तो
1: तो
0: चला आज हम तुम्हें बताई दी ब्रेड के गुलाब जामुन।
1: तो चला देर न करा, जल्दी से बतावा।
0: बिल्कुल, देखा सामग्री है, सफ़ेद वाला ब्रेड जोन होते हैं वो ले लें 8 पीस, और दूध ले लें लगभग आधा कप,
1: अच्छा।
0: और मैदा ले लें 1 बड़ा चम्मच, और बेकिंग सोडा 1 चुटकी, और फिर का तले के लिए घी या तेल ले लें। अब फिर चाशनी के लिए चीनी 1.5 कप, और पानी ले लें 1.5 कप, और इलायची ले लें
1: अच्छा
0: 3-4 ठू ले लें, उसका रू ले लें गुलाब जल 1 चम्मच।
1: अच्छा
0: अब बनावे के लिए सबसे पहले देखो ब्रेड का जो किनारा होता ना उसका काट के निकाल लें,
1: अच्छा
0: और अलग कर दें, और जो बीच वाला भाग हुए उसका छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लें। अब यहाँ में थोड़ा थोड़ा दूध डाल के नरम आटा जैसा गूंद लें, और थोड़ा सा में मैदा मिलाई लें, और बेकिंग सोडा। अब हाथ में अपने थोड़ा सा घी लगा लें, या फिर तेल लगाई के जो आटा बनाए तैयार किए हैं उकर छोटी छोटी चिकनी लोई बनावें, इससे वो फटे ना जब तली जाए।
1: अच्छा
0: लोई बनाई लें, और बाद से ये ध्यान रखें कि ओका कौनो प्रकार के जो कहें फटे न दरार ना आवे,
1: हाँ हाँ हाँ
0: बिल्कुल भी ना, एकदम चिकना रहे। अब कढ़िया में घी या तेल डाल के गरम कर लें, और धीमा आँच रहा है, मतलब ना एकदम एकदम धीमो ना रहा है ना एकदम तेज रहा है,
1: हाँ का
0: मध्यम पे
1: होत
0: रहा
1: हो
0: है। हाँ
1: कि जब
0: मध्यम पे रहा है, नहीं तो काफ़ी जल जाए और अंदर कच्चा रह जाए।
1: कच्चा रह जाए।
0: अब जो गोली है ओका वो मेरे तेल में डाल, तेल गर्म हो जाए और सुनहरा होए तक ओका भून लें।
1: अच्छा
0: अब भून के निकाल लें, और देखा चाशनी बनावे के लिए चीनी और पानी के 5 से 7 मिनट तक उबाल लें। अब यहाँ इलायची और गुलाब गुलाब जल डाल के मिलाई लें,
1: अच्छा इलायची के कूटे के पड़ी
0: कूट
1: कि
0: के भी डाल
1: ऐसे।
0: सकल ऐसे भी डाल सकल जैसे
1: अच्छा
0: जेका पसंद होए। ओकरा मिला लें, और ध्यान रखें कि चाशनी बहुत गाढ़ा ना होए।
1: हाँ
0: ओकरे बाद से जो तला हुआ गुलाब जामुन है वो को हमें डाल के ओकरा 2 घंटा के लिए, 1-1.5 घंटा के लिए ढक के
1: रख
0: रख
1: दें।
0: दें, जिससे वो
1: हाँ
0: बढ़िया से फूल जाए। देखा
1: मीठा मीठा हो जाए।
0: गुलाब जामुन बताए दिए, अब तुम
1: हाँ
0: जाऊ और बना लो रक्षाबंधन के
1: बिल्कुल
0: लिए,
1: बिल्कुल, ये तो बहुत ही
0: तुम
1: जरूरी
0: बाजार से
1: है।
0: खरीद के ना ले
1: हाँ
0: के।
1: बिल्कुल। तो चला इतना अच्छा तू व्यंजन बताए हो, हम एका जरूर घरे बनाए के देखब। तो अब चला तो का एक ठे यही बात पे बढ़िया सा गीत सुनाए दे थी, फिल्म दिल ही तो है से लागा चुनरी में दाग।
0: चला सुन लिया जाए।

0: सोचती बहनी, देखो कितनी अच्छी गाना रही है फिल्मी गीत।
1: बिल्कुल। तो चला अब देखा, हम चाहत है कि अपने बहनी हिरन से एक गुजारिश कह ले,
0: उका
1: वो हम सुनवाई एक संदेश के माध्यम से
0: अच्छा
1: अपने गुजारिश के। तो चला एक ठे संदेश सुनवाई देती सब बहनी हिरन के, सुन ले।
0: चला सुन लिया जाए।
1: पनघट जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है बहनी हरन। हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
2: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।

0: हमार ईमेल एड्रेस है
1: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
0: हमार व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। तो सखियन देर कौने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
2: बेसब्री से इंतजार रही।
3: बिल्कुल सरस्वती बहनी, हम सबके बहनी हरण के
4: संदेश
3: के इंतजार रही
4: और बेसब्री से इंतजार रहा था। तो जरूर अपन संदेश भेजें और हम सबके प्रेरित करें।
3: बिल्कुल सरस्वती बहनी,
4: हाँ,
3: हम दूसरे एक बात पूछे चाहते
4: हैं।
3: बारिश तो होता है और बारिश में कितना अच्छा लागत है। मौसम भी ठंडा है और बाहर निकलो भी मतलब बारिश होता है, जब हल्का हल्का फुहार ऊपर पड़ा तो बहुत अच्छा लागत। मुना एक चीज है कि बाल बहुत झड़त है, तुम्हारे पास कोनो उपाय है एकर?
4: अच्छा, तू ऐसे परेशान बाटू?
3: बिल्कुल बहुत
4: परेशान हूँ जब हम है तो।
3: हाँ हाँ बताओ। तो
4: दिखा हम तो का भी बतावत ही, अपने सब बहनी हरन के भी बतावत है, जब भी बारिश के मौसम में बाल गिरे लगे तो तनाव बिल्कुल न ले, तनाव ले वैसे और बाल गिरे लगी। एक नुस्खा अपना वही, एक गिलास पानी ले लें और ओका उबालें, और जब पानी तुहार खौलत रहे ओमा 4-5 लौंग डाल दें, एक चम्मच मेथी दाना डाल दें, है ना, 4-5 गुड़हल के फूल डाल दें।
3: अच्छा
4: ठीक है, और पानी के उबले दें। जब पानी आधा हो जाए
3: आधा गिलास
4: चूल्हा के बंद कर दे और तुहार तैयार होएगा। यही के रुई के फाहा से लेके अपने बारे में लगावे, हफ्ता दो हफ्ता में तोर बाल एकदम झड़प बंद हो जाए।
3: अच्छा ये तो बहुत अच्छा बताओ तू।
4: तो चला तो अब यही के साथ विदा लेवे के समय आएगा बा। तो चला बहनी हरन से विदा लेन जाए। राम राम, राम, राम बहनी हरे।

0: इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई

0: मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
4: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
5: मैं FedEx और दिल्ली GMR Airport को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
4: We want to create global standard air cargo facilities across the country.
0: एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर

0: कच्ची चीनी को सफ़ेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीज़ा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीज़ा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8 अरब 80 करोड़ अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
1: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर इस समय आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र आपकी सेवा में है। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय है NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
3: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: लिखते हैं, कठिनाइयां रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
3: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
2: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं। उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
2: जी,
3: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
2: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
3: जी विमलेश जी बिल्कुल, दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई न कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
2: बिल्कुल,
3: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं
2: जी।
3: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
2: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
3: जी हाँ श्रोताओ, लोंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
2: जी
3: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
2: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
3: विमलेश जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
2: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
3: जी हाँ, तो श्रोताओ आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे भारत में होते हैं और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओ, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
2: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं। भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांक नागा जनजाति निवास करती है। कोयांक समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और जीवन शैली अत्यंत आकर्षक है।
3: तो श्रोताओ, यदि कभी आपने कोयांक पुरुषों की तस्वीरें देखी हो तो आपने उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू अवश्य देखे होंगे। ये टैटू केवल सजावट के लिए नहीं थे बल्कि ये

0: टैटू साहस, सम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक माने जाते थे।
1: जी।
0: आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपना रही है, फिर भी बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित ये टैटू इतिहास की जीवित धरोहर हैं।
1: कोयांक जनजाति के लोग लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी, रंग बिरंगे मनकों के आभूषण, पारंपरिक हथियारों और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में भी निपुण हैं। उनके हस्तशिल्प में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
0: श्रोताओ, यदि इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो पता चलेगा कि एक समय था जब कोयांक योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
1: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांक समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
0: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
1: जी।
0: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
1: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओ, यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है।
0: जी, तो श्रोताओ, लोंगवा गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती हैं,
1: जी,
0: लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है।
0: तो श्रोताओ, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमारी आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत स्थान की नई कहानी और जानकारी के साथ। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम
1: सरितपुर की कहानी।
2: अरे भागो भागो, वो देखो
3: हमारे पशु पक्षी को क्या हुआ, हमारे घर के सारे सामान बह
2: जाएगा। अरे हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल बर्बाद,
4: सारी फसल बह गई।
5: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में

0: खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी, और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरेदपुर। कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए, और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
1: अरे काट काट काट, मेरा भी क्या देख रहा, काट।
3: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए, और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
4: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
2: सही कह रहे हो, काट, काट, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
2: उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
5: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया, और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
6: अरे हमारे पशु पक्षी को क्या होगा, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
2: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
1: अरे हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे

0: फिसल बह गई।
1: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा।
0: हाँ,
1: हाँ,
0: चलो इन्हें जल्दी
1: से ऊपर ले जाना होगा।
0: चलो जल्दी ऊपर।
1: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो
0: जल्दी
1: जल्दी चलो
0: चलो चलो।
1: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
0: अरे ध्यान से संभल कर।
2: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
3: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
5: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: नमस्कार साथियों, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक विलक्षण स्त्री की, जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा हैं, जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो हैं पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी तेक्के परमबिल उषा।
0: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
1: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
0: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
1: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी।
0: उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ।

0: उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी।
1: आपने मुझे बुलाया मैम?
2: आओ उषा, मैंने एक खास बात के लिए तुम्हें याद किया है।
1: जी कहिए मैम।
2: अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है भाई?
1: मैम अच्छा चल रहा है।
2: गुड।
1: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
2: वेरी गुड। देखो अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
1: जी मैम।
2: तो तुम्हें एक काम करना है।
1: जी।
2: तुम्हें शोभना के साथ दौड़ना है।
1: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
2: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
1: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी।
2: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू मैम।
0: जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
3: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना।
0: महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में कुल 40 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें 12 वर्ष की पीटी उषा भी थी। प्रशिक्षण के बाद पीटी उषा को जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।
3: वर्ष था 1977 का जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
0: श्री ओ एम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
4: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
1: थैंक यू सर।
4: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
1: लेकिन सर मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी।
4: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
1: आप? धन्यवाद सर। लेकिन
4: अब लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
1: सर।
4: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
1: थैंक यू सो मच सर।
3: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचा

0: धज भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश के पीटी उषा जो भाग ले रही हैं।
2: ऊंचा हो जाएगा।
1: हमारी पीटी उषा सबसे आगे निकल गई। अरे ये क्या हुआ?
3: पीटी उषा बहुत तेज गति से दौड़ी, शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
0: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था, लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गई। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
3: आप सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
0: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गांव में हुआ था। पयोली गांव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
3: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं।
0: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है।
3: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
0: वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
3: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
5: चेतना,
4: जगबंधु
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम में 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम में 292.4 मीटर यानी 1026

20 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। अपराह्न के 3 बज चुके हैं और इसी के साथ संपन्न होती है हमारी ये सभा। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी धरती के गीत कार्यक्रम से 5 बजे। आज के कलाकार हैं तेरस लाल और साथी। इस बीच हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम धरती के गीत। कलाकार होंगे तेरस लाल और साथी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। कलाकार हैं तेरस लाल और साथी। तो लीजिए सबसे पहले सुनिए इनके स्वर में देवी गीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं धरती के गीत कार्यक्रम। कलाकार हैं तेरसलाल और साथी। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए इनके स्वर में कहरवा।

धरती के गीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे तेरस लाल और साथियों के गाए लोकगीत। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: चेंज। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेज जरूर आता है जब हम अपने आसपास और अपने अंदर एक बदलाव को देखते हैं।
1: मुश्किल होता है खुद को समझाना और उस चेंज को एक्सेप्ट करना, लेकिन यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जब हम खुद को बेहतर बनाने की ठानते हैं।
0: कंफर्ट जोन आपको कंफर्ट जरूर देता है, लेकिन एक टाइम के बाद आपका कंफर्ट जोन ही आपके पोटेंशियल को कम करने लगता है।
1: सो ट्रू। जैसे हम फूड में इतनी सारी वैरायटीज ढूंढते हैं, साक्षी मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में भी ना हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही पूजा। साथ ही जब हमें चेंज दिखे अपनी लाइफ में तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अडेप्शन को लेकर हमेशा तैयार रहना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। वैसे अवेयरनेस से एक बात और याद आती है कि आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, यानी आज से ये शुरू हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों आज हम इसी खास इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: हमारी आंखें ईश्वर का दिया हुआ सबसे खूबसूरत उपहार है, जिनसे हम इस खूबसूरत दुनिया के रंग देखते हैं, अपनों को देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं। कभी-कभी सामने वाले के बिना ज्यादा कुछ कहे सिर्फ उसकी आंखों से देखकर वो अंदर से कैसा महसूस कर रहा है ये हम समझ जाते हैं।
1: हमें हर बार ये कहने की जरूरत नहीं होती, मैं हूं ना। बस हाथ आगे बढ़ाकर हम जता देते हैं, मैं हूं ना। लेकिन जरा सोचिए उन लोगों के जीवन के बारे में जो कॉर्निया ब्लाइंडनेस के चलते पूरी तरह से अंधेरे में जी रहे हैं।
0: लेकिन आपको बता दें, ऐसे लाखों लोगों के जीवन में रोशनी लाने के लिए हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे देश में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है।
1: इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के मन से नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है और उन्हें स्वेच्छा से नेत्रदान करने के लिए प्रेरित करना है।
0: दोस्तों, नेत्रदान क्यों जरूरी है और उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर आज हम आपसे बात करेंगे।
1: भारत में लाखों लोग, खासकर छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, आंख की कॉर्निया खराब होने के चलते देख नहीं पाते। डॉक्टर और साइंस की मदद से कॉर्निया ट्रांसप्लांट के जरिए इन लोगों की दृष्टि वापस लाई जाती सकती है, लेकिन इसके लिए केवल और केवल इंसानी आंख की आवश्यकता होती है, जिसे कोई मशीन या लैब नहीं बना सकती।
0: दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको जानना चाहिए नेत्रदान के बारे में,
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हम आपसे आपको ये बताएं कि नेत्रदान कौन कर सकता है, तो आप किसी भी एज के हों, किसी भी जेंडर से हों, या आपका कोई भी ब्लड ग्रुप हो, आप नेत्रदान कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि आप नेत्रदान कब कर सकते हैं, तो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके 6 घंटे के भीतर उसका नेत्रदान किया जा सकता है। साथ ही चेहरे पर कोई भी इससे विकृति यानी बदलाव नहीं आती है।
1: साक्षी, लेकिन हमारे समाज में हमारे आसपास कई भ्रांतियां भी हैं इसको लेकर। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि नेत्रदान से वे अगले जन्म में नेत्रहीन पैदा होंगे, तो श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बल्कि एक पूरी तरह से अंधविश्वास है।
0: दोस्तों, आई बैंक या मेडिकल सेंटर पर जाकर आप फॉर्म फिल करें और आई डोनेशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको नेत्रदान में इंटरेस्ट है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही अपने इस फैसले को अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं, क्योंकि मृत्यु के बाद उनकी सहमति इम्पॉर्टेंट होती है।
1: और साक्षी, सबसे ज़रूरी अवेयरनेस, और यही वजह है कि आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, ताकि जितने भी हमारे श्रोता हैं, हमारे आसपास के फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनमें ये अवेयरनेस ज़रूर फैले। क्योंकि जिस तरह से हमने बात की कि भ्रांतियाँ भी बहुत सारी हैं, लोगों को एक डर भी रहता है कि, और खास तौर पे हमारी फैमिली मेंबर्स भी अलाउ नहीं करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका ये फैसला आप ज़रूर लें, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताएं। और ये बेहद खास है, जाते जाते हम किसी को नई जिंदगी दे सकते हैं।
0: उन्हें दुनिया देखने का मौका दे सकते हैं, तो ये आप बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं ह्यूमैनिटी में। तो
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि दोस्तों, क्या क्या है कि हम कहते हैं ना कि जो मनुष्य होता है वो सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और इस तरह हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। तो इसलिए अगर आप जाते जाते किसी को नई रोशनी दे सकते हैं, दुनिया देखने का मौका दे सकते हैं, तो शायद आपकी जो आत्मा है वो भी बहुत प्रसन्न होगी।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसा भी है, जैसा कि पूजा ने बताया, कि हमारी फैमिली तैयार नहीं होती, उन्हें डर लगता है या उन्हें दुख भी होता है कि हम ऐसे अपने बच्चे को या फिर अपने फैमिली मेम्बर को अलाउ नहीं करेंगे।
1: हाँ।
0: तो आप उनको, जैसे पूजा ने बताया कि अंधविश्वास एक भी कारण है उनके डर का, और भी ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, तो आप सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स को जरूर जागरूक करें और इस पूरे जो पखवाड़ा है इसमें योगदान दें।
1: और यूथ का सबसे बड़ा रोल हो सकता है, तो जीते जी रक्तदान हमें जरूर करना है, और यहाँ से जाते वक्त हमें नेत्रदान के बारे में जरूर सोचना है।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
3: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
4: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
5: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
4: RBI कहता है जानकार बनिए,
5: सतर्क रहिए।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

0: की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अपने अगले बेहद खास सेगमेंट प्रेरणा पुंज की ओर। भारतीय इतिहास के पन्नों में ऐसे कई नाम दर्ज हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया,
2: लेकिन आज हम उस महिला की बात करेंगे जिसने मात्र 21 वर्ष की आयु में हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लिया।
1: आज हम बात करेंगे प्रीति लता वाडेदार की।
2: दोस्तों, प्रीति लता जी का जन्म 5 मई 1911 को तत्कालीन पूर्वी भारत और आज के बांग्लादेश में स्थित चटगांव के एक गरीब परिवार में हुआ था।
1: वो पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थी। उन्होंने कोलकाता के बेथ्यून कॉलेज से फिलॉसफी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की।
2: दोस्तों, कॉलेज के दिनों में से ही वो दीपाली संघ और छात्री संघ जैसे संगठनों से जुड़ी गईं। बाद में वो प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन के समूह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गई थी।
1: पहाड़ तले यूरोपीय क्लब पर हमला, साल 1932। इस क्लब के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड।
2: 24 सितंबर 1932 की रात 21 वर्ष की आयु में प्रीति लता ने पुरुषों के देश में क्रांतिकारियों के एक दल का नेतृत्व करते हुए इस क्लब पर सफल हमला किया।
1: हमले के दौरान वो गोली लगने से घायल हो गई। अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाने या यातना सहने के बजाय उन्होंने पोटेशियम साइनाइड खाकर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण त्याग दिए।
2: दोस्तों, उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के साहस और भागीदारी का एक अमर प्रतीक है। उनका जीवन अत्यंत प्रेरणादायक रहा है, जिसके कारण उन पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज, साथ ही साहित्यिक पुस्तकें लिखी गईं। अगर फिल्मों की बात करें तो जैसे बीरो कन्या प्रीति लता, जो कि 2020 में आई थी ये फिल्म, ये बांग्लादेशी फिल्म है और निर्देशन किया था प्रदीप धर ने। साथ ही 2010 में उन पर एक फिल्म आई जिसका नाम था खेले हम जी जान से, और इसके डायरेक्टर रहे आशुतोष गोपासकर। ये चिटगांव आर्मरी रेड पर आधारित है। इसमें अभिनेत्री विशाखा सिंह ने प्रीति लता वाडेदार का किरदार निभाया। साथ ही एक और मूवी रही चटगांव, इसमें प्रीति लता की क्रांतिकारी भूमिका को प्रमुखता से दिखाया गया है।
1: और बात अगर उन पर लिखी किताबों की करें तो उसमें शामिल है प्रीति लता उपन्यास, चटगांव अपराइजिंग, अग्निकन्या प्रीति लता एंड सबसे जरूरी किताब डू एंड डाई द चटगांव अपराइजिंग।
2: तो दोस्तों, ये तो रही हमारी आज की प्रेरणा पुंज, और

कि आपको पता है कि हम अपने प्रेरणा मूल संगमन में ऐसे ही महान व्यक्तित्वों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हमारे समाज, हमारी मानवता के लिए बहुत योगदान किया, और उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन को भी ऐसा बनाएं और हम दूसरों के लिए भी कुछ योगदान कर सकें। तो दोस्तों, आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये प्यारा सा गीत।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों अब बारी है हमारे बहुत ही खास सेगमेंट करियर की बात की, जिसमें हम आपसे और आपसे रिलेटेड और हमसे रिलेटेड कुछ करियर से रिलेटेड बातें करते हैं ताकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और हम उसके लिए जागरूक रह सकें। तो आज के सेगमेंट में हम वो पुरानी बातें बिल्कुल नहीं करेंगे कि टेंथ के बाद साइंस लें या आर्ट्स, ट्वेल्थ के बाद इंजीनियरिंग करें या मेडिकल फील्ड में जाएं। दैट इज़ आउटडेटेड क्वेश्चंस। सो पुरानी बातें पुरानी हो चुकी है, आज हम बात करेंगे उस वर्ड की विच इज़ चेंजिंग इन एवरी सेकेंड।
4: हमारे पेरेंट्स के टाइम में करियर का मतलब होता था एक डिग्री लो और एक कंपनी ज्वाइन करो और फिर रिटायर हो जाओ, लेकिन आज लोग पोर्टफोलियो करियर बना रहे हैं।
3: इट मीन्स यू डोंट नीड टू डू जस्ट वन जॉब एनी मोर। आप मंडे को कोडिंग कर सकते हैं, वेंसडे को ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं और वीकेंड को अपना खुद का ई कॉमर्स ब्रांड चला सकते हैं।
4: सो इन शॉर्ट आज के टाइम में वैल्यू डिग्री की नहीं बल्कि स्किल्स की भी है। सो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो आज के टाइम पर धूम मचा रहे हैं। सो पहला मुझे ऐसा लगता है ये तो सबको ही पता होगा, वो है AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस तरह से अपनी जगह बना ली है और वो जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, ये अपने आप में बेहद खास रहा। सेकेंड बात करें तो VIVX डिजाइनिंग एंड थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, दीज फील्ड्स आर एब्सोल्युटली बूमिंग।
3: और साथ ही आप अपनी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड को पहचानिए कि आपके अंदर क्या वो खासियत है जिस फील्ड में काम करके आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा अचीव कर सकते हैं, एंड एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड अपस्किल योरसेल्फ, क्योंकि अगर आपके पास स्किल है तो वो आपका सबसे बड़ा वेपन है आपके फील्ड में।
4: बिल्कुल,
3: तो स्किल होना ही बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप खाली मत बैठिए, किसी भी एज में हैं आप, किसी भी एज ग्रुप के हैं आप, कोई ना कोई स्किल सीखते रहिए, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ डिमांड डिग्री की नहीं है, यहाँ आज के टाइम में डिमांड स्किल्स की ज़्यादा है।
4: डिग्री एक सपोर्ट कर सकता है हमें किसी फील्ड में जाने के लिए, उससे समझने के लिए, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप मार्केट को लीड नहीं कर सकते।
3: बिल्कुल,
4: क्योंकि अब जिस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे पास है, पहले के टाइम पे सर्टेन था क्योंकि इतना हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलता था, वही ट्रेडिशनल जॉब्स ही हुआ करते थे, अब तो फ्रीलांसिंग है। मतलब आपको 9 to 5 ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, आपके पास फोन है, आपके पास इंटरनेट है, सो यू कैन डू एनीथिंग, इवन वर्ल्ड में कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं, किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए।
3: और जैसे पूजा ने कहा कि 9 to 5 जॉब्स ही सिर्फ आपको नहीं करनी है, अगर आप 9 to 5 जॉब कर भी रहे हैं तो भी आप फ्रीलांसिंग जो इतना हमें इतना बेनिफिशियल है कि आप घर पे अगर फ्री टाइम है आपके पास तो आप उस जॉब के साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स भी है ये।
4: सो ट्रू। तो यही वजह है कि हम करियर की बात पर बात करते हैं। और आज साक्षी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इस करियर की बात, हम इस टॉपिक पर बात करिए, साक्षी का आइडिया था। इस तरह से इस चीज़ को देखना मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम हमेशा वैकेंसीज की बात करते थे। आज तुमने जो किया विच इज़ वेरी क्रिएटिव, और यही हमारी कोशिश होती है, हमारी पूरी टीम।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी आपने सुना है बहुत प्यारा सा गीत। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जो कि बहुत होता है खास, यानी प्रश्न मंच। और आपको हम बता दें कि हमारा जो कल का प्रश्न था वो था कि भारत में CAG की रिपोर्ट किसको दी जाती है। तो आज का उत्तर है कि CAG की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC के द्वारा जांची जाती है। और CAG की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो केंद्र और राज्य में लोक लेखा समिति दोनों को सौंपी जाती है। आपको बता दें कि विनियोग खातों, वित्त खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति के द्वारा जांची जाती है। और CAG का जो फुल फॉर्म है वो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और हमारा जो आज का प्रश्न है वो है,
4: थैंक यू साक्षी, आज का सवाल है भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 क्या कहता है। आई रिपीट, भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 क्या कहता है। आप इसका सही जवाब हमारी ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com। इसी के साथ आपको बता दें आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा मैसेज का नंबर है 8004926250। आई रिपीट 8004926250।
3: तो दोस्तों अब वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम का आखिरी गीत सुन लें।

0: तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर।
1: हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com।
0: तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है कि हम आपसे विदा लें। तो मुझे यानी साक्षी पांडे
1: और मुझे यानी पूजा यादव को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली UPI ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। UPI भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि UPI प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले UPI की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि UPI के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: महज 10 वर्षों में UPI ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। UPI की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज UPI प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, UAE, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में UPI की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस

0: टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-05, NJ-50 और NJ-100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विवरण के बारे में। तो लीजिए सबसे पहले सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा किसानवाणी। रात 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण होगा और दोनों ही कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे सिया राम मिश्र से रामायण पाठ। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पूजा देवी का काव्य पाठ। 7:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा जिसमें सुनिएगा मीरा तिवारी के गाए भजन और गीत। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां, इसका प्रसारण होगा रात 9:30। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन सुनवाया जाएगा रात 10:30। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम होगा रात 9:30। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे अनिल कुमार से की गई बातचीत, कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित दिनकर राव देशपांडे का ख्याल गायन सुनिए सुबह 7:30। रेशमा श्रीवास्तव का सितार वादन सुनिए दोपहर 12:15 और पंडित गोपाल मिश्र का सारंगी वादन सुनवाया जाएगा रात 10:30। नमस्कार प्रयागराज, यह कार्यक्रम होगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में मिताली शर्मा के गाए भजन और गीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज। इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 10:05 पर। इंद्रजीत पटेल और साथियों के गाए लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 10:30। श्रोता अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुनेंगे दोपहर 12:30। प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार।

0: 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा गृह लक्ष्मी। एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 बजे। युवा साथियों का कार्यक्रम रोज की तरह शाम 5:15 बजे होगा। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे अजय कुमार शुक्ल से नीति वचन और श्रद्धा रावत से की गई बातचीत जलवायु परिवर्तन और भारतीय कृषि। 7:31 पर मंटो पर आधारित कार्यक्रम होगा किस्सा गोई, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: रक्तदान तकलीफ दे नहीं है, इसे देने में समय भी नहीं लगता। इससे किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है, वो व्यक्ति आपका अपना भी तो हो सकता है। कृपया रक्तदान करें, रक्तदान महादान। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर

0: आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: झिलमिल सितारों से बच्चों की मुस्कुराहट समाती है बाल संग बाल गोपाल और नन्ही दुनिया में।
1: घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहां से आए तुम।
2: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
0: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
3: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
2: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: थोड़ी देर में ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे पंचायत घर।
1: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
2: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
1: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
2: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
3: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

सब पंचन के मन्नू भाई का राम राम। पंचो देखे जुग जमाना बदल रहा बा और वही के साथ साथ अपने खेती किसानी का जौन पद्धति बा ओमन भी बदलाव बहुत जरूरी है। पहले के जमाना में देखें जब इतना कुल वैज्ञानिक अनुसंधान ना रहा, वैज्ञानिक आविष्कार ना रहा, पारंपरिक तौर तरीके से खेती किसानी होखे तो लोग जैविक खेती करें भैया, गोबर का खाद डालें लोग, कंपोस्ट ओहमे डालें लोग। लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे हरित क्रांति आवे के बाद रासायनिक खाद का प्रचलन बढ़ा, फायदा तो कर भय उत्पादन बढ़ा, मुला धीरे धीरे धीरे धीरे अब लंबा समय हो गए बा रासायनिक खाद का प्रयोग करत करत। तो ऐसे आपन जौन जमीन बा, आपन जौन माटी बा, ओकर क्षमता धीरे धीरे कम हो रहा बा। साथे साथे भैया फसल का अनाज का गुणवत्ता में भी कमी आई रहा बा और कहीं ना कहीं भैया देखा सेहत के ऊपर भी ओकर प्रतिकूल असर पड़ रहा बा। यही लिए जितने भी कृषि के वैज्ञानिक लोग हैं, जितने भी कृषि के विशेषज्ञ लोग हैं, बार बार यह बात के चेतावत हैं कि भैया देखा खेती किसानी में आधुनिक तौर तरीका तो अपनावा, मशीन का भी प्रयोग करा, तकनीक का भी प्रयोग करा, मूला देखा कुछ बात ऐसा बा ना जौन आज के पहले जमाने में चले ओहके भी अपनावल जरूरी बा। जैसे पहले के ज़माना में होके कि देखा भैया लोग जैविक खाद का प्रयोग करें, गोबर का प्रयोग करें, हरी खाद का लोग प्रयोग करें, कंपोस्ट भैया केचुआ से बना के ओहकर लोग प्रयोग करें और ऐसे फसल भाई भले पैदावार ओह जमाने में कम आवे लेकिन गुणवत्ता बढ़िया रहे। तो आज के ज़माना में तो भैया बहुत ज़रूरी बा, काहे कि रासायनिक खाद का

अंधाधुंध प्रयोग बा, एकर कई नुकसान बा। पहला नुकसान तो भैया ई बा कि पर्यावरण बदे भी एक तरीके से हानिकारक बा। दूसर बात बा भैया, माटी का संरचना धीरे धीरे खराब हो रहा बा। और तीसर का सबसे बड़ा जौन एकर दुष्प्रभाव बा, जौन अनाज का गुणवत्ता बा भैया, उस सेहत खाती फायदेमंद नहीं बा। तो किसान भाई एक बात पर ध्यान रखें कि आपन खेती किसानी में वैज्ञानिक तौर तरीका अपनावा, बढ़िया बढ़िया बीज, बढ़िया बढ़िया प्रजाति का प्रयोग करा, बढ़िया तौर तरीके से खेत का माटी बनावा, मुला ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद पर अपने खेती का निर्भरता के बढ़ावल बहुत जरूरी बा, जौने से कि आपन माटी का संरचना बरकरार रहे। तो भैया प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ही ये जौन समय चलत बा, ये समय का सबसे बड़ी मांग बा, जरूरत बा। काहे कि कहा जाता ना कि किसान देखा अन्नदाता ही खाली नहीं होते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो पूरे देश का सेहत का किस्मत भी किसान के हाथ में होता। तो पूरे राष्ट्र का, देश का सेहत अगर सुधारे के होके, माटी का सेहत अगर सुधारे के होके, तो प्राकृतिक खेती की तरफ लौटे की जरूरत है, फसल चक्रीकरण के अपनावे की जरूरत है। और साथे साथे भैया जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कीटनाशक का भी प्रयोग न करें। तमाम जो है कि जैविक उत्पाद ऐसा आवत हैं जौने से कि कीटनाशक का काम चल जाता है, चाहे कोनो भी रोग होता या कीट होता तो वह पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। साथे साथे देखा अगर बीज का उपचार पहले कर लेते हैं तो बाद में ये कुल जौन समस्या आवत है उस समस्या से समाधान मिल जाता है, निराकरण मिल जाता है। तो पंचों देखे बतकही तो होत रही, मुला हम कहें कि देखा जो कि खूब झमझमाए कि बरसात भी हो रहा बा, खेती किसानी भी बढ़िया होती, धान का फसल भी बढ़िया चलत हुई। तो भैया अब ऐसन में अगर कुछ ढोल मजीरा न बचे तो पंचायत अपन सन्नाटादार लगी, सुना लगी। तो भैया आमे पहले एक ठे विकास गीत सुन ले मुशर्रफ अली और संघातिन का, एक बाद और बातचीत हुई।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: पंचों देखे मुशर्रफ अली और संगातिन के गावा गवनी हो गए, साथे साथे सनेसा भी हो गए। अब देखे खेती किसानी के साथ साथ कुछ नीत का बात, कुछ रामायण पाठ भी बहुत जरूरी होता मन के सकून खाती, संतुष्टि खाती। यही बरे आज देखे अपने पंचायती में रामायण पाठ लेके बैठा बाटी सियाराम मिश्र का, तो भैया सुने के।
4: समादरणीय समस्त पंच महानुभाव, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बताया, संसार के समस्त प्राणी स्वार्थ युक्त प्रेम करते हैं, केवल भगवान और भगवान के भक्त ही निस्वार्थ प्रेम करते हैं। किस

हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। प्रेम करना तो केवल प्रभु जानते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि जानत प्रीति रीति रघुराई, तिय बिरही सुग्रीव सखाल की, प्राण प्रिया बिसराई, रन पर बंधु विभीषण ही की, हृदय सोच अधिकाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। इस संदर्भ में एक छोटी सी झांकी आप श्री रामचरितमानस के माध्यम से देख। जिस समय जीवाचार्य लक्ष्मण मेघनाथ की बीरघातनी शक्ति से मूर्छित होकर रणस्थल में पड़े हुए हैं और भगवान श्री राम लक्ष्मण के सर को गोद में लेकर के विलाप कर रहे हैं कि यहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो, सकौ न दुखित देख मोहि काउ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाउ, मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहेउ बिपिन हिमया तप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, ठहु न सुनि मम बच बिकलाई, अजो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं वोहु, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा, अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलै न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग अति दीना, अमन बिनु फने करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ जैव दियावस मोही, जैहं अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु

चले हो। प्रभु श्री राम का विलाप सुनकर सभी बानर भालू बिह्वल हो उठे कि प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये बानर निकर। उस समय सुग्रीव ने कहा, भगवान आप लक्ष्मण के लिए इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी के आने पर लक्ष्मण स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव क्या तुम सोच रहे हो मैं लक्ष्मण के लिए रो रहा हूँ? मैं लक्ष्मण के लिए नहीं रो रहा हूँ। यह सुनकर सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। सुग्रीव ने कहा, भगवान अगर आप लक्ष्मण के लिए नहीं रो रहे हैं तो महाराज दशरथ के लिए रो रहे होंगे। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं। सुग्रीव ने कहा, आप माता कौशल्या के लिए रो रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं। सुग्रीव ने कहा, भगवान आप देवी सीता के लिए अवश्य रो रहे होंगे। भगवान श्री राम ने मना कर दिया। सुग्रीव ने कहा, भगवान आप भैया भरत के लिए, पक्षराज जटायु के लिए रो रहे होंगे। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं। सुग्रीव ने कहा, भगवान न तो आप लक्ष्मण के लिए रो रहे हैं, न तो भरत के लिए रो रहे हैं, न महाराज दशरथ के लिए, न तो देवी कौशल्या के लिए, न महारानी किशोरी जी के लिए रो रहे हैं, तो आखिर आप रो क्यों रहे हैं? भगवान श्री राम ने कहा,

0: हे कि भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव सुबह होने को है, अभी तक हनुमान जी नहीं आए, सूर्योदय के साथ ही लक्ष्मण का प्राणांत हो जाएगा, लक्ष्मण के साथ ही मेरा प्राणांत हो जाएगा, और जिस समय यह सूचना लंका में देवी सीता को प्राप्त होगी उनका भी प्राणांत हो जाएगा, जिस समय यह सूचना अयोध्या में भरत को प्राप्त होगी भरत शत्रुघ्न का प्राणांत हो जाएगा, सारे वानर भालू जंगलों में चले जाएंगे, परंतु ये विभीषण कहाँ जाएगा? कि
1: तो पंचों देखे, ये रामायण पाठ रहा और कितनी अच्छी अच्छी बात हो था जीवन के उपयोग में लावे वाली, ओके जो उन्हें कि आत्मसात करे के चाही। देखे कोनो भी नीत का बात होके, चाहे रामायण पाठ होके भैया, चाहे गीता का पाठ होके, खाली होके बाँच लेवे से, खाली होके सुन लेवे से कोनो हित और कल्याण ना होके वाला है। सुने का मतलब ये होता है कि ओहमन जो लिखा गया है ओके समझे, और ओकर जो संदेश है वो संदेश के ग्रहण करे, अपने जीवन में उतारे का प्रयास करे। जब उतारे का प्रयास करिए तब्बे अपने सोच में बदलाव आई, अपने जीवन शैली में बदलाव आई, और निश्चित रूप से मान के चलें कि जीवन में खुशहाली आई। एक बात और पंचों देखे, बारिश तो खूब झमाझम हो ही रहा बा और धान का फसल भी है, समय लालहात बा। मुला ऐसा है कि

मेड़बंदी पर बहुत ध्यान देवे की जरूरत है, ताकि ऐसा न हो कि राति के बरसात होके और सवेरे जब तक जा खेत में पानी पौण के बाहर चल जाए। तो अगर यह सब चीजन का ध्यान दें, सवेरे संजा सवेरे अपने खेते पर जाएं और देखें कि अपने खेत की स्थिति का है, अपने फसल की स्थिति का है, अगर खर पतवार हो गए होके तो ओके जो है सुहाई करें, ओकर नियंत्रण करे का प्रयास करें। और यही के साथ साथ भैया बुन्नी बरसात के मौसम में कोशिश करें कि संजा का ढेर रात भय के बाद बहरे न निकलें, थोड़ा अपने आप के सुरक्षित भी रखें। और यही लिए देखा भैया अब धीरे धीरे बुन्नी बरसात का मौसम बा और देखा दौ राजा घेरे बाट, तो हम हूँ जो उन्हें कि अब आज्ञा चाहब, तो मन्नू भाई के आज्ञा दे पंचो, पंचों राम राम।

अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: खबरें।
1: देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। वर्ष 2025-26 में देश में दलहन का उत्पादन बढ़कर लगभग 274 लाख टन पहुंच गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में करीब 17 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू उत्पादन बढ़ने का असर दलहन के आयात पर भी पड़ा है। वर्ष 2024-25 में करीब 73 लाख टन दलहन का आयात हुआ था, जो 2025-26 में घटकर करीब 60 लाख टन रह गया है, यानी आयात में लगभग 13 लाख टन की कमी आई है। वहीं दलहन की खेती का रकबा भी बढ़ा है और उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। सरकार का लक्ष्य देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत बेहतर और जलवायु अनुकूल बीजों को बढ़ावा देने, खेती का रकबा बढ़ाने और किसानों को तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दलहनी फसलों की सुनिश्चित खरीद उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। यानी बढ़ता उत्पादन और घटता आयात दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदम का संकेत है।
2: तो मंजो ही तो रही आज की खबरें और बारी है आज की बातें सुने के। तो आज है खरीफ फसलन में पोषक तत्व कमी के लक्षण, उपचार और इसके बारे में बता रहे हैं जसवीर सिंह भैया, तो चलो सुना जाए।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से धान, मक्का, मोटे अनाज, दलहनी फसलों में अरहर, उड़द और मूंग और तिलहनी फसलों में मूंगफली, तिल और कहीं कहीं सोयाबीन की फसल खेत में खड़ी है। जहां फसल खेत में है तो कई बार जो छिपी हुई भूख है पोषक तत्वों की, उसकी कमी के लक्षण दिखते हैं, तो इनका उपचार कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं जसबीर सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। सिंह साहब, ये बताएं कि जो खरीफ फसलें हैं उनमें भूख मिटे, जो पोषक तत्वों की कमी के लक्षण हैं उनका उपचार हो, इसके लिए क्या सलाह देंगे?
4: किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले हम जानते हैं कि खरीफ की कौन कौन सी मुख्य फसलें हमारे प्रदेश में बोई जाती हैं। तो धान्य फसलों की अगर हम बात करें तो धान, मक्का, ज्वार और बाजरा। दलहनी फसलों की बात करें तो अरहर, उड़द, मूंग और लोबिया। तिलहनी फसलों में तिल है, मूंगफली है और सोयाबीन है। इसके अलावा कुछ किसान भाई जो हैं वो सब्जियों की खेती करते हैं। अधिकतर फसलों में जो है किसी न किसी पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। अगर उस कमी को हम पूरा ना करें तो उसकी वजह से हमारी फसल की उपज और किसान का आर्थिक लाभ जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है।
3: अक्सर किसान भाई बहन कुछ खास उर्वरक हैं जैसे यूरिया है, ज़्यादा से ज़्यादा DAP खाद का प्रयोग करते हैं, जो और पोषक तत्व हैं उनकी कमी बनी रहती है।
4: किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी विशेष रूप से हमारी फसलों में पाई जाती है। तो पहला मुख्य तत्व हमारा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी को किसान भाई बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पुरानी और जो नीचे की पत्तियां होती हैं उसमें पीलापन आने लगता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है। और अगर भारी कमी अगर हो गई तो पूरा पौधा ही पीला हो जाता है। दूसरा तत्व तो हमारा फास्फोरस आता है। फास्फोरस में क्या होता है कि पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है, पौधों में वृद्धि और विकास रुक जाता है, जिससे हम पहचान जाते हैं कि फास्फोरस की कमी इसमें आ गई है।
3: और पोटाश की?
4: पोटाश की कमी में क्या होता है किसान भाइयों कि किनारे से जो नीचे के पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये पत्ते सूख रहे हैं किनारे से या जो है झुलस रहे हैं। इसी तरह से जिंक है। जिंक में क्या होता है किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि धान की फसल में खैरा रोग लगता है, मक्के की फसल में जो है सफ़ेद धारी रोग लगता है, तथा दलहन और तिलहन की फसलों में आपने देखा होगा कि जो ऊपर की पत्तियां होती हैं उनमें पीलापन आता है और लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। जैसे मूंगफली और सोयाबीन की फसल में विशेष रूप से आपने देखा होगा कि लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं। फिर आता हमारा एक तत्व गंधक, इसको सल्फर बोलते हैं। सल्फर की कमी से क्या होता है कि ऊपर की पत्तियां पीली हो जाती हैं और नीचे की पत्तियां हरी बनी रहती हैं। फिर आता है बोरोन। बोरोन में क्या होता है कि पत्तियां कटोरी नुमा साइज में यानी कि सिकुड़ने लगती हैं
3: जी,
4: और उनको अगर हम छूके देखते हैं तो उनकी सतह जो है सामान्यतया कठोर दिखाई देती है। फल जो हैं जैसे खीरा आदि हैं सब्जियां, उनमें टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, और खासकर ये टेढ़े मेढ़े होने वाली समस्या जो सब्जियों और फलों में ज़्यादातर पाई जाती है।
3: तो खरीफ फसलों में जहाँ नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिख रहे हैं सिंह साहब, तो इसका उपचार इस समय कैसे हो?
4: किसान भाइयों, अगर इन लक्षणों को जो हमने अभी बताए उनको हमने समझ लिया, तो नाइट्रोजन अगर

0: में पूरी करनी है तो नाइट्रोजन के लिए हमें यूरिया दानेदार जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर हमने फास्फोरस की कमी को पहचान लिया है तो डीएपी का प्रयोग करना चाहिए। पोटैश अगर हमने कमी को पकड़ लिया है तो पोटैश जो है बुवाई के समय तो हम 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करते हैं
1: जी।
0: और सल्फर का अगर प्रयोग करना है तो 8 से 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करते हैं। और लेकिन जो तिलहन वाली फसलें हैं उनमें हमें ये सल्फर की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, 12 से 15 किलोग्राम करनी चाहिए।
1: 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़
0: के हिसाब से
1: प्रयोग बेसल रोज
0: जी।
1: और जैसे आपने नाइट्रोजन की कमी के लक्षण बताए और इनके उपचार के लिए दानेदार यूरिया या नैनो यूरिया प्लस का अगर खड़ी फसल में छिड़काव करना है तो?
0: अब किसान भाइयों हम इस बात पे आते हैं कि हमारी फसल खड़ी हुई है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम बेसल डोज में ही डालते हैं, उन्हें हम नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना है तो यूरिया दानेदार का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे नैनो उर्वरक भी बाजार में इस समय उपलब्ध हैं, नैनो उर्वरकों का प्रयोग करके भी हम जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। एक बोतल होती है 500 मिलीलीटर की, उस 500 मिलीलीटर की बोतल को 125 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ में हमें इसका स्प्रे कर देना चाहिए 35 से 40 दिन की अवधि में।
1: और जहां फास्फोरस की कमी के लक्षण दिख रहे हैं खड़ी फसल में,
0: फास्फोरस की कमी के लिए शुरुआत में हमको बुवाई के समय फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। और अगर खड़ी फसल में हमको लक्षण दिखाई देते हैं तो नैनो डीएपी जो है 500 मिलीलीटर उसको 125 लीटर पानी में उसी प्रकार से जैसे मैंने नैनो यूरिया का प्रयोग विधि बताई है उसी प्रकार से प्रयोग करके हम फास्फोरस की कमी को दूर कर सकते हैं।
1: किस अवस्था पर सिंह साहब?
0: नैनो डीएपी है उसको नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों को एक साथ मिला के 35 से 40 दिन पे हम पहला छिड़काव कर सकते हैं।
1: और दोबारा
0: अगर करना है तो हम 20 दिन के बाद दूसरा छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए जो फूल आने से पहले की अवस्था पे हमको नैनो उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए।
1: आपने कहा कि पोटास का बेसल डोज में प्रयोग हो, लेकिन कई बार किसान भाई बहन अपनी खरीफ फसलों में पोटास का प्रयोग नहीं कर पाए हैं और खड़ी फसल में उसके लक्षण दिख रहे हैं, तो खड़ी फसल में इस समय क्या करें?
0: किसान भाइयों खड़ी फसल में अगर पोटास के और सल्फर के इन दो तत्वों की कमी के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो सल्फेट ऑफ पोटास एक आता है 0050 उस पे लिखा होता है, एक किलोग्राम पैकिंग का ये होता है
1: जी।
0: इसका प्रयोग हमको जो है एक किलोग्राम के पैकेट को एक एकड़ में 100 लीटर पानी में मिला के करना चाहिए, यानी कि 1% का घोल बना के हमको इसका खड़ी फसल में छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे हमारी सल्फर और पोटास दोनों ही तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि इसमें 50% जो है पोटास होता है और 17.5% जो है वो सल्फर पाया जाता है। और इसके अलावा जो है अभी हमारे दो तत्व और जो हमने जिनकी पहचान के लक्षण बताए थे, जस्ता में 5 से 8 किलोग्राम मोनो जिंक आती है उसका हमको एक एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। बोरोन की अगर हम बात करें तो इसका 5 किलोग्राम बोरोन 14.5% वाला उसका एक एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अभी क्या है बाजार में जिंक और बोरोन दोनों ही नैनो उर्वरकों के रूप में भी आ गए हैं
1: जी,
0: तो इनको हम जो है दोनों ही तत्वों को पानी में मिला के एक एकड़ में अगर छिड़काव कर देंगे तो हमारे जिंक और बोरोन दोनों से संबंधित जो लक्षण है उनका उपचार भली भांति किया जा सकता है।
1: सिंह साहब किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और उपचार के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके इफ़को कार्यालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 99 56 39 12 43 99 56 3 91 243 99 56 39 12 43।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और उपचार के बारे में सिंह साहब?
0: किसान भाइयों हमारा यही कहना है कि हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो उर्वरकों की सही मात्रा का सही समय पर प्रयोग करना चाहिए, उनके लक्षणों को खेत में जाकर देखना चाहिए और जो उनके लिए समुचित उर्वरक हैं सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करके हम बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: जसबीर सिंह साहब आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रत्ना बहनी देखो जानकारी की बातें हुई और पंच इंतजार कर रहे थे कि लोकगीत जरूर सुनावा जाए उनका, तो आज लोकगीत है खेमटा चांद कबले लुकाई और स्वर है

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: रत्नवैनी तमाम पंच भैया अपन खेती पाती करते हैं, खेते में काम करते हैं।

0: हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, जिसे उनका यहाँ ऐसा रहता है कि हमार जो खेती होए, जो हमार फसल होए बहुत बढ़िया होए, जिससे उनका मुनाफा मिल सके। मतलब कुछ पंच भैया ऐसे होते हैं जो नई नई तकनीकें अपनाए के हैं, नई नई चीज़न का इस्तेमाल करके अपनी खेती का बहुत नीचे स्तर पर ले जाते हैं, जीते उनकी आमदनी दुगनी हुई जाते। यह तन की एक किसान अपने बीच में यहाँ आज हैं, भंवर पाल सिंह भैया, जो उन बता रहे हैं मिर्चा और करेला उत्पादन के बारे में। यहाँ इनसे सब पंच भैया सीख लें कि तनातनी अपनी खेती में नए नए तकनीकन का इस्तेमाल करके एक अच्छे किसान के रूप में यहाँ उभरे हैं। तो सुना जाए आज के किसान।
1: आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, कानपुर नगर जनपद के सरसौल ब्लॉक के महुआ गांव के भंवरपाल सिंह भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आप सब्जी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, इस समय कौन कौन सी सब्जियां आपके खेत में हैं?
2: इस समय ना साहब हमारे खेत में 5 एकड़ पे मिर्च लगी हुई है और 10 एकड़ पे करेला, 1 एकड़ पे हमने तुरई लगा रखी है।
1: अच्छा,
2: जी
1: तो मिर्च की कोई खास वैरायटी जो बाजार में डिमांड अच्छी हो
2: मिर्च में हम ना साहब कुछ एरिया में हाइब्रिड वैरायटी करते हैं और ज़्यादा एरिया में हम देसी प्रजातियां करते हैं मिर्च की।
1: कौन कौन?
2: एक काशी अनमोल है और एक G4 है।
1: अच्छा, क्या खासियत महसूस करते हैं इसकी?
2: देखिए जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं उनमें प्रोडक्शन तो अच्छा होता है मगर उसमें वो टेस्ट नहीं होता है जो हमारी देसी वैरायटियों में है।
1: और बाजार में उनकी डिमांड?
2: और देसी जो प्रजातियाँ हैं, जो देसी मिर्च है, उसकी बाजार में मांग हाइब्रिड मिर्च से ज़्यादा अच्छी होती है और उसके रेट भी ज़्यादा अच्छे होते हैं।
1: तो कब आपने नर्सरी डाली और कब रोपाई की और फसल किस अवस्था में है?
2: हमने ऐसा नर्सरी अपनी डाली थी 20 मई को और हमारी जो ट्रांसप्लांटिंग हुई है वो हुई है 1 जुलाई से मिर्च की,
1: अच्छा,
2: और करेले की जो ट्रांसप्लांटिंग की है वो 10 जुलाई से की है।
1: तो सीधे बुआई करेले
2: हाँ
1: की?
2: करेले की रसा थाले बना करके 6x6 पे हमने सीधे उसमें एक हर थाले में 3 या 4 बीज की रुपाई कर दी है।
1: अच्छा, और मिर्च करेला के अलावा एक सब्जी भी आपने?
2: एक तुरई करते हैं रसा,
1: अच्छा, तुरई।
2: वो भी मचान बीज से,
1: तो मचान पर करेला और तुरई
2: ये मचान पे होता है
1: बरसात की वजह से?
2: बरसात की वजह से, और उसमें ना सर उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है और फ्रूटिंग फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है।
1: ये बताएं कि मिर्च की फसल कैसी चल रही है?
2: मिर्च की हमारी फसल लगभग 1 महीने की हो गई है, उसमें अभी निराई गुड़ाई चल रही है और फ्लावरिंग 10 दिन बाद आना शुरू हो जाएगा।
1: मिर्च का अंतरण कितना रखते हैं, लाइन से लाइन की दूरी, पौध से पौध की दूरी?
2: मिर्च का जो जो देसी प्रजातियाँ हैं उनका हम रखते हैं लाइन से लाइन 2 फीट और हाइब्रिड का रखते हैं 2 से 2.5 फीट, और पेड़ से पेड़ की दूरी रखते हैं 1 फीट और हाइब्रिड की 1 से 1.5 फीट के बीच में रखते हैं।
1: अच्छा, फसल की भूख मिटाने के लिए क्या क्या आपने दिया बुआई के पहले, रोपाई के पहले और खड़ी फसल में?
2: हम लोग सब मिर्च है, करेला है, तुरई है या जो भी अन्य फसलें करते हैं, हम 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की सड़ी खाद डालते हैं,
1: यानी 100 कुंतल?
2: 100 कुंतल पर एकड़। और इसके बाद जो है कुछ एनपीके, अब एनपीके की हमने मात्रा थोड़ी कम कर दी है, जो अब स्मार्ट फर्टिलाइजर है, नैनो है, इनका प्रयोग अब ज़्यादा करते हैं। फिर भी हमने करीब 1 एकड़ में 25 kg DAP, 20 kg पोटास और 25 kg यूरिया बेसल डोज में और 5 kg सल्फर
1: जी दिया है,
2: दिया है मिर्च और करेले दोनों में ही।
1: और तुरई में?
2: तुरई में भी लगता यही है, रेशियो
1: रेशियो एक ही है?
2: रेशियो एक ही है।
1: तो फिर आगे भी खड़ी फसल में कुछ?
2: खड़ी फसल में 30 दिन बाद एक बेसल डोज और देते हैं 20 kg पर एकड़ का यूरिया का, और उसके बाद जब हर तुलाई होती है उसके बाद देते हैं। और इसके बाद हम इस समय जो सेल्युलर फर्टिलाइजर हैं NPK 52-34, 19-19, नैनो DAP, नैनो यूरिया, इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ब्लास्ट कास्टिंग यूरिया का कम करते हैं,
1: यानी पानी छिड़काव करते
2: पानी
1: हैं,
2: छिड़काव ज़्यादा करते हैं।
1: स्मार्ट उर्वरकों में नैनो यूरिया प्लस और नैनो DAP।
2: जी
1: करेला और तुरई की बुआई कब आपने की और कौन सी वैरायटी आपने चुना?
2: देखिए करेला में हमने ईस्ट वेस्ट की प्राची है और तुरई में एक हमारी BNR की तुरई आती है, उसी को हमने डाला है।
1: इनकी खासियत क्या है, जिन प्रजातियों को आपने?
2: करेले में नक्शा होता है कि जैसे

0: हमारे यहाँ जो डिमांड है वो चिकने करेले की ज़्यादा है। कहीं पे जैसे हमारा प्रयागराज का एरिया है, कुछ एरिया जहाँ पे कांटे वाला ज़्यादा चलता है, हमारे यहाँ चिकने करेले की डिमांड ज़्यादा है, तो हमने चिकने डाला है और इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। और इसकी हमारा जो कानपुर लखनऊ सराउंडिंग मार्केट है या दिल्ली, वहाँ इसकी डिमांड ज़्यादा है।
1: इसकी बुआई आपने कब की, करेला और तुरई की?
0: करेला की बुआई हम जुलाई के पहले हफ्ते में, करेला और तुरई की दोनों की बुआई एक साथ ही की है। ये हमने 7 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में की है।
1: इस समय क्या स्थिति है और क्या कर रहे हैं करेला और तुरई?
0: इस समय हमारे अपने करेला और तुरई का हमने मचान बना दिया है और हमारा जो है करेला और तुरई मचान में फैल रही है
1: तो
0: और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है।
1: जो भी सब्जियां इस समय हैं, चाहे मिर्च है, करेला है, तुरई है, आगे कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करेंगे खड़ी फसल में?
0: इसमें डॉक्टर साहब, चूंकि बरसात की फसल है तो इसमें इंसेक्ट बहुत आते हैं, फंगस बहुत आते हैं,
1: कीड़ा और बीमारी दोनों?
0: हाँ, कीड़े और बीमारी दोनों आते हैं, तो इसके लिए हम प्रिकॉशन से में ही फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह या नीम ऑयल वगैरह डालते रहते हैं।
1: कितने दिन के अंतराल
0: ये
1: पर?
0: आप हर 10 दिन, जैसी भी स्टेज हो 10 दिन, या हम देखते हैं कि हमारे पेड़ की स्थिति क्या है,
1: जी,
0: अगर कोई उसमें डिसीज नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है, तो वो 10 से 20 दिन भी हो सकता है।
1: जी, जैसी निगरानी हमेशा
0: हाँ,
1: करते रहते
0: इसकी
1: हैं।
0: एक निगरानी हम प्रतिदिन करते रहते हैं।
1: चूंकि पिछले कई सालों से आप लगातार सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं, तो ये जो मिर्च है, करेला है और तुरई है, इसमें क्या आंकड़ा लगाए हैं कि कब से कब तक आपको फलत मिलेगी और बाजार भाव अच्छा मिलेगा?
0: मिर्च के रेट तो हमको सितंबर से शुरू होती है और जनवरी तक रेट लगभग ठीक मिलते रहते हैं। जहाँ तक हमारा तुरई और करेला का है, करेला के रेट हमको नवंबर तक, जब तक ठंडी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है तब तक करेले के रेट अच्छे रहते हैं। जब ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो करेले का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और मार्केट में उसका कंजम्पशन भी कम हो जाता है, इसलिए नवंबर तक हम करेला रखते हैं और नवंबर तक ही तुरई रहती है, मिर्च हमारी जनवरी तक जाती है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बताते हैं।
0: 94-157-23-975, 94-157-23-975, 94-157-23-975।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
0: हर किसान से यही कहते हैं कि खेती को आप एक बोझ के रूप में न लीजिए, एक इंटरेस्ट के रूप में लीजिए, और जब आप इंटरेस्ट से खेती करेंगे, हाईटेक टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, तो खेती में आपको सब कुछ मिलेगा।
1: भंवरपाल सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो इस समय सब्जियों में आपके पास मिर्च है, मचान पर करेला और तुरई है और अच्छी स्थिति में है, अच्छी संभावना आपको दिख रही है उत्पादन और बाजार की, और कुल मिला जुला करके आप सब्जी उत्पादन करके खुशहाल हैं, आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अभिषेक भैया देखो पंच भाई बहन का मौसम की जानकारी बता दो ताकि मौसम के हिसाब से काम कर सके।
4: रत्ना बहनी तो हमका यू मौसम का हाल जोन मिला है भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से मिला है के हिसाब से अगले 7 दिन के जोन वर्षा पूर्वानुमान है वो हम बतावा जा रहे हैं। 25 तारीख यानी कि आज संभाग में अनेक स्थान पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है और 26 तारीख से लगाए के 27 तारीख तक संभाग में कुछ स्थान पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है। 27 तने लगाए के यहाँ 31 तारीख तक का संभाग में कहूं वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े।

0: के संभावना है और यू बहनी दोनों जगह ये तनक हाल रहे वाला है।
1: और साथ ही में यह जो चेतावनी की बात कही जाए तो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह 27 से लगाए के 31 तारीख तक कोई चेतावनी नहीं है। 25 और 26 दो दिन पर संभावना है बरखा होगी।
0: बिल्कुल बहनी, तो ये तो मौसम का हाल रहा।
1: देखो पंच भाई अपन बात कुछ कहा चाहते हैं या अपन कोई सुझाव देवा चाहते हैं तो उनके खातिर जो है हमारे पंचन के पता जरूर लिख ले। तो पता है कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन है 226001।
0: पंचो यू तो रहा पता ही के साथ साथ में अगर ईमेल करा चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस जरूर नोट कर लें। हमारे ईमेल एड्रेस है farmandhomealko@gmail.com।
1: पंच भाई बहनी देखो यू रहा है हम पंचन केर पता और वही के साथ साथ अब चलक हो रही बिरिया तो पंच भाई से लीन जाए आज्ञा।
0: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्रादेशिक समाचार, मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन बूथ स्तरीय अधिकारियों से किया संवाद। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुँचने का किया आह्वान। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को जारी किए सख्त निर्देश। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में कई जगहों पर बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में कल भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।
6: गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के संबंध में 6 लेन विस्तारीकरण अप टू

0: एक्टलैन आज मंत्रिपरिषद ने इसको सहमति प्रदान की है। ये 10,761 करोड़ रुपए की लागत से ये बन के तैयार होगा। इसमें खासतौर से जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक जाने के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय मार्ग NH 34 मेरठ बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा ही उपलब्ध है। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण हो जाने से बिजनौर हरिद्वार से सीधे जुड़ जाएगा एवं गंगा एक्सप्रेस वे के माध्यम से इसका सुलभ संपर्क प्रदेश की राजधानी से भी होगा।
1: बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत 8 मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए जाने की संस्तुति को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में 7,968 करोड़ रुपए से बनने वाले झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मिशन रोजगार के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए चयनित 3,446 प्राविधिक सहायक और मंडी परिषद में 126 मंडी सचिवों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में सरकार ने प्रदेश के 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के नौजवानों की दुनिया भर में मांग है।
2: आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इसराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहाँ भेजिए, हम भी अपने यहाँ नौकरी। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। आज दुनिया मांग रही यूपी के नौजवानों को, 17 के पहले तो ये स्थिति नहीं थी।
1: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने का सामर्थ्य रखता है।
2: यूपी में चीनी की कमी नहीं, यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी, हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख क्विंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से, यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है।

0: का पेट भरने का सामर्थ्य रखता है।
1: यूपी में चीनी की कमी नहीं,
2: यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी, हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है, और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख क्विंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से, यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। लखनऊ दौरे के दूसरे और अंतिम दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। श्री कुमार ने कहा कि प्रत्येक बूथ स्तरीय अधिकारी अपनी निष्ठा और पारदर्शिता के लिए मतदाताओं के बीच जाने जाते हैं। उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारियों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने की अपील की।
3: बूथ लेवल ऑफिसर्स भारत के लोकतंत्र की आधारशिला है। हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है, बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं, इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और इतना अच्छा वो काम करते हैं और सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए लखनऊ आए थे।
0: प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को योजना के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि योजना के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा अवैध वसूली, फर्जी बिलिंग और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा है। यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
4: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निपुण भारत मिशन के अंतर्गत केन्या, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के लगभग 70 सदस्यीय दल ने गाजियाबाद के 11 विद्यालयों का दौरा किया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान FLN सुधारों को समझना और अनुभव साझा करना है। ईद मिलादुन्नबी का पर्व कल पूरी अकीदत के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में जुलूस और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस मौके पर लखनऊ में निकलने वाले जुलूस ए मोहम्मदी को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए आज मोहम्मदी मिशन और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में ADCP वेस्ट धनंजय कुमार कुशवाहा ने कहा कि जुलूस ए मोहम्मदी परंपरागत तरीके और निर्धारित मार्ग से ही निकाला जाएगा। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के

0: निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं अयोध्या में सरयू नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए एसडीएम रुदौली विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और राहत कार्य जारी है।
1: पानी निरंतर घट रहा है, पानी घटने से जो भी संक्रामक बीमारियां होती हैं इत्यादि समस्याएं होती हैं उसके दृष्टिगत जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पशु चिकित्सालय की टीम है, उसको हम लोगों ने एक्टिवेट किया है और वो लगातार गांव में जाकर देखेंगे और लोगों को संक्रामक बीमारियों से होने वाले जो समस्याएं हैं उससे निजात कराने के लिए छिड़काव इत्यादि करेंगे।
0: वहीं मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन बूथ स्तरीय अधिकारियों से किया संवाद। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुँचने का किया आह्वान। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को जारी किए सख्त निर्देश। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में कई जगहों पर बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में कल भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पूजा देवी से उनका काव्य पाठ।
3: मम गीतम शीर्षकम श्रावण महात्म्यम श्राम

0: भक्तिभावेन नत्वा नतः सर्वदा भक्तिभावेन नत्वा नतः सर्वदा श्रावणो पातु नः सर्वदा सर्वदा श्रावणो पातु नः सर्वदा सर्वदा श्रावणो पातु नः सर्वदा सर्वदा।
1: संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पूजा देवी से उनका काव्य पाठ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, आपस में भाईचारा बनाकर रखें। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीरा तिवारी के गाए भजन। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए मीराबाई की ये भक्ति रचना।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: अब लीजिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए मीरा तिवारी के स्वर में कबीरदास की भक्ति रचना।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मीरा तिवारी के गाए भजन। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
2: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
1: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
2: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
3: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। दोस्तों, मौसम चाहे कोई भी हो, संगीत का अपना एक अलग ही मिजाज होता है। और जब बात बारिश की हो, घटाओं और बूंदों की हो, तो दिल खुद ब खुद गाने लगता है। आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं प्रकृति के उसी खूबसूरत रूप के साथ जो धरती को हरियाली, दिलों को ताजगी से भर देता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म चिराग का वो गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और उनका साथ दिया है उनके साथियों ने।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों बारिश का मौसम हो और दिल में किसी की याद ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। घटाओं का घेर आना, बूंदों का बरसना तो बस एक बहाना है। असली खूबसूरती तो उस एहसास में है जब दो बिछड़े हुए दिल एक मौसम में एक दूसरे के करीब आते हैं। दोस्तों 1949 में आई राज कपूर साहब की ब्लॉकबस्टर फिल्म बरसात का वो नगमा याद कीजिए जो कि मानसून का सबसे पहला और खूबसूरत एहसास माना जाता है। शैलेंद्र जी के लिखे बोल, शंकर जयकिशन का लाजवाब संगीत और लता जी की मखमली आवाज, जब ये सब एक साथ मिलते हैं ना तो वक्त मानो ठहर जाता है। तो आइए बारिश की इन भीगी बूंदों के साथ मौसम के इस सुरीले सफर में थोड़ा सा बह जाते हैं।

दोस्तों, जब मौसम बदलता है और फिजाओं में मस्ती घुलने लगती है ना, तो दिल का हर कोना खुशी से झूमने लगता है। और बात जब बॉलीवुड के क्लासिक नगमों की हो, तो 1975 की मशहूर फिल्म आक्रमण, इसका गीत बरबसी होठों पर आ जाता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के सुरीले संगीत, आनंद बख्शी जी के लिखे खूबसूरत बोल और किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की सदाबहार आवाज़ों से सजा ये गाना, जो कि अभी हम आपको सुनवाएंगे, खुशियों और उमंग से भरा हुआ गीत लगता है। ये गीत हमें सिखाता है कि हर मौसम को मुस्कुराकर किसी भी परिस्थिति में जी ही लेना चाहिए।

दोस्तों, किसी ने कहा है कि जब चेहरे पर सादगी और दिल में इबादत होती है, तब इंसान के रूप में ही खुदा की सूरत होती है। दोस्तों, प्यार जब अपनी पाकीज़गी के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है, तो वो महज एक एहसास नहीं रहता, बल्कि इबादत और बंदगी बन जाता है, जहां अपने महबूब के चेहरे में ही ईश्वर का नूर नज़र आने लगता है। फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का ये बेहद खूबसूरत गीत इसी रूहानी एहसास को बड़े ही सुरेले अंदाज में बयां करता है। जयदीप साहनी के लिखे बोल, सलीम सुलेमान का बेहतरीन संगीत और रूप कुमार राठौर जी की मखमली आवाज ने इस नगमे को हर दिल का पसंदीदा नगमा

इबादत में खुदा को तो झुककर मना लोगे तुम, मगर रूठे हुए दिलवर को कैसे मनाओगे। जब इंसान प्यार के रंग में रंगता है ना, तो उसे समझ आता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम किसी रूठे हुए अपने यार को, अपने दिलवर को मनाना है, क्योंकि

इसी नटखट और नोकझोंक भरी मोहब्बत की कहानी बयां करता है। आनंद बख्शी जी के चुटीले बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का चंचल संगीत और मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की प्यारी सी आवाज़। आइए सुनते हैं फिल्म मजबूर का ये गाना।

फिल्म मजबूर के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं मिले जुले गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। तो सबसे पहले अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति रचना।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: सीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
0: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
1: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
2: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
3: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
4: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो।

0: ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत की लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधाननगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट

0: be used by Indian companies to boost domestic production. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representative talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal pitches the country as a global data center hub, highlights $200 billion investment commitments from global hyperscalers. And in men's cricket, host Sri Lanka trailed by 238 runs against India. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। अदायगियों के मरबूत निज़ाम यूपीआई को 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं। भारत बरवक्त अदायगियों के साथ डिजिटल लेन देन में दुनिया में एक आलमी लीडर के तौर पर उभरा है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म की रसाई और वसअत हर भारतीय के लिए बायस फ़ख्र है। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने भारतीय कंपनियों को मुंतकिल की जाने वाली मिज़ाइल टेक्नोलॉजी तैयार की है ताकि घरेलू पैदावार को फ़रोग दिया जा सके। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने सरहदी मामले और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के सिलसिले में बीजिंग में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भारत को आलमी डेटा सेंटर हब करार दिया है। उन्होंने आलमी कंपनियों की जानिब से 200 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के वादों को उजागर किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलादुन्नबी और ओनम के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में मेजबान श्रीलंका अपनी पहली इनिंग्स में भारत से 238 रन पीछे है। अब खबरें तफसील से। अदायगियों के मरबूत निज़ाम UPI का आज ही के दिन 2016 में आगाज हुआ था और इसने मुल्क और बैरून मुल्क डिजिटल अदायगियों की यकसर तब्दीली के 10 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। UPI की गैरमामूली रसाई, तादाद और भरोसे को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया और आज ये निज़ाम 11 मुल्कों में नाफिज है। ये मुल्क के डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे के सबसे कामयाब सतून के तौर पर उभरा है जो बरवक्त अदायगी से मुतालिक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। UPI लेन देन में तकरीबन 13,000 गुना इजाफा हुआ है। वजारत खजाना ने कहा है कि सालाना लेन देन 2016-17 में महज 1.78 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 24,162 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच गई। इसी अरसे के दौरान लेन देन की कदर में भी 7,000 करोड़ रुपए से तकरीबन 314 लाख करोड़ रुपए का काबिल कदर इजाफा हुआ है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने अदायगी के मरबूत निज़ाम की एक दहाई तवील कामयाब खिदमात की सताइश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जना मोदी ने भारत के डिजिटल अदायगियों के सफर में UPI को यकसर तब्दीली का एक अहम लम्हा करार दिया। हम वतनों से UPI के अपने तजुर्बात शेयर करने पर जोर देते हुए वजीर अजम ने कहा कि इसमें खातिरखा इजाफे और UPI की पहुंच पर हर भारतीय को फख्र होना चाहिए। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि डिजिटल फर्क को ख़त्म करने, इक्तसादी शमूलियत को बढ़ाने और डिजिटल इक्तसादी खिदमात तक रसाई को वसत देने के मामले में UPI ने मुल्क भर के लोगों और बिरादरियों को बाइख्तियार किया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: आज दुनिया भर में बरवक्त डिजिटल अदायगी के हर 2 लेन देन में से एक भारत में होता है। 2025 में UPI के जरिए दुनिया भर में बरवक्त अदायगी की तादाद तकरीबन 49% रही। गुज़श्ता महीने मुल्क भर में UPI के जरिए 23 अरब से ज़्यादा लेन देन दर्ज किए गए। UPI भारत के डिजिटल अदायगी इको निज़ाम की असल बुनियाद और इक्तसादी शमूलियत के अहम जुज्व के तौर पर उभरा है। UPI को आलमी सतह पर भी तस्लीम किया गया और अब ये फ्रांस, सिंगापुर, मुत्तहदा अरब अमारात, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस समेत 11 मुल्कों में खिदमात अंजाम दे रहा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए दिल्ली के एक दुकानदार योगेश ने कहा कि UPI ने अदायगियों में सहूलत पैदा की है। उन्होंने कहा कि ये सभी के लिए दस्तियाब है और इससे लोगों को फायदा हुआ है।
3: ये 10 साल हो गए पेटीएम को यूज करते हुए, UPI को चेंज की कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो, UPI तो होता ही है। ये बेनिफिट मिला है, अच्छी चीज जो डिस्कवर हुई है।
2: बिहार के एक बाशिंदे सोनू भारती ने कहा कि 2016 में शुरू हुए UPI ने फर्द से फर्द और फर्द से कारोबारी तक लेन देन में हर किसी के लिए सहूलत पैदा की है।

0: के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसके मदद से एक आम व्यक्ति हो या फिर सब्जी वाले ठेला वाले, उनके द्वारा भी पेमेंट आसानी से दिया जा सकता है।
1: सिर्फ एक दहाई में यूपीआई ने मुल्क भर में डिजिटल अदायगियों के मामले में यकसर तब्दीली पैदा की है और लेन देन को तेज, सहल और ज्यादा काबिल रसाई बनाया है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के मकसद से डीआरडीओ के जरिए तैयार की गई मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजीज को मुल्क की प्राइवेट दिफाई सनत को मुंतकिल करने की मंजूरी दी है। टेक्नोलॉजी मुंतकली का अमल घरेलू सनतों को स्वदेशी पैदावार के काबिल बनाते हुए उनकी ज्यादा शराकतदारी को फरोग देने की राह में अहम संगे मील है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: टेक्नोलॉजी की मुंतकली का ये अमल जदीद दिफाई निज़ामों के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारतीय सनतों की अहलियत को फ़रोग देने की खातिर डीआरडीओ की जारी कोशिशों की अक्कासी करता है। इस कदम का मकसद सप्लाई चेन में भारतीय एमएसएमईज और दीगर टेक्नोलॉजी शराकत दारों की शमूलियत की खातिर मौके पैदा करना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग अहलियतों को बढ़ावा देते हुए दिफाई सनती बुनियाद को मुस्तहकम करना है। इस पहल का मकसद कार्रवाई जाती सलाहियत में इजाफा करना, दरामदात पर इन्हेसार कम करना और घरेलू कदर में इजाफा करना है। डीआरडीओ ने जदीद दिफाई टेक्नोलॉजियों की मुंतकली और उन्हें अपनाने को आसान बनाने के लिए भारतीय सनत के साथ मिलकर काम करने और मुल्क की स्वदेशी दिफाई अहलियत को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया है। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
2: कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामलात और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के सिलसिले में चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खसूसी नुमाइंदों की बातचीत की। सितंबर की 12 और 13 तारीख को ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए चीन के सदर शी जिनपिंग के इम्कानी दौरे से कबल हुई ये बातचीत अहमियत की हामिल है। जनाब डोभाल और जनाब वांग यी सरहद से मुतालिक बातचीत के तरीक़ेकार के लिए नामजद खसूसी नुमाइंदे हैं, जिसका क़याम 3,400 किलोमीटर से ज्यादा भारत चीन सरहद पर तनाज़े के जामे तौर पर इजाले की खातिर 2003 में हुआ था। बातचीत से पहले जनाब डोभाल ने, जो कल दो रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं, चीन के नायब सदर हान जिंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर भारतीय सिफारतखाने ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने सरहदी इलाकों में अमन सुकून को मुस्तहकम करने और दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान हुए इत्तफाक राय के मुताबिक इक्तिसादी, सियासी और कसीर रुखी बाहमी ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान चीन के नायब सदर ने कहा कि चीन और भारत को दोतरफा ताल्लुकात को कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र से देखना चाहिए और अपने रहनुमाओं में हुए अहम इत्तफाक राय के सिलसिले में मिलकर काम करना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने डेटा सेंटर्स के लिए भारत को पुरकशिश मुकाम करार देते हुए कहा कि भारत इस शोबे को डेवलप करने के लिए जापानी कंपनियों के साथ काम कर सकता है और भारत ने इस शोबे की बड़ी आलमी कंपनियों के जरिए 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी की अहदबस्तगी हासिल कर ली है। आज टोक्यो में मईशत, तजारत और सनत के जापानी वजीर अकाज़ावा रुसई से मुलाकात के दौरान जनाब गोयल ने यह बात कही। जनाब गोयल ने कहा कि इस साझेदारी की चार सुतूनों में दर्जाबंदी की जा सकती है, जो इस तरह हैं: तिजारत में इजाफा, टेक्नोलॉजी इश्तराक को मुस्तहकम करना, सरमायाकारी को फरोग देना और सियाहत को बढ़ावा देना। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के अपने हम मनसब सरगई लावरोफ के साथ वसीतर मामलात पर बातचीत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने बाहमी इश्तराक, इलाकाई मामलात, आलमी चैलेंजों और कसीर रुखी मामलात पर तबादला ख्याल किया। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने कहा है कि दोनों वज़राए खारजा ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान से मुतालिक मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की। इससे कबल डॉक्टर जयशंकर ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और तरफेन ने तिजारत, तवानाई, खाद और न्यूक्लियाई इश्तराक जैसे अहम शोबों और इकतसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ सतह के अफसर बीएलओ भारतीय जमहूरियत की बुनियाद हैं। चीफ इंतखाबी कमिश्नर उत्तर प्रदेश के दो रोजा दौरे पर हैं और उन्होंने आज लखनऊ में

0: आधारशिला हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है।
1: चीफ इंतखाबी कमिश्नर ने बूथ सतह के अफसरों से उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटिंग फीसद बढ़ाने और हर अहल वोटर तक पहुंचने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में इंतखाबात आईन कानून और इंतखाबी कमीशन की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर शफाफ तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ने इस बात को उजागर किया कि भारत में तकरीबन 97 करोड़ वोटर हैं जो कई मुल्कों में वोटरों की मजमू तादाद से भी ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान तकरीबन 1.5 करोड़ अहलकारों को तैनात किया था जिससे ये दुनिया भर में सबसे बड़ी इंतखाबी तंजीम बन गई। भारत और न्यूजीलैंड ने कल वेलिंगटन में मुनक़िदा दिफाई स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे एडिशन के दौरान खुले आज़ाद और शमूलियाती भारत बहरुल काहिल खत्ते की अहदबस्तगी के तई अपने अज़्म की तौसीक़ की है। इस आला सतही मुज़ाकरात के दौरान बहरी सलामती में इजाफा करने मुश्तरक फौजी तरबियत और मजमूई दिफाई इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा कि दोनों वफूद ने हाल ही में तश्कील दी गई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाने से मुतालिक जामे बातचीत की। इस दौरान भारत न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक शराकतदारी रोडमैप 2030 में वजह किए गए स्ट्रेटेजिक अहदाफ के नफाज से मुतालिक कलीदी निकात पर गौर खोज किया गया। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने नौजवान तलबा को ज़रई डिग्री प्रोग्रामों की तरबियत से लैस करने की अहमियत पर जोर दिया है। जनाब चौहान नई दिल्ली में ICAR इंस्टीट्यूट्स के वाइस चांसलर और डायरेक्टरों की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ज़रई तालीम के बारे में बोलते हुए जनाब चौहान ने कहा कि इस तरह की तालीम क्लासरूम में नहीं दी जा सकती और ये दीगर किसानों के खेतों में दी जानी चाहिए। जनाब चौहान ने यूनिवर्सिटियों पर जोर दिया कि वो मौजूदा वक्त की बढ़ती ज़रूरतों से हम आहंग रहने के लिए AI पर मबनी टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने तरीक़े तालीम में तब्दीली लाएं। जनाब चौहान ने वाइस चांसलर से अपील की कि वो अपने तलबा के साथ गैर रस्मी ताल्लुकात कायम करें ताकि वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। सारिफीन के उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा है कि कांदा एक्सप्रेस के जरिए 800 मैट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में सेक्रेटरी ने बताया कि नेफेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर्स में ये प्याज 35 किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त होगी। मुतरमा खरे ने मजीद बताया कि कांदा एक्सप्रेस पहले चेन्नई एर्नाकुलम मदुरई और गुवाहाटी पहुंचेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ओनम और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ओनम फसल की कटाई पर फितरत के तई तशक्कुर के इजहार का मौका होता है। उन्होंने कहा कि कश्तियों की दौड़ लोक रक्स मौसीकी और खेलों के मुकाबले इस त्यौहार की अहम रिवायात में शामिल हैं जिससे केरलम की सकाफत और अकदार की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार लोगों को मुल्क की तरक्की में तआवुन करने के लिए तहरीक देगा। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद करने का मौका है और उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रियात हम वतनों को सबकी शमूलियत वाले और एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तामीर की खातिर सरगर्मी से हिस्सा लेने की तहरीक देते हैं। मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका ने भारत के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन बना लिए। इसके बाद बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया। श्रीलंका 238 रन से पीछे है। श्रीलंका के सोनल दिनुषा 85 रन और लाहिरु कुमारा 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। अदायगियों के मरबूत निज़ाम UPI को 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं। भारत बर वक्त अदायगियों के साथ डिजिटल लेन देन में दुनिया में एक आलमी लीडर के तौर पर उभरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म की रसाई और वसअत हर भारतीय के लिए बायस फ़ख्र है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने भारतीय कंपनियों को मुंतकिल की जाने वाली मिज़ाइल टेक्नोलॉजी तैयार की है ताकि घरेलू पैदावार को फ़रोग दिया जा सके। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने सरहदी मामले और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के सिलसिले में बीजिंग में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भारत को आलमी डेटा सेंटर हब मरकज करार दिया है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलादुन्नबी और ओनम के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है।

दोस्तों, मीर तकी मीर की एक गज़ल है। राहे मोहब्बत में मुश्किलें तो बहुत हैं, मगर दीवानों के हौसले कम नहीं होते। जो कांटों पर भी मुस्कुराकर चल दे, वही लोग तो मंजिल के मुकद्दर होते हैं। इश्क और मोहब्बत की राह कभी फूलों की सेज नहीं रही। यहाँ हर मोड़ पर परीक्षा और कांटे मिलते हैं दोस्तों, लेकिन जो इन कांटों को गले लगा लेना, वही सच्चे राही कहलाते हैं। आइए इसी जज्बे को महसूस करते हैं एक बार फिर से भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गाई हुई इस प्यारी सी गजल के जरिए।

दिल की बात जुबां पर आने से पहले ना जाने क्यों निगाहें सब कह जाती हैं, और खामोशियां भी जब चीखने लगे तो रूह की आवाज़ साफ सुनाई देती है। कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं और मौन बहुत कुछ कह जाता है। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल के तारों को झंकृत कर जाती हैं। दोस्तों, भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह के गले का जादू कुछ ऐसा ही है। यहाँ संगीत का हर सुर और शब्द बिल्कुल साफ दिल पर उतरता है। तो आइए सुनते हैं एक बार फिर इनकी आवाज़ में ये गज़ल।

दोस्तों, मोहब्बत की भी अपनी कुछ रस्में हैं, कुछ कस्में हैं। यहाँ दिल टूटने पर भी दुआएं दी जाती हैं। इश्क की दुनिया की अपनी ही रिवायतें और रस्में हैं जो आम दुनिया से जुदा होती है। इन रस्मों में वफा भी है, दर्द भी है। इन रस्मों में एक अजीब सा सुकून भी है। किसी ने कहा है, ढूंढता था जिसे मैं जमाने भर में, वो तो मेरे ही भीतर छिपा था। जब खुद से हुई मुलाकात मेरी, तो मालूम चला फासला सिर्फ खुद से ही था। सफर चाहे बाहर की दुनिया का हो या अपने अंतरतम का, सबसे दुष्कर मुलाकात दोस्तों खुद से ही होती है। इंसान तमाम उम्र अपनों को और दुनिया को तलाशता रहता है, पर खुद से। खैर, कहकशां के इस अंक के आखिरी पड़ाव पर आइए सुनते हैं खुद की तलाश और रूह की गहराई को स्पर्श करती हुई ये बहुत सी सुंदर गजल है, जिसे आवाज दी है भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह ने।

दोस्तों, गज़ल वो है जो दिल के उन कोनों को छू ले जहाँ शब्द कम और एहसास ज़्यादा हों। जब कोई मोहब्बत की गहराई में इस हद तक उतर जाए कि अपनी हस्ती भी छोटी लगने लगे, तब ऐसी ही खूबसूरत पंक्तियाँ जन्म लेती हैं। इश्क में हद से गुजरना तो सुना था अक्सर, आज देखा है किसी को खुद को भुलाते हुए। इश्क वो नहीं जो मिटा दे वजूद को, इश्क तो वो है जो हर सांस को गज़ल बना दे।

अभी आप सुन रहे थे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दर्पण।
1: श्रोताओं नमस्कार, खेल दर्पण के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ देवराज। श्रोताओं, खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। ये हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत रखते हैं और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इन खेलों का बड़ा योगदान होता है। यूं तो भारत में खेलों के कई प्रकार सदियों से प्रचलित रहे हैं और आज जिन आधुनिक खेलों को हम देखते हैं वे हमारे पारंपरिक खेलों का ही बदला हुआ स्वरूप है। कैसे हमारे पारंपरिक खेल परिवर्तित होकर नए कलेवर में बदल गए, बता रहे हैं आलोक सिंह।
2: प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा की परंपरा थी, जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे अपने गुरु के साथ जंगलों में आश्रम में रहते थे। वहां इन बालकों को वेदों आदि के अध्ययन के साथ ही विभिन्न शारीरिक क्रियाएं भी कराई जाती थीं। इनमें प्रमुख घुड़सवारी, तलवारबाजी, शारीरिक क्रियाएं भी कराई जाती थीं। पहलवानी, भाला फेंक, योगासन आदि थे। इन खेलों का उद्देश्य बालकों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के साथ ही युद्ध के लिए तैयार करना था। यही पारंपरिक खेल आज वर्तमान युग में आकर्षक एवं मनमोहक कलेवर में है। पहले का घुड़सवारी आज हॉर्स राइडिंग, धनुर्विद्या, तीरंदाजी, पहलवानी, कुश्ती, योगासन, जिम्नास्टिक तथा भाला फेंक, एथलेटिक्स आदि पारंपरिक खेल नए अवतरित रूप में है हमारे बीच में। पहले यहाँ अखाड़ों में पहलवानों का जमघट शक्ति प्रदर्शन के लिए लगाया जाता था, वहीं आज कुश्ती की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सबसे अधिक तो जिम्नास्टिक ने अचंभित किया है। कैसे कैसे ये पारंपरिक योग एक खेल के रूप में ढल गए। पहले जहां योग आसनों से शरीर को स्फूर्ति एवं लचीला बनाया जाता था, वहीं आज का जिम्नास्टिक लचीलेपन तथा ग्लैमर का मिश्रण हो गया है। तीरंदाजी जहां पहले शिकार करने एवं युद्ध में दुश्मनों को परास्त करने के काम आती थी, वहीं आज यह डार्ट पर निशाना लगाने के लक्ष्य किया जाता है। आज का पोलो भी पारंपरिक राजघरानों का मनपसंद खेल था, तब इसकी स्टिक एवं गेंद में काफी अंतर था। डिस्कस थ्रो एवं हाई जंप भी पारंपरिक खेलों का नया अवतार है। भारत में सदैव ही खेल प्रेमी रहा है। यहाँ खेलों का जुनून ऐसा है कि उचित साधन न होने पर भी लोग अपने पास से उपलब्ध साधनों से ही खेल का मजा ले लेते हैं। कुछ एक पारंपरिक खेल उचित ध्यान न मिलने से बहुत ही निम्न दशा में है। ऐसे खेल जो गाँव की गलियों से निकलकर शहरों तक पहुँचे हैं, इनमें कबड्डी मुख्य है। पश्चिम का क्रिकेट भारत की गिल्ली डंडे से काफी मिलता है। समय के परिवर्तन के साथ ही साथ खेलों के स्वरूप बदलते गए। भले ही आज इनका उद्देश्य भिन्न हो, परंतु इस प्रकार से हमारे पारंपरिक खेल संरक्षित तो हैं, परंतु आवश्यकता है आज भी इसके उचित संरक्षण की। भारतीय पारंपरिक खेल का एक अति उज्जवल समय था, तब इसी कारणवश भारत का वर्तमान खेल परिदृश्य इतना सुदृढ़ बन पाया, पर यह प्राचीन खेल की नई पीढ़ी का संज्ञान में तो है।
1: श्रोताओं, जब कोई भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने प्रदर्शन से तिरंगे का मान बढ़ाता है तो प्रत्येक भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि खिलाड़ी न केवल अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए पदक हासिल करता है और अपने देश का गौरव बढ़ाता है। ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में, जिसमें भारत ने कुल 39 पदक जीतकर विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया। भारत की उपलब्धियों के विषय में बता रहे हैं हेमेंद्र कृष्ण शर्मा।
3: राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम दुनिया का एक प्रमुख बहु खेल आयोजन है, जिसमें मुख्य रूप से वे देश भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे। इन खेलों की सबसे पहली अवधारणा 1891 में एस्टली कूपर ने सद्भावना और भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से

थी। इसका पहला आधिकारिक आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ, जिसकी नींव खेल पत्रकार मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन ने रखी थी। पहले संस्करण में 11 देशों के 400 एथलीटों ने 6 खेलों में भाग लिया था। समय के साथ इन खेलों के नाम 4 बार बदलाव किए गए। साल 1930 से 1950 तक इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रखा गया। 1954 से 1966 तक इस खेल को ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स नाम रखा गया, लेकिन 1978 से इसे कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल नाम दिया गया, जो वर्तमान में भी इसी नाम से चल रहा है। यह दुनिया का पहला ऐसा खेल आयोजन है जहां पुरुष और महिलाओं के लिए समान संख्या में पदक दिए जाते हैं। ओलंपिक मशाल की तर्ज पर इन खेलों में 1958 से बंकिंगम पैलेस से क्वीन वेटम रिले की शुरुआत की गई थी। यह खेल प्रतियोगिता दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बहुखेल आयोजन बन चुका है, जिसमें ओलंपिक और एशियाई खेलों की तरह हर 4 साल में दुनिया भर के एथलीट भाग लेते हैं। आज कॉमनवेल्थ गेम्स केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खेल नवाचार और लैंगिक समानता का वैश्विक प्रतीक बन चुका है। इन खेलों का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिता आयोजित करना नहीं, बल्कि सदस्य देशों के बीच मित्रता, सहयोग, समानता, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा खेल भावना को बढ़ावा देना भी है। इन खेलों में एथलेटिक्स, तैराकी, मुक्केबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, निशानेबाजी और अन्य खेल शामिल होते हैं। खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे किसी राष्ट्र के आत्मविश्वास, अनुशासन, परिश्रम और सामूहिक संकल्प का प्रतीक भी होते हैं। जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराता है और राष्ट्रगान की धुन बजती है, तो वे क्षण केवल खिलाड़ी का नहीं बल्कि पूरे देश के गौरव का क्षण बन जाता है। ऐसे ही गौरवपूर्ण क्षण को बार बार भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में प्राप्त किया है। भारत को पहली बड़ी सफलता 1934 के खेलों में मिली, जब भारतीय पहलवान रशीद अनवर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतकर पहला पदक दिलाया। यह भारतीय खेल इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण था। भारत को अपने पहले स्वर्ण पदक के लिए 1958 में वेल्स के कार्डिक में आयोजित खेलों के महान धावक 440 गज दौड़ में मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुश्ती, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, हॉकी और टेबल टेनिस जैसे खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय पहलवानों ने हर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाया। निशानेबाजी में भी भारत ने विश्व स्तर की पहचान बनाई और अनेक स्वर्ण पदक अपने नाम किए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि 2010 में रही। पहली बार भारत की राजधानी नई दिल्ली को इन खेलों की मेजबानी मिली। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 101 पदक जीतकर नया इतिहास बनाया। इसमें 38 स्वर्ण पदक, 27 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल थे। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। यह आज भी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। 2010 के बाद से भारत में खेल संस्कृति को नई गति मिली। भारत में खेलो इंडिया के कारण भारतीय खिलाड़ियों में नई ऊर्जा मिली। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने चुनौतियों के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान प्राप्त किया। कुश्ती, निशानेबाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी जैसे भारत के पारंपरिक पदक दिलाने वाले खेलों को हटाए जाने के कारण यह आयोजन भारत के लिए काफी सीमित था। इसके बावजूद भारतीय एथलीटों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद भारत का ये 4th स्थान रहा। सीमित खेलों के बावजूद 2026 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के खेल कौशल, विविधता और उभरती नई प्रतिभाओं के दृष्टिकोण से बेहद सफल रहे। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में प्रतीकात्मक राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और बैटन औपचारिक रूप से भारत को सौंप दी गई। इसे भारत की ओर से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक की अध्यक्ष पीटी उषा ने प्राप्त किया। अब यह झंडा मशाल गुजरात पहुंच चुके हैं, जिससे शताब्दी संस्करण अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2030 के आयोजन में भारत को अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला, विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा,

0: और अधिक मजबूत होगी। विभिन्न खेलों के अधिकारी, खिलाड़ी, पत्रकार और पर्यटक भारत आएंगे। इससे भारत की संस्कृति, परंपरा, पर्यटन और अतिथि देवो भव का भाव व्यापक प्रचार प्रसार होगा। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन से होटल उद्योग, खेलों से जुड़े निर्माण कार्य, परिवहन, संचार, सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। स्थानीय उद्योग व छोटे व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
1: श्रोताओ, प्रत्येक चार वर्ष की अवधि में एक बार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में ओलंपिक खेलों का विशेष स्थान है, जिसमें दुनिया भर के खेल महारथी भाग लेते हैं और अपने जौहर दिखाते हैं। ओलंपिक खेलों में जीता हुआ एक पदक खेल की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, और इन खेलों का आयोजन अपने देश में होना अर्थात ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना किसी भी देश की प्रतिष्ठा और गौरव को बढ़ाने का अवसर देता है। क्या भारत वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अपना दावा पूरा करने में समर्थ होगा? क्या संभावनाएं हैं? क्योंकि प्रत्येक भारतवासी के लिए अपने देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना गर्व और सम्मान की बात है। भारत में इस मिशन ओलंपिक 2036 की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं शरद श्रीवास्तव।
2: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इन खेलों के आयोजन के लिए किसी देश के दावे को स्वीकृति तभी प्रदान की जाती है जब समिति उस राष्ट्र की आर्थिक क्षमता, वहां के सुदृढ़ खेल ढांचे और इतने बड़े आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कर पाने की उसकी योग्यता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो जाए। ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अवसर एक राष्ट्र की विश्वव्यापी प्रतिष्ठा को कई गुना बढ़ा देता है। वर्ष 2036 के ओलंपिक के मेजबानी के लिए भी भारत के अलावा इंडोनेशिया और टर्की भी दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों प्रतिद्वंदी दावेदारों के मुकाबले भारत का दावा कहीं अधिक मजबूत है। आर्थिक संसाधनों के लिहाज से देखें तो भारत विश्व में आज पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और वर्ष 2030 तक इसके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मेजबानी का फैसला करते समय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा एक और पहलू को दृष्टिगत रखा जाता है कि दावेदार राष्ट्र की सामान्य जनता ओलंपिक आयोजन को लेकर कितनी उत्साहित है। इस कसौटी पर भी हमारा देश पूरे अंक हासिल करता है, क्योंकि लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या वाले हमारे देश में हर नागरिक ओलंपिक आयोजन को लेकर बेहद उत्सुक, सजग और उत्साहित है। हर्ष का विषय है कि हमारे अहमदाबाद शहर को वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है, और यह विशाल आयोजन एक प्रकार से ओलंपिक 2036 की मेजबानी का पूर्वाभ्यास माना जा सकता है। इन दिनों अहमदाबाद और गांधीनगर क्षेत्र में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी हैं। सरकार का प्रयास है कि आयोजन की सभी व्यवस्थाएं, चाहे वह नए खेल परिसरों का निर्माण हो या फिर आवागमन और रिहायश सुविधाओं का विस्तार, ये सारे कार्य समय रहते पूरे कर लिए जाएं ताकि राष्ट्रमंडल खेलों को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। गौर करने की बात यह भी है कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की सफल मेजबानी करके भारत पूरे विश्व को यह संदेश देने में भी कामयाब होगा कि वह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी और वर्ष 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन भी भारत में हो चुका है। यह दोनों आयोजन राजधानी नई दिल्ली में हुए थे, लेकिन अब गुजरात का अहमदाबाद शहर देश में खेल संस्कृति के नए केंद्र के रूप में दुनिया के सामने आने जा रहा है। जैसा पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार अहमदाबाद को देश की खेल राजधानी के रूप में विकसित करने को प्रयासरत है। राष्ट्रमंडल खेलों से पूर्व वर्ष 2029 में अहमदाबाद में ही यूथ ओलंपिक का आयोजन भी प्रस्तावित है, जिसमें विश्व भर से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के एथलीट भाग लेंगे। यूथ ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के दृष्टिगत इन दिनों अहमदाबाद और उसके निकटवर्ती इलाकों में युद्ध स्तर पर निर्माण और विस्तार कार्य जारी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का निर्माण और विकास, जो कि आने वाले वर्षों में गुजरात प्रांत के खेल ढांचे की आधारभूत संरचना बनने वाला है। इस विशाल परिसर में विभिन्न खेलों के मैदान, टेनिस कोर्ट, प्रशिक्षण केंद्र और खेल गांव समाहित होगा। ये सारी सुविधाएं राष्ट्रमंडल खेलों के संपन्न हो जाने के बाद राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं

0: और खिलाड़ियों के लिए काफी मददगार साबित होंगी और इनमें विस्तार तथा नवीनीकरण करके इन्हें ओलंपिक 2036 के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ओलंपिक खेलों की मेजबानी काफी दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करने वाली होती है। ऐसे आयोजन न सिर्फ देश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक होते हैं बल्कि युवा खेल प्रतिभाओं के लिए भी यह प्रोत्साहन और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा जरिया बनते हैं। साथ ही ऐसे आयोजनों के माध्यम से मेजबान शहर या देश में नए स्टेडियमों, खेल मैदानों तथा अन्य सुविधाओं का एक ऐसा विश्व स्तरीय ढांचा उपलब्ध हो जाता है जो कि खिलाड़ियों की आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए मददगार साबित होता है। ऐसे विश्व स्तरीय आयोजनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ भी कम नहीं है। रोजगार, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी जैसे कई क्षेत्रों में इन आयोजनों का विशेष लाभ मिलता है। वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक अनुमान के अनुसार अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में लगभग 20,000 अतिरिक्त होटल रूम्स की जरूरत पड़ेगी। इसका अर्थ है कि 2030 तक इस क्षेत्र में होटल सुविधाओं का विस्तार होना अनिवार्य है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव रोजगार सृजन के रूप में भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन से उस देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखर जाती है और भविष्य में उसके लिए इस प्रकार के अन्य आयोजनों की मेजबानी हासिल करने का रास्ता भी खुल जाता है। खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर हमारी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गंभीर हैं यह किसी से भी छिपा नहीं है। इस गंभीरता का ही परिणाम है कि हमारे देश का खेल बजट वर्ष 2014 तक मात्र 800 करोड़ रुपए का था जो कि आज 3,800 करोड़ रुपए का हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में खेलो इंडिया जैसे अभियान शुरू किए गए हैं जिनका सकारात्मक असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर स्पष्ट रूप से दिखता है। विश्व स्तर की स्पर्धाओं के अपने देश में आयोजन का प्रभाव खिलाड़ियों की सफलता और प्रदर्शन पर भी पड़ता है क्योंकि अपनी धरती पर अपने दर्शकों की मौजूदगी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने को प्रेरित करती है और वे मैदान में जाकर बढ़ चढ़ कर अपने जौहर दिखाते हैं। 1978 में बैंकॉक एशियाड में भारत ने कुल 28 पदक जीते थे लेकिन इसके चार वर्ष बाद वर्ष 1982 में जब यह स्पर्धा नई दिल्ली में हुई तो भारतीय एथलीटों ने इसके दोगुनों से भी ज्यादा कुल 57 पदकों पर कब्जा जमाया जिनमें से 13 स्वर्ण पदक थे। इसी तरह राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो वर्ष 2006 में मेलबर्न में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल ने 50 पदक जीते थे लेकिन चार वर्ष बाद 2010 में जब यह स्पर्धा भारत में हुई तो हमारे एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदकों का शतक जमा दिया और कुल 101 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। यदि भारत को 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अवसर हासिल होता है तो इन खेलों के सफल आयोजन के जरिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में तो निखार आएगा ही, साथ ही हमारी खेल प्रतिभाओं के लिए भी सर्वोच्च स्तर पर अपने जौहर दिखाने का यह एक सुनहरा अवसर होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि विश्व के इस सबसे बड़े खेल मंच पर पदकों का अंबार लगाकर हमारे खिलाड़ी देश की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।
1: और श्रोताओं, अब खेल की सुर्खियों के साथ हैं विजय यादव।
2: 16 जुलाई 2026 को भारतीय टेबल टेनिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में पुरुष, महिला और मिश्रित युगल वर्ग में भारत की तीन जोड़ियां विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंच गईं। ये तीन जोड़ियां थीं पुरुष युगल में मानव ठक्कर और मानु शाह, महिला युगल में दिया चितले और यशस्विनी घोरपड़े तथा मिश्रित युगल में मानुष शाह और दिया चितले। एकल रैंकिंग में मानव ठक्कर 38वें स्थान पर भारत के शीर्ष रैंक वाले पुरुष खिलाड़ी हैं जबकि मानु शाह उनसे दो पायदान पीछे 40वें स्थान पर और मनिका बत्रा नंबर 51 पर भारत की शीर्ष रैंक वाली महिला एकल खिलाड़ी बनी हुई हैं। पूर्व राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन को 2026 एशियाई खेलों के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में भी शामिल किया गया था। रैंकिंग में यह बढ़ोतरी एशियाई खेल 2026 से ठीक दो महीने पहले हुई है जो 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची नागाया में होने वाले हैं। यह उपलब्धि इसलिए भी अहम है क्योंकि टेबल टेनिस के पावर हाउस चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाड़ियों की चुनौती तोड़कर भारतीय खिलाड़ियों ने यह सफलता हासिल की है। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी के महिला वर्ग में शानदार प्रदर्शन करके 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। अंडर 19 महिला वर्ग में भारत ने 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक जीते।

चंद्रिका भोरेस पुजारी 51 किलोग्राम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान की नाजोगत मार्डोनोवा को 5-0 से हराकर, जबकि प्राची ने इंडोनेशिया की दरा अर्टिका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। अंडर 19 में भारत के अन्य फाइनलिस्ट ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंडर 23 महिला वर्ग में भी भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। निशाने 54 किलोग्राम भार में जापान की कोइन कोकुफू को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। जापान में हुए जापान ओपन मुकाबलों में टोक्यो में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने रविवार को जापान ओपन बैडमिंटन में इतिहास रच दिया। उन्होंने आक्रामक खेल के दम पर मेजबान खिलाड़ी अकाने यामागुची को हराकर पहली बार इस सुपर 750 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। इसके साथ ही वह यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गईं। 31 वर्षीय सिंधु ने लगातार आक्रमण के साथ साथ बेहतरीन प्लेसमेंट और अहम पलों में संयम रखते हुए 3 बार की विश्व चैंपियन यामागुची को 21-17 से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का समापन स्पेन की ऐतिहासिक जीत के साथ हुआ। न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मैच का इकलौता गोल फॉरेन टोरेस ने 106वें मिनट में दागा। इस बार स्पेन ने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं जीती बल्कि व्यक्तिगत अवार्ड्स पर भी अपना दबदबा कायम रखा। टीम के कप्तान और मिडफील्ड के मास्टर रोड्री को पूरे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और उन्हें गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। वहीं फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे भले ही अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने 10 गोल दागकर गोल्डन बूट अपने नाम किया। इसके साथ ही वह लगातार दूसरी बार विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। स्पेन की गोलकीपर उनाई सिमोन को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। उन्होंने पूरे विश्व कप में 7 क्लीन शीट रखी और कई महत्वपूर्ण मौकों पर टीम को गोल खाने से बचाया। उन्हें गोल्डन ग्लव से सम्मानित किया गया। फीफा विश्व कप के समाप्त होने के तुरंत बाद खेल प्रेमियों के लिए 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 23 जुलाई 2 अगस्त तक हुआ। इस बार इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिताओं के लिए आधिकारिक शुभंकर फिन्नी द यूनिकॉर्न बनाया गया। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में सिर्फ 10 खेलों को ही शामिल किया गया था, जबकि पिछली बार इसमें कुल 19 खेल थे। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, निशानेबाजी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती जैसे खेल इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं थे। बर्मिंगम 2022 में भारत ने इन्हीं खेलों में 30 मेडल जीते थे। बर्मिंगम 2022 में 210 एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि ग्लासगो में कुल 125 खिलाड़ी भारत की ओर से गए थे। ऐसे में इस बार का प्रदर्शन शानदार माना जा रहा है। भारत के लिए 7 स्वर्ण समेत सबसे ज्यादा 10 पदक मुक्केबाजी में आए, जबकि एथलेटिक्स ने भी हमें कुल 10 पदक जिताए। भारोत्तोलन में 8, जूडो में 4 और पैरा खेलों में कुल 7 पदक मिले। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइकिलिंग, लॉन बॉल्स और तैराकी में हमारे हाथ खाली रहे, जबकि नेटबॉल और बास्केटबॉल में हमारे देश से कोई भी खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं गया था। बास्केटबॉल के महिला व्हीलचेयर इवेंट में जरूर हमारी टीम थी, लेकिन ये टीम एक भी मुकाबला जीते बिना ही पहले चरण से बाहर हो गई। 32 सदस्यीय एथलेटिक्स दल में सर्वेश कुमार ऊंची कूद, गुलवीर सिंह 10,000 मीटर, श्री शंकर मुरली लंबी कूद, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, प्रवीण चित्रवेल ट्रिपल जंप ने चांदी जीती, जबकि गुलवीर सिंह 5,000 मीटर, सिल्वा प्रभु ट्रिपल जंप, यशवीर सिंह भाला फेंक, तेजस्विनी शंकर डिकातलान और सीमा कालीरमण चक्का फेंक ने कांस्य पदक जीते, जबकि 14 मुक्केबाजों में से साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिया घंगस, अरंधुति चौधरी, सचिन सिवाच, अंकुश पंधाल ने सोना जीता, जबकि नरेंद्र बरवाल, जादूमणि सिंह, लवलीना बोरगोहाई ने चांदी जीती। 14 सदस्यों वाले जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 12 सदस्यों वाले भारोत्तोलन दल में मीराबाई चानू और ऋषिकांत सिंह ने स्वर्ण, जबकि राजू मुत्तू पांडी, ज्ञानेश्वरी यादव, अजय बाबू, हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह ने रजत पदक और विद्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीता। इनके अलावा पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धनगढ़ ने शॉटपुट F57 में स्वर्ण, जबकि मोहम्मद बासिल 100 मीटर T47 में रजत पदक के विजेता रहे। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार और महिला शॉटपुट F57 में शिल्पा शाइला ने कांस्य पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया 166 पदक

एगर पहले स्थान पर रहा। इंग्लैंड कुल 108 पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। कनाडा 61 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। चौथे स्थान की रेस में भारत ने बाजी मारी। भारत ने 39 पदक हासिल किए, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा, जबकि स्कॉटलैंड ने कुल 13 पदक और नाइजीरिया ने 10 पदक जीते। भारत का माइपे ओपन में 18 साल से चल रहा खिताबी सूखा रविवार को 17 साल की तन्वी ने खत्म कर दिया। पंजाब की इस युवा शटलर ने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब महज 36 मिनट में जीत लिया। तन्वी ने ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त शटलर थुए लिल्ह न्यूगेन को सीधे गेमों में 2-0 से एक तरफा मात दे दी। पिछले साल US ओपन सुपर 300 के फाइनल में चूक गई तन्वी के सामने विश्व नंबर 21 किसी भी पल ठहरती हुई नजर नहीं आई। इस जीत के साथ ही तन्वी BWF सुपर 300 टूर्नामेंट जीतने वाली महज चौथी भारतीय महिला बन गईं। केवल 17 साल 222 दिन की तन्वी ताइपे ओपन खिताब जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। वहीं तन्वी ने कोरिया के ली

0: जीते। भारत का माइपे ओपन में 18 साल से चल रहा खिताबी सूखा रविवार को 17 साल की तन्वी ने खत्म कर दिया। पंजाब की इस युवा शटलर ने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब महज 36 मिनट में जीत लिया। तन्वी ने ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त शटलर थुए लिल्ह न्यूगेन को सीधे गेमों में 2-0 से एक तरफा मात दे दी। पिछले साल US ओपन सुपर 300 के फाइनल में चूक गई तन्वी के सामने विश्व नंबर 21 किसी भी पल ठहरती हुई नजर नहीं आई। इस जीत के साथ ही तन्वी BWF सुपर 300 टूर्नामेंट जीतने वाली महज चौथी भारतीय महिला बन गईं। केवल 17 साल 222 दिन की तन्वी ताइपे ओपन खिताब जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। वहीं तन्वी ने कोरिया के ली योंग डे का रिकॉर्ड भी तोड़ा, जो 2006 में मेंस डबल्स के फाइनल में खेलते समय 17 साल 287 दिन के थे। इसके अलावा तन्वी एशियाई टीम चैंपियनशिप का इकलौता खिताब जीतने वाली भारतीय टीम में भी रह चुकी हैं। श्रीलंका के गाल में चल रहे विश्व चैंपियनशिप WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए प्रयास कर रही भारतीय टीम ने श्रीलंका दौरे पर 5 दिन अभ्यास किया और 3 दिन अभ्यास मैच खेला, जिसका फल उसे गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 165 रन की जीत के रूप में मिला। 372 रनों के असंभव लक्ष्य को हासिल करने उतरी श्रीलंकाई टीम के लिए कप्तान धनंजय डिसल्वा 59 और पिछले मैच के शतकवीर सोनल दिनुषा 84 ने 5वें विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी करके भारतीय आक्रमण को रोकने की कोशिश की। पहले कप्तान और उसके बाद डिकवेला के आउट होते ही मानव सुथार ने यहां श्रीलंकाई किले को ऐसे ध्वस्त किया जैसे 26 दिसंबर 2004 में सुनामी ने गाल फोर्ट को ध्वस्त किया था। इसी के साथ भारत ने अपने 600वें टेस्ट मैच में शानदार जीत हासिल की। श्रीलंका के विरुद्ध भारत को मिली शानदार जीत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में बूस्टर डोज का काम किया है। श्रीलंका पर जीत के बाद भारत की जीत का प्रतिशत बढ़कर 53.33 हो गया है। हालांकि अंक तालिका में भारतीय टीम की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह 5वें स्थान पर भी है। इस जीत से पहले भारत का जीत प्रतिशत 48.15 था। इस जीत ने भारत की WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जरूर मजबूती मिली है। विश्व कप हॉकी में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह और स्ट्राइकर अभिषेक के 2-2 गोल की बदौलत भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के विरुद्ध अपना एक दशक लंबा अजेय अभियान जारी रखते हुए FIH विश्व कप के पूल डी के हाई वोल्टेज मुकाबले में 5-3 से जीत दर्ज की और दूसरे दौर में प्रवेश किया। इस हार के साथ ही पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में अभियान ही समाप्त हो गया है।
1: श्रोताओं, खेल दर्पण के आज के संक को यहीं विराम। आलेख वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का था। प्रस्तुतकर्ता थे OP सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग भोपाली। आपके साथ तबले पर संगत की है अनिंदो चटर्जी ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग भोपाली, आपके साथ तबले पर संगत की आनंदो चटर्जी ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS Raghu।

होती है। कल सवेरे 5:55 पर पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।